मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच और डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स। न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और वेब सोटी पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 की भाद्रपद मास की 5वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 27 अगस्त 2026। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के 5:56:50 हो रहे हैं। आरंभ हो रही हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। सुबह के 6 बजने वाले हैं। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। नेपाल में कल आए भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता है। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और एक दर्जन जल विद्युत परियोजनाओं को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण हिमखंड फट जाने से ये आपदा आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं के 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस चुनौती के सामने नेपाल और उसके लोगों के साथ खड़ा है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है 9779851316807 और 9779701075000। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लापता लोगों की खोज और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पीपल्स आर्म्ड पुलिस की शिगाजी टुकड़ी के कुल 145 अधिकारियों और सैनिकों को आपातकालीन प्रतिक्रिया अभियानों में सहायता के लिए प्रभावित सीमा बंदरगाह पर भेजा गया है। नेपाल की यात्रा पर गए कोलकाता के 32 लोग अचानक आई बाढ़ में लापता हो गए हैं। वे मानसरोवर यात्रा के लिए एक ट्रैवल एजेंसी द्वारा आयोजित समूह में गए थे। इस समूह को कल नेपाल तिब्बत सीमा पार करनी थी, लेकिन अचानक आई बाढ़ से उनसे संपर्क टूट गया और अभी तक किसी का कोई पता नहीं चला है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है, वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई है। इस बारे में और जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता।
1: नेपाल में

0: के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
2: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी बाल्मीकिनगर जाऊंगा।
1: इधर मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल की तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। सरकार ने आगामी महीनों में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। वीर चोटरानी और विलविन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट क्वाश ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। ये दोनों भारतीय खिलाड़ी आज सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। सुबह के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें आज का विषय है धान की फसल में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
4: किसान भाइयों, आज हम धान की फसल में सिंचाई और उर्वरक प्रबंध के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे कैसे और कब इसमें सिंचाई की जाए एवं कब उर्वरकों का प्रयोग किया जाए। पहले सिंचाई के बारे में चर्चा करते हैं। धान की खेती में उचित जल प्रबंध के लिए 3 बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला यह कि वर्षा के पानी का भरपूर उपयोग किया जाए। इसके लिए खेत को समतल बनाना तथा उसकी मेड़बंदी करना आवश्यक होता है। यह कार्य पहले ही किया जाता है। दूसरी बात यह कि बहुत अधिक पानी यदि खेत में लगातार लगा रहे तो उसके निकासी की व्यवस्था हो। और तीसरी बात ध्यान में यह रखना है कि जब बारिश न हो तो धान में सिंचाई की निजी व्यवस्था की जाए। यह कहावत कि धान पान और केला तीनों पानी के हैं चेला, 16वां सही है। वास्तव में धान की फसल में कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जिनमें पानी की अधिक आवश्यकता होती है। जैसे जब धान की रोपाई की जाती है तो रोपाई के 1 सप्ताह तक खेत में पानी लगा रहना चाहिए। यहीं पर यह भी बात आती है कि फसल में कितना पानी दिया जाए। इसके लिए किसान भाई यह जान लें कि खेत में 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक ही पानी होना चाहिए। इसके अलावा कल्ले फूटने की अवस्था, बाली निकलने तथा दाना भरने की अवस्था में भी खेत में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। इन अवस्थाओं में यदि समय से बारिश हो जाती है तब तो समझो ठीक है, और यदि बारिश ना हो तो सिंचाई अवश्य करना चाहिए। इन अवस्थाओं के अतिरिक्त अन्य समय में तो सिंचाई करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन खेत की मिट्टी तर जरूर होनी चाहिए। हाँ, रोपाई के 40 से 50 दिन के बीच खेत से पानी एक बार ज़रूर निकाल देना चाहिए। धान की फसल से बहुत से किसान भाई पानी नहीं निकालना चाहते हैं, लेकिन यह उचित नहीं। समय समय पर जल निकासी से जड़ों की बढ़वार सुचारू रूप से होती है, साथ ही हानिकर फफूंदी तथा कीड़े मकोड़ों का प्रभाव भी कम होता है। हमारे देश में धान की उपज कम होने के वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन एक प्रमुख कारण खरपतवारों से होने वाली हानि है। कभी कभी तो

0: खरपतवारों की वजह से नाम मात्र की ही उपज प्राप्त होती है। ये खरपतवार फसल रोपने या बोने के साथ ही निकलते हैं तथा धान के खेत से पोषक तत्वों एवं जल का उपयोग करते हैं। यहीं पर हमें एक और खास बात भी जान लेनी चाहिए, वह यह कि इन खरपतवारों का नियंत्रण फसल रोपने के 20 से 40 दिन के अंदर ही कर लिया जाए, क्योंकि इसी अवधि में खरपतवारों से फसल को ज़्यादा नुकसान होता है। खरपतवार नियंत्रण के बाद नतजनी उर्वरकों का बुरकाव करते हैं। यदि बोया गया धान है तो प्रति एकड़ की दर से 40 किलोग्राम यूरिया कल्ली फूटते समय और 10 किलोग्राम यूरिया बाली बनते समय खेत में बुरक देना चाहिए। अगर देसी प्रजातियों की बुआई किए हैं तो उसमें उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने धान की रोपाई की है तो शीघ्र पकने वाली प्रजातियों जैसे साके 4, मनहर आदि के लिए 20 किलोग्राम यूरिया कल्ले बनते समय तथा शेष 20 किलोग्राम यूरिया को बाली बनने की प्रारंभिक अवस्था में प्रति एकड़ की दर से खेत में भुरक देना चाहिए। यदि IR8, जया, सरयू 52, पंतधान 4, सीता जैसी मध्यम देर से पकने वाली किस्में हैं तो 25 किलोग्राम यूरिया कल्ले बनते समय एवं 25 किलोग्राम यूरिया बाली बनने की शुरुआत की अवस्था में खेत में बुरकाव कर देते हैं। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर धान की फसल में सिंचाई एवं उर्वरक प्रयोग करना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें आज आपने सुना धान की फसल में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

काल भी तुम और महाकाल भी तुम, लोक भी तुम त्रिलोक भी तुम, शिव भी तुम और सत्य भी तुम।

ओम में ही आस्था, ओम में ही विश्वास, ओम में ही शक्ति, ओम में ही सारा संसार, ओम से ही होती है अच्छे दिन की शुरुआत।

सारा जहां है जिसके शरण में, नमन है उस शिव जी के चरण में, बने उस शिव जी के चरणों की धूल, आइए मिलकर चढ़ाएं हम श्रद्धा के फूल।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आज के गायक कलाकार थे हरिओम शरण, नरेंद्र चंचल और आशा भोसले। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप लीजिए सुनिए कार्यक्रम विचार बिंदु। आज का विषय है अनमोल भावना।
1: जीवन की धुरी है, उसका सार है। ईश्वर के दरबार में मूल्य है तो केवल भावना का। बुद्धि संसार में गति करती है और भावना भगवान में। दोनों का अपना अलग अलग संसार है। सच कहा जाए तो यही जीवन की धुरी है, सार है और है आध्यात्मिक विकास का मुख्य आधार। बुद्धि विश्लेषण करती है, विचारों की काट छांट करती है। बुद्धि का संसार उलझनों से उलझा रहता है, समस्याओं से घिरा रहता है। एक समस्या सुलझती है तो अनेक और खड़ी हो जाती हैं। समस्याएं टीसती हैं और चुभती भी हैं। इस कसक चुभन से बड़ा दर्द होता है। इनके दंश से मन छटपटाता है, बुद्धि कसमसाती है। इन समस्याओं के जाल में बुद्धि स्वयं को उलझा देती है और सुलझाने के फेर में बड़ी उलझन में फंस जाती है। कहीं भी और किसी जगह चैन नहीं मिलता है, अंतस बेचैन रहता है। बौद्धिक प्रतिभा साधन और सुविधाओं का अंबार तो लगा सकती है, परंतु इसका सम्यक रूप से उपयोग और उपभोग करे तो कौन करे? ये ज्वलंत प्रश्न है। सवाल जब उठता है तो वो इसका हल भी मांगता है, समाधान भी चाहता है। समुचित समाधान बुद्धि के पास कहां? बुद्धि तर्क करती है, तर्क और भी विकराल समस्याएं खड़ी करता है। ये उलझे हुए को और उलझा देता है। फिर समाधान क्या है? बुद्धि की तलाश और खोज से परे आखिर समाधान ढूंढें तो कहां? समाधान है भावनाओं में।

0: बहिष्कृत परिमार्जित भावनाओं में। इसका समग्र और सर्वांगपूर्ण जवाब सजल भावनाओं में समाहित है। रिश्तों के तार बड़े सूक्ष्म और कोमल होते हैं। संवेदनशील संबंध बुद्धि के लिए अबूझ हैं। ये भावनाओं की नींव पर खड़े होते हैं और प्रेम और सहकार से ही मजबूत बनते हैं। नेह, स्नेह, ममता, करुणा आदि इसे अनगिनत ढंग से नए नए रूपों में विनिर्मित करते हैं। भावनाओं के इस संसार में स्वयं भगवान का वास होता है। क्षण बड़े मधुर होते हैं। ये संसार बड़ा ही सरस और बौद्धिक जगत से जुदा होता है। भावना के संस्पर्श से बुद्धि की प्रक्रिया भी बदल जाती है। ये सद्बुद्धि में परिवर्तित हो जाती है। फिर सद्बुद्धि भावनाओं की अनुगामिनी और सहचरी बन जाती है। बड़ा अनोखा घटता है सब कुछ सब ओर। इसी कारण कहा जाता है कि बौद्धिक प्रतिभा का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि इसके मूल में वो तत्व नहीं जिससे कि जीवन सरस और संवेदनशील बन सके। मोल है अनमोल भावना का। आवश्यकता इस बात की है कि बुद्धि भावना का संरक्षण करे और इसके बदले भावना इसे पोषण प्रदान करे। इनके समुचित समन्वय से विकास के नए आयाम विकसित होंगे। अतः हमें बौद्धिक कुतर्क से बचना चाहिए और भावना का परिष्कार करना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु, जिसमें आज का विषय था अनमोल भावना। आलेख और स्वर था अरुण पांडे का। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम, जिसमें आज का विषय है जागरूक बने रक्तदान करें। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संदीप कुमार।
2: अगर हम लोग रक्तदान का जो इवोल्यूशन हुआ है, तो सबसे पहले रक्तदान में कोई टेस्ट नहीं किया जाता था, जिससे ये होती थी पहले कि बहुत सारी बीमारी रक्तदाताओं द्वारा दूसरे रक्त जिनको लग रही है, चढ़ रही है रक्त, उनको नमस्कार को ये ट्रांसमिट हो जाता था वॉलंटरी। और एक ऐसा डोनर हम सेलेक्ट करें जिससे कि किसी भी तरह की इन्फेक्शन या कोई और भी तरह की रोग दूसरों में न जा। तो इसके लिए धीरे धीरे बहुत सारी विधियां आई, जिससे कि जांच करके ब्लड जो डोनेट करते हैं डोनर, उनको टेस्ट किया जाता है और जिनमें किसी भी तरह की कमी पाई जाती है उस ब्लड को डिस्कार्ड किया जाता है एज पर नॉर्म। जो सरकार की एक अपनी मंशा है कि किसी भी जरूरतमंद को बिना ब्लड दिए उसको रक्त केंद्र से रक्त की जरूरत की पूर्ति हो, मतलब कि 100% वॉलंटरी डोनेशन के हिसाब से, ना कि रिप्लेसमेंट डोनेशन के हिसाब से। फायदा ये होता है वॉलंटरी डोनेशन में कि जो वॉलंटरी डोनर होते हैं वो पूर्णतः स्वस्थ होते हैं, उनमें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होती है और न वो किसी भी तरह के हाई रिस्क फैक्टर से एसोसिएटेड होते हैं। एक होता है रिप्लेसमेंट डोनेशन। तो रिप्लेसमेंट डोनेशन में होता है क्या कि अगर किसी जरूरतमंद को ब्लड की जरूरत है तो वो किसी को भी लेकर आ जाता है रिप्लेसमेंट डोनेशन के नाम पे। और अगर कोई कंपल्सन में डोनेट कर रहा है तो बहुत सारी चीजें जो अपने अंदर उनकी तकलीफें होती है वो छुपा जाते हैं। तो एक प्योर जो ब्लड होना चाहिए तो वो प्योरिटी उतनी नहीं होती उनकी ब्लड में। और ये होता है कि बाद में उनके ब्लड को चेक किया जाता है तो कुछ इस तरह की इन्फेक्शन पाए जाते हैं जिससे कि ब्लड को डिस्कार्ड करना पड़ता है। तो इससे दो तरह की हानि होती है। पहला कि जो हम सोच रहे हैं कि अगर आज 100 यूनिट डोनेशन हुआ तो उस 100 में अगर 5 भी इन्फेक्टेड ब्लड है तो वो 5 हमें डिस्कार्ड करना पड़ रहा है। तो ये 5 नंबर छोटी लग रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी नंबर हो जाती है धीरे धीरे।

0: और इस तरह से रक्त केंद्र पर भी लोड पड़ता है और उनको ब्लड फिर से देने की जरूरत हो सकती है और बहुत तरह की और तमाम रक्त केंद्र लोड पड़ती है, जो कि आप कह लें कि राष्ट्रीय स्तर पे ये ऐड हो करके एक अलग तरह की परेशानी भी क्रिएट करते हैं। तो अभी जैसे सपोज कर लें कि अगर हमारा रक्त केंद्र से लगभग डेली 100 यूनिट का रिक्वायरमेंट होता है ब्लड की, उसमें उस 100 यूनिट में लगभग डेली 15 से 20 यूनिट थैलेसीमिया वालों के लिए होती है, उसी तरह से 15 से 20 यूनिट और कह लें 30 यूनिट के लगभग लेबर रूम, जो कि गायनी डिपार्टमेंट ऑब्स्टेटिक्स डिपार्टमेंट में होती है, उनकी जरूरत होती है। बाकी जरूरत सर्जरी रूटीन केसेस में होते हैं। तो जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं वो तो इसी पे जीवित ही हैं। तो अगर हमारे देश में वॉलंटरी डोनेशन नहीं होगा तो उन बच्चों को देना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे हमारे समाज में रक्तदान के प्रति बहुत ही जागरूक लोग हो रहे हैं और विभिन्न विभिन्न तारीखों पे, जैसे आप कह लें किसी की बर्थडे पे, मैरिज एनिवर्सरी पे, इंडिविजुअली लोग ब्लड बैंक में आते हैं, डोनेट करते हैं और चले जाते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि हम लोग ब्लड बैंक के तरफ से समय समय पे दूर दूर जाकर लोगों को इसकी फायदे को भी बताते हैं और जो उनके मन में डर होती है उसको भी निकालने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम लोग कॉलेजेस में जाते हैं और उनके ब्लड भी बहुत ही प्योर होते हैं, विदाउट एनी इन्फेक्शन और भी तरह की कोई चीजें उनमें नहीं मिली होती है। तो हम लोग बहुत ही अवेयर करते हैं उन बच्चों को। NSS के द्वारा हम सारे बच्चों के पास जाते हैं और उनको ब्लड देने का फायदा भी बताते हैं। देखिए, ब्लड देने का दो फायदा होता है, एक तो जो डोनर को फायदा होती है, दूसरी फायदा जो होती है वो मरीजों के लिए होती है। मतलब कि इसीलिए कहा गया है कि रक्तदान महादान।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम, जिसमें आज का विषय था जागरूक बने रक्तदान करें। विशेषज्ञ थे डॉक्टर संदीप कुमार। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ।

शोक संतप्त तथा पश्चाताप की आग में झुलस रहे भरत को माता कौशल्या हृदय से लगाकर धीरज बंधा रही हैं। ज्ञान के उदय होने पर भी चाहे मन का मोह न मिटे, किंतु वो जानती हैं कि किसी अवस्था में भी भरत श्री राम से विमुख नहीं हो सकते। पुरोहित तथा कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ भरत को समयानुकूल उपदेश और लोकाचार की शिक्षा देकर दिवंगत महाराज के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि के लिए प्रवृत्त करते हैं। सरयू तट पर चंदन की सुंदर चिता सजाकर दाह संस्कार होता है और एक दिन शुभ घड़ी और लग्न देखकर राजसभा में मुनिवर वशिष्ठ मंत्रियों तथा महाजनों की उपस्थिति में युवराज भरत को नीति तथा धर्म पालन का उपदेश देते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आज की गायक कलाकार थी कविता कृष्णमूर्ति। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6:50 हो रहे हैं। अब आइए आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

शाम 4 बजे आप सुनेंगे संदेश टू सोल्जर, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे ख्याल गायन। कलाकार होंगे पंडित भीमसेन जोशी। इसी में दिन 12:45 पर आप सुनेंगे शहनाई वादन। कलाकार होंगे उस्ताद बिस्मिल्ला खां और साथी। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे सितार वादन। कलाकार होंगे डॉक्टर राजेश शाह। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद, गैर फिल्मी गीत गजलों का कार्यक्रम अंजुमन हम लेकर आएंगे रात्रि 9:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत रात्रि 8 बजे और दिन 12:30 पर आप सुनेंगे प्रियंका सहवाल के गाए भजन। फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8:15 से कार्यक्रम रसमाधुरी में, 7:31 पर रसरंग में, शाम 6:10 और सुबह 10 बजे से छनकार में। शाम 7 बजे आप सुनेंगे संस्कृत कार्यक्रम, किसान भाइयों का कार्यक्रम किसानवाड़ी हम लेकर आएंगे शाम 6:30 पर, जिसमें आज की बातचीत का विषय है गन्ने की फसल में आवश्यक कृषि कार्य। इस विषय पर जानकारी देंगे महेंद्र कुमार। इसी में श्रोता सुनेंगे सुभाष चंद्र यादव और साथी के गाये लोकगीत। इन्हीं के गाये लोकगीतों को श्रोता सुन सकेंगे दिन 1:45 और सुबह 9:50 पर।

युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी हम लेकर आएंगे शाम 5:15 पर, जिसमें गीत संगीत के साथ श्रोता सुनेंगे आज की बात, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और यूथ डायरी। शाम 5 बजे आप सुनेंगे धरती के गीत। दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे कहकशा कार्यक्रम। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम अंगैया हम लेकर आएंगे दिन में 1:15 से, जिसमें गीत संगीत के साथ श्रोता सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अंगैया, जिसमें आज का विषय होगा किशोरियों और महिलाओं में अवसाद की समस्या और समाधान। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन 12 बजे। आपके पहले से आए हुए ईमेल संदेशों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस आप सुनेंगे दिन 11 बजे। सुबह 8:45 पर हम लेकर आएंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा। और गुड मॉर्निंग बनारस का प्रसारण समय होगा सुबह 7 बजे। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह की 6:55 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। लीजिए, एक बार फिर हाजिर हो गई हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त, वो जिसके नाम से होती है आपके दिन की शुरुआत।
2: हेलो, मैं पूजा, पहचाना?
3: इस नाम से उसे कोई नहीं जानता, वो बुलाने जो सब बुलाते हैं।
1: हाँ जी, पूजा और लेकर हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी केंद्र पर। बनारस, कल ना जब मैं कहीं रास्ते में जा रही थी तो मुझे लाल बत्ती यानी रेड सिग्नल पर एक बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिला। एक छोटी सी दुकान पर एक तरफ गर्मा गर्म बनारसी चाय छन रही थी और ठीक बगल में एक कैफे में झागदार कॉफी बन रही थी। दोनों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। तभी अचानक मन में मेरे एक ख्याल आया, क्या कभी चाय ने कॉफी से कहा होगा कि तू मुझसे बेहतर है, या कॉफी ने चाय से शिकायत की होगी लोग तुझे सुबह सुबह इतना याद क्यों करते हैं? नहीं ना, क्योंकि चाय जानती है कि उसकी मिठास का कोई मुकाबला नहीं और कॉफी जानती है कि उसका कड़कपन अपनी जगह बेमिसाल है। लेकिन हम इंसान सुबह आंख खोलते ही सबसे पहले अपना स्मार्टफोन उठाते हैं, सोशल मीडिया खोली, किसी दोस्त की नई गाड़ी की रील देखी, किसी साथ काम करने वाले का प्रमोशन हमें दिख गया और बस वहीं से शुरू होता है तुलना का वो सिलसिला जो सीधे हमारे सुकून को छीन लेता है। हम कंपेयर करने लगते हैं। दोस्तों, हम दूसरों की चमक धमक वाली हाईलाइट रील को अपनी बिहाइंड द सीन वाली जिंदगी से कंपेयर करने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं, यार मैं कहाँ रह गया, मेरे साथ वाले तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमारे घर वाले भी कभी कभी बात ही बात में हमें ये ताना सुना देते हैं। पर सच बात ये है दोस्तों कि अपनी कहानी का चैप्टर 1 किसी और के चैप्टर 20 जैसा कैसे हो सकता है। हर किसी की दौड़ अलग है, हर किसी का रास्ता अलग है। अगर कभी मन में ये ख्याल आए कि आप किसी से पीछे रह गए हैं, तो इस खूबसूरत बात को हमेशा याद रखिएगा। सूरज और चांद दोनों ही चमकते हैं, लेकिन अपने अपने वक्त पर। सूरज का मुकाबला चांद से कभी नहीं हो सकता। जब सूरज आता है तो पूरी दुनिया को दिन की रोशनी देता है, और जब चांद आता है तो वो रात की खामोशी में एक ठंडी

मखमली चमक भर देता है। दोनों का रोल अलग है, दोनों का वजूद अलग है, ठीक वैसे ही जैसे आपका और मेरा। आपकी खूबी, आपकी काबिलियत सिर्फ आपकी है दोस्तों। दुनिया में 8 अरब से ज्यादा लोग हैं, लेकिन आप जैसा एक भी दूसरा नहीं। अपनी ये यूनिकनेस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो आज खुद से एक वादा कीजिए, तुलना करना बंद करिए, तुलना मत कीजिए। कंपैरिजन किसी को सुखी नहीं कर सकता। जब आप दूसरों की तरफ देखना छोड़कर खुद की तरफ देखेंगे ना, तो समझ आएगा कि आपने बीते एक साल में, बीते एक महीने में कितना लंबा सफर तय किया है। आपका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ कल वाले आप से होना चाहिए। कल जो कमी रह गई थी, आज उसे बेहतर बनाइए। कल जो सुधार नहीं हो पाया, आज उसे करने की कोशिश करिए। बस अपने आप को इम्प्रूव करिए, अपने आप को अपडेट करिए, अपने से ही अपना कॉम्पिटिशन करिए। तब जो बदलाव होगा, जो इम्प्रूवमेंट होगी, वो असली की होगी। अपनी रफ्तार से चलिए, अपने कदम नापिए और अपनी हर छोटी जीत का जश्न मनाइए, क्योंकि आप यूनिक हैं। देखिए, एक बहुत अच्छी बात मैंने एक फिल्म में सुनी थी कि हाथों में हमारे 5 उंगलियां हैं और सभी की साइज अलग अलग है। अब हम चाहें कि हम सभी उंगलियों को एक साइज का कर दें, तो ये कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो हर किसी की अपनी खासियत है, हर किसी में अपना कुछ अलग गुण है, तो किसी को किसी से कंपेयर करने की क्या ही जरूरत है? मैं कैसा कर रही हूँ, सामने वाला कैसा कर रहा है, या और लोग कैसा कर रहे हैं, ये जज करना हमारा काम नहीं है। हर कोई अपनी जगह पर अपना बेस्ट दे रहा है, ये ज्यादा मैटर करता है, ये इम्पोर्टेंट है। और अगर उसमें कुछ कमी है, तो उसे सुधार करके उसे बेहतर बनाना ये जरूरी है। तो बस कंपैरिजन का जो स्केल आपने अपने पास रखा है ना, उसे उठा करके फेंक दीजिए। इस स्केल से अपना कंपैरिजन किसी दूसरे के साथ करना तो बिल्कुल ही गलत है। बस खुद को बेहतर बनाइए, खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करिए, और इसी तरह जुड़े रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, क्योंकि हम लेकर के आते हैं आपके लिए ढेर सारे प्रोग्राम्स और ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, मेरे यानी पूजा के साथ। सो बनारस, आज दिन है गुरुवार का और आज की तारीख है 27 अगस्त। तो चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और जानते हैं क्या खास हो रहा है अपने शहर बनारस में आज। वाराणसी में श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के पावन पर्व पर 28 अगस्त को बाबा विश्वनाथ का पारंपरिक झूलनोत्सव श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर बाबा विश्वनाथ सपरिवार झूले पर विराजमान होकर करीब 6 घंटे तक काशीवासियों और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। इसके लिए महंत आवास टेढ़ी नीम में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बाबा के झूले की साफ सफाई के साथ ही आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या 27 अगस्त को बाबा विश्वनाथ की पंचवदन चल रजत प्रतिमा का महंत आवास में पारंपरिक रूप से विशेष हरियाली श्रृंगार किया जाएगा। इसके बाद विधि विधान से पूजा अर्चना होगी। श्रावण पूर्णिमा के दिन बाबा का राजसी श्रृंगार कर चल प्रतिमा को नगर भ्रमण के लिए निकाला जाएगा। संयोजक ने बताया कि 28 अगस्त को शाम के समय बाबा की पंचवदन चल रजत प्रतिमा को गाजे बाजे के साथ महंत आवास से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ले जाया जाएगा। टेढ़ी नीम से निकलने वाली शोभा यात्रा के दौरान मार्ग में श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन होंगे। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन, डमरू वादन और धार्मिक जयघोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय होगा। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा के बाद बाबा की सपरिवार चल प्रतिमा को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित किया जाएगा। वहां विधि विधान से पूजन अर्चन के बाद बाबा का झूलनोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की भी संभावना है। बनारस रक्षाबंधन पर इस बार बनारस की प्रसिद्ध गुलाबी मीनाकारी से बनी राखियां खास आकर्षण का केंद्र बनी है। चांदी पर हाथों से की गई बारीक मीनाकारी वाली इन राखियों की मांग देश के साथ विदेशों में भी बढ़ रही है। कारीगर ने बताया कि इस बार 40 अलग अलग डिजाइन की राखियां तैयार की गई हैं और हर डिजाइन में 100-100 राखियां उपलब्ध हैं। कारीगर के मुताबिक इस बार कुल करीब 3,500 राखियां बनाई गई हैं। अब मीनाकारी को नई पहचान मिल रही है और विदेशों में भी इसकी मांग बढ़ रही है। इस बार मॉरिशस में 1500, अमेरिका में 1200 और कनाडा में 1000 राखियां भेजी गई हैं। बनारस वाराणसी के पहड़िया स्थित 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मुख्यालय में रक्षाबंधन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।

0: कार्यक्रम का शुभारंभ कमांडेंट राजेश्वर बालापुरकर और विशिष्ट अतिथि अर्चना बालापुरकर ने किया। इस अवसर पर स्कूल और एनजीओ की छात्राओं ने 100 से अधिक सीआरपीएफ जवानों को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। जवानों ने भी बहनों को सुरक्षा का वचन दिया। कमांडेंट बालापुरकर ने कहा कि इस आयोजन से घर से दूर तैनात जवानों को अपने परिवार जैसा माहौल महसूस हुआ। अगली खबर ये है, बनारस की रक्षाबंधन पर्व पर अपने घरों को आने वाले लोगों को राहत देने के लिए रेलवे 2 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। एक रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन दिल्ली और दूसरी चंडीगढ़ के लिए चलेगी। ट्रेन नंबर 04546 रक्षाबंधन स्पेशल गुरुवार को चंडीगढ़ से शाम 7:40 पर प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन शुक्रवार सुबह 9:33 पर लखनऊ पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में ट्रेन 04545 लखनऊ से शुक्रवार दोपहर 1 प्रस्थान करेगी। इस ट्रेन में एसी और जनरल श्रेणी की 17 बोगियां होंगी। इसी तरह 04012 रक्षाबंधन स्पेशल दिल्ली से गुरुवार रात 9:10 प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन शुक्रवार सुबह 6:30 पर लखनऊ होते हुए 11:45 पर वाराणसी पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन 04011 स्पेशल शुक्रवार शाम 7:50 पर वाराणसी से चलकर लखनऊ से रात 12:01 होते हुए अगले दिन सुबह 10:20 पर दिल्ली पहुंचेगी। अगली खबर ये है, बनारस की राष्ट्रीय खेल दिवस पर 27 अगस्त को काशी में खेल और युवाओं से जुड़ा खास कार्यक्रम होगा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज में खेलो इंडिया संवाद आयोजित किया जाएगा। दोनों जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद खिलाड़ियों, विद्यार्थियों और युवाओं से खेल को लेकर बातचीत होगी। इसमें खेल की सुविधाओं को बेहतर करने, नई खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और युवाओं को खेलों से जोड़ने पर चर्चा होगी। 2036 ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने और खेल के क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी उनके सुझाव लिए जाएंगे। कार्यक्रम में वाराणसी के स्थानीय खिलाड़ी भी युवाओं से अपने अनुभव साझा करेंगे। बनारस मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शहर में 7 खेलों का आयोजन होगा। रग्बी, हैंडबॉल, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, मार्शल आर्ट, हॉकी और जूडो में 300 से अधिक बालक बालिकाएं प्रतिभाग करेंगे। प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को अपनी तैयारी और प्रदर्शन परखने का अवसर मिलेगा। यूपी एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब के चेयरमैन ने बताया कि परमानंदपुर मिनी स्टेडियम में हैंडबॉल, रग्बी, हॉकी और एथलेटिक्स की अंडर 17 वर्ग की प्रतियोगिताएं होंगी। सो बनारस ये तो बात हो गई, क्या खास हो रहा है अपने शहर बनारस में आज, और अब जानते हैं इतिहास के बारे में। तो चलिए चलते हैं इतिहास की गलियों में और जानते हैं आज के दिन के इतिहास को। ১৯৩৯ में जेट ईंधन वाले विश्व के पहले विमान ने जर्मनी से पहली उड़ान भरी। आज ही के दिन 27 अगस्त 1993 में सीए भवानी देवी, जो भारतीय महिला तलवारबाज हैं, उनका जन्म हुआ था। 2010 में कोंकणी साहित्य के सबसे मजबूत स्तंभ रविन्द्र केलकर का निधन हुआ था। 2006 में आज ही के दिन भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता व निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी का निधन हुआ था। 1976 में आज ही के दिन भारतीय पार्श्व गायक मुकेश का निधन हुआ था। सो बनारस ये तो बात हो गई इतिहास की, और अब जानते हैं आज के स्पेशल डे के बारे में। तो आज है 27 अगस्त और 27 अगस्त को दुनिया भर में विश्व झील दिवस यानी वर्ल्ड लेक डे मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि झीलें सिर्फ खूबसूरत नज़ारे नहीं हैं, बल्कि हमारी धरती की जीवन रेखाएं हैं। ये न केवल इंसानों के लिए पानी का मुख्य स्रोत है, बल्कि लाखों जीव जंतुओं और पौधों की जीवन शैली का भी आधार है। दोस्तों, झीलें केवल पानी के स्रोत नहीं हैं, बल्कि धरती की जीवन रेखाएं हैं। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण बढ़ रहा है, झीलों का संरक्षण और भी जरूरी हो गया है। विश्व झील दिवस 2026 हमें यह अवसर देता है कि हम सब मिलकर यह संकल्प लें, झीलों की रक्षा करेंगे, उन्हें बचाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखेंगे। सो बनारस आज की बात हो गई, बीते कल की बात हो गई और आज के स्पेशल डे की भी बात हो गई, और अब बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसका रहता है आप सबको इंतजार।
1: काशी रत्न, द जेम्स ऑफ वाराणसी।

0: ब्रज की माटी की खुशबू, खड़ी बोली के दौर में भी ब्रज भाषा का वही पुराना लालित्य और शब्दों में रसावतार का अद्भुत संगम। बनारस जब हिंदी साहित्य में खड़ी बोली अपने पैर पसार रही थी, तब एक ऐसा रचनाकार आया जिसने ब्रज भाषा की मिठास को अमर बना दिया, जिनकी लेखनी से उद्धव शतक और गंगावतरण जैसे महाकाव्य जन्मे। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ साहित्य जगत के अनमोल रत्न जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की। चलिए आज के इस काशी रत्न के सफर में उतरते हैं रत्नाकर जी की काव्य गंगा में और महसूस करते हैं ब्रज भाषा के उस अलौकिक सौंदर्य को। 1866 में काशी की ऐतिहासिक धरती पर जन्मे रत्नाकर जी का जीवन बहुमुखी प्रतिभा से समृद्ध था। वे न केवल एक महान कवि थे बल्कि अयोध्या नरेश के सचिव भी रहे, लेकिन उनका असली साम्राज्य तो शब्दों का साम्राज्य था। जब दुनिया खड़ी बोली की ओर बढ़ रही थी, तब उन्होंने ब्रज भाषा का परचम लहराया। उनका महाकाव्य उद्धव शतक गोपियों और उद्धव के संवाद का ऐसा सजीव चित्रण है कि पढ़ने वाला भक्ति रस में डूब जाता है। जब गोपियां उद्धव से कहती हैं, भानो मनोमोहन को रूप हिए बीच अटकेओ, तो लगता है मानो भक्ति और प्रेम का साक्षात रूप सामने आ खड़ा हुआ हो। इसके अलावा गंगावतरण में गंगा के पृथ्वी पर आगमन का जो छंदबद्ध वर्णन उन्होंने किया है, वह आज भी अतुलनीय है। रत्नाकर जी सिर्फ पन्नों के कवि नहीं थे, उन्होंने काशी नागरी प्रचारिणी सभा के माध्यम से हिंदी भाषा और साहित्य की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। 1930 में जब वे अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बने, तो उन्होंने भाषा की गरिमा को एक नया शिखर दिया। आज रत्नाकर जी भले ही हमारे बीच भौतिक रूप से न हो, लेकिन उनकी रचनाओं की मिठास आज भी हर साहित्य प्रेमी के दिल में खुली हुई है। तो अगली बार जब भी गंगा आरती की गूंज सुने या ब्रज की होली के गीत गुनगुनाए, रत्नाकर जी के उन अमर छंदों को याद करना न भूलिएगा। काशी रत्न में आज के लिए बस इतना ही।
1: काशी रत्न, द जेम्स ऑफ वाराणसी।
0: सो बनारस, ढेर सारी बातें हो गई है ना, और इन बातों के बीच में ये बात करना भी बहुत जरूरी है कि कल है एक खास दिन, यानी बहनों का खास दिन जो अपने भाइयों को समर्पित करती हैं राखी के रूप में। जी हाँ, कल है रक्षाबंधन, तो आप सभी कल का अपना रक्षाबंधन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिए। अपने भाइयों को प्यार से राखी बांधिए, भाई अपनी बहन के घर जाकर के उन्हें ढेर सारा उपहार, ढेर सारे गिफ्ट दें, और जो बहनें अपने भाइयों से दूर हैं या जो भाई अपनी बहनों से दूर हैं, वो जहाँ भी हो उनका प्यार एक दूसरे के लिए रोज हर रोज बढ़ता रहे। बस इसी विश के साथ अब समय हो गया है मेरे यहाँ से जाने का, तो अपनी रेडियो दोस्त पूजा को दीजिए अनुमति इस वादे के साथ कि खुद से प्यार करना और खुद की देखभाल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब हम खुश होंगे तभी हम औरों में खुशियां बांट पाएंगे, उन्हें खुश कर पाएंगे। डू वेरी वेरी वेरी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे। हैप्पी थर्सडे बनारस, गुड मॉर्निंग।

Good morning, Banaras. अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में ठीक 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: आप हासिल कर सकते हैं महात्मा गांधी।
1: जीवन का लक्ष्य है आत्म विकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
0: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
0: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि।

0: और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानियों और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। एक रिपोर्ट।
1: नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में कल सुबह आई अचानक बाढ़ से अंतिम समाचार मिलने तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। इनमें से अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। पर्यटकों और उनके परिजनों की सहायता के लिए नेपाल पर्यटन बोर्ड ने टोल फ्री नंबर 1234, हेल्पलाइन 1144 और टूरिस्ट पुलिस नंबर 9851289445 जारी किए हैं। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
0: इस बीच नेपाल में आई बाढ़ को देखते हुए प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। बाढ़ के कारण दोनों जिलों में गंडक और नारायणी नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के करीब 150 स्थानों सहित देश भर में 1500 जगहों पर खेलो इंडिया संवाद के तहत युवाओं को संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे सुनिश्चित होगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। मेरा युवा भारत के राज्य निदेशक गोपेश पांडे ने बताया कि राजधानी लखनऊ में ये आयोजन 7 विभिन्न स्थानों पर होगा। समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।

0: भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। चिकित्सा संघ ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक नहीं लेने को कहा। इस बीच देश के कई हिस्सों में इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में भी चिकित्सा सतर्कता बढ़ा दी गई है। अस्पताल प्रशासन ने फ्लू जैसे लक्षण वाले मरीजों की समय पर पहचान, आवश्यक जांच और उपचार के साथ गंभीर मरीजों के प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा भी शुरू कर दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ से लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा का शुभारंभ करते हुए विशेष बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। योजना के अनुसार प्रदेश की 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की मातृशक्ति को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पहली बार आधी आबादी को शासन की योजना से जोड़ने के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाई गई।
1: वे सभी स्कीम है जिसमें बेटी के जन्म से लेकर के उसकी शिक्षा तक, उसके रोजगार तक, उसकी उद्यमिता तक और जीवन के हर पड़ाव पर सुरक्षा, नारी की सम्मान और नारी के स्वावलंबन का की गारंटी। यानी हमारी हर योजना, सरकार का हर निर्णय, सरकार का हर बजट इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए समर्पित है।
0: मुख्यमंत्री के लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का प्रदेश के विभिन्न जिलों में सजीव प्रसारण देखा गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं को उपलब्ध कराई गई निःशुल्क बस सेवा के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और सिटी बसों में 29 अगस्त की मध्यरात्रि तक महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान निगम की बसों में महिला यात्री एक सहयोगी के साथ निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। रक्षाबंधन पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने चंडीगढ़ लखनऊ और दिल्ली वाराणसी रूट पर विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। रेलवे प्रशासन के अनुसार चंडीगढ़ लखनऊ चंडीगढ़ आरक्षित स्पेशल ट्रेन आज रात 7:40 पर चंडीगढ़ से रवाना होकर कल 9:30 लखनऊ पहुंचेगी। वहीं दिल्ली वाराणसी दिल्ली स्पेशल ट्रेन आज रात 8:10 पर दिल्ली से चलकर कल सुबह 6:30 लखनऊ और 11:45 पर वाराणसी पहुंचेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 और बुंदेलखंड के 7 जिलों में कृषि उत्पादकता और अन्नदाताओं की आय बढ़ाने के लिए आयोजित समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह समझौता ज्ञापन अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादकता को सुदृढ़ करने और प्रदेश के कृषि भविष्य को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
2: मुझे प्रसन्नता है कि यूपी एग्री सफलतापूर्वक जमीनी धरातल पर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के विजन के अनुरूप आज यूपी के अंदर जमीनी धरातल पर कार्य करते हुए दिखाई दे रहा है। ये 4 MOUs उसी कड़ी को एक मजबूत तरीके से आगे बढ़ाने के क्रम में आगे बढ़ाया गया है और मेरा मानना है कि यहाँ पे जो 4 MOU हुए हैं वोगालैंड नेटवर्क्स फॉर ह्यूमैनिटी के साथ, ITC के साथ और एक्वाब्रिज के साथ, ये केवल एक MOU नहीं है, ये हमारे अन्नदाता किसानों की आय को बढ़ाने, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ाने और यूपी की कृषि के भविष्य को एक नई दिशा देने का एक हम सब का एक संकल्प भी है।
0: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET के परिणाम कल जारी कर दिए। आयोग की वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम घोषित करते हुए आयोग की ओर से बताया गया है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में शामिल करीब 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए हैं। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट upessc.up.gov.in पर उपलब्ध है। आकाशवाणी समाचार के पूर्व समाचार वाचक पंचदेव पांडे का कल गाजियाबाद के एक अस्पताल में निधन हो गया। वो करीब 89 वर्ष के थे। उन्होंने वर्ष 1963 में आकाशवाणी वाराणसी से उद्घोषक

के रूप में अपने सफर की शुरुआत की। उन्होंने 1983 से 1997 तक आकाशवाणी दिल्ली में समाचार वाचक के रूप में अपनी सेवाएं दी। प्रदेश भर में रुक रुक कर मध्यम से तेज बारिश का सिलसिला कल भी जारी रहा। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दो दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर की बात। कहा, भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार। पड़ोसी देश नेपाल की बाढ़ को देखते हुए प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिले में बढ़ाई गई सतर्कता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने लखनऊ से लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा का किया शुभारंभ। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मिलेगी निःशुल्क यात्रा की सुविधा। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी किए शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET के परीक्षा परिणाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सितार वादन। आज के कलाकार हैं डॉक्टर राजेश शाह। राग है विलास खानी तोड़ी। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं किशन राम डोहकर।

आज के कलाकार थे डॉक्टर राजेश शाह, राग था विलास खानी तोड़ी और इनके साथ तबले पर संगत की थी किशन राम डोहकर ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं, हमसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमेरिका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए $18 अरब तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों सहित 750 से अधिक लोग लापता है। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ली गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से ये आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हेन्दी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया।

0: और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। चीन के सरकारी चैनल ने बताया कि चीन की सीमा पर 3 लोगों की मौत हो गई है और 265 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 30 लोगों का काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में इलाज चल रहा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस आपदा में नेपाल और उसके लोगों के साथ है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779701075000। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पेचिंग में भारतीय दूतावास ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 0086185142905। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के 50 भारतीय तीर्थयात्री भी लापता लोगों में शामिल हैं। अब तक विनाशकारी बाढ़ के बाद कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों से 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपात वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। बिहार सरकार ने नेपाल में भयावह बाढ़ और गंडक नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित गंडक नदी के किनारे बसे जिलों के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज में नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। आज सुबह बैराज से करीब 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कल रात दर्ज किए गए 150,000 क्यूसेक डिस्चार्ज का लगभग आधा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे 5,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। अन्य संवेदनशील जिलों में भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। बिहार सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार पटना।
1: राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हाई अलर्ट को देखते हुए एक उच्च स्तरीय टीम भी गठित की गई है।
3: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित परिवार इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं।
4: उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार अगर राज्य का कोई भी नागरिक नेपाल में फंसा है या उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो उनके परिवार वाले तुरंत 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और उन्हें तुरंत मदद पहुंचाने के लिए दूतावास स्तर पर संपर्क शुरू कर दिया है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
5: यह संवाद युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ने का सीधा माध्यम प्रदान करेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रहे

0: चर्चा का हिस्सा बने। इसकी प्रमुख विशेषता युवाओं और अग्रणी भारतीय एथलीटों और पदक विजेताओं के बीच सीधा संवाद है। कार्यक्रम का एक केंद्रीय पहलू युवा संवाद होगा। इसमें युवा प्रतिभागियों को अपने विचार, दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह संवाद 5 विषयों पर आधारित होगा, जिनमें खेल, ओलंपिक आकांक्षाएं, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा शामिल हैं। खेलो इंडिया संवाद का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, अनुशासित और खेल प्रिय राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप किया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया है कि प्याज को 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि उत्पादन की अनुकूल संभावना को देखते हुए सरकार ने 2026-27 के दौरान मूल्य स्थिरीकरण कोष बफर के लिए रबी प्याज की 2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। खरीद प्रक्रिया 15 मई से शुरू हुई और बफर के लिए लगभग 1,21,000 मीट्रिक टन प्याज की खरीद की जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस नासिक से रवाना हो चुकी है। आनंद और सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: अमरीकी प्रशासन ने दुनिया भर के सभी अप्रवासी वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है। ये कदम अमरीकी विदेश विभाग द्वारा उन आवेदकों पर प्रतिबंध कड़ा करने और उनकी पहुंच सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो योग्य अमरीकियों के लिए आरक्षित सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने 18 अरब अमरीकी डॉलर का भुगतान करने और अपने फेसबुक तथा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा के लिए और भी कड़े उपाय करने पर सहमति जताई है। एक रिपोर्ट।
3: अदालत की मंजूरी मिलने पर यह समझौता मेटा के खिलाफ राज्यों की ओर से दायर मुकदमों को रोक देगा। मेटा ने कहा है कि किशोरों को अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और उपयोगी अनुभव प्रदान करना कंपनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेटा ने प्रतिद्वंदी टिकटॉक और यूट्यूब से भी इसी तरह के सुरक्षा उपाय अपनाने का आग्रह किया। यह समझौता कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी से जुड़े एक अदालती मामले का निपटारा करेगा, जो 2023 में मेटा पर मुकदमा दर्ज करने वाले 29 राज्यों में शामिल थे। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि मेटा ने बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म की लत लगाने वाले फीचर्स जानबूझकर डिजाइन किए और इसके बारे में लोगों से जानकारी छिपाई, जिससे युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के विकार पैदा हुए। मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि मेटा ने माता पिता की सहमति के बिना 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का डेटा नियमित रूप से एकत्रित करके संघीय कानूनों का उल्लंघन किया। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को पहली पारी में कम स्कोर पर ऑल आउट करके और फॉलो ऑन देकर दूसरे और अंतिम टेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कल चौथे दिन खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने 6 विकेट पर 229 रन बनाए थे। श्रीलंका के पासेंदु सूर्या बंदारा ने 92 रन बनाए। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद प्रियंका। नेपाल में जल प्रलय से मची तबाही को आज जनसत्ता और हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नेपाल में केदारनाथ जैसी त्रासदी, ग्लेशियर से 2000 फीट का टुकड़ा गिरने से झील बनी, टूटते ही सैलाब। अमर उजाला की सुर्खी है, दो नए सैन्य संपर्क बनाएंगे भारत और चीन। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की भारत यात्रा से पहले विशेष प्रतिनिधियों के बीच दो हॉटलाइन पर बनी सहमति, 8 बिंदुओं से सुलझाएंगे सीमा विवाद। दहेज मामलों में अब तारीख पर तारीख नहीं। नवभारत टाइम्स ने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज के मामले प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। सरकार की सख्ती के बाद गिरने लगे चीनी के भाव। दैनिक जागरण ने लिखा है, सप्ताह भर में चीनी के मूल्य में 12 से 15 रुपए की कमी, कुछ दिनों में और गिरावट का अनुमान। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है, फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच सूची में सबसे ज्यादा 19 स्टार्टअप के साथ भारत शीर्ष पर। स्वदेशी पावर चिप से लेकर सीधे कैंसर सेल्स तक दवा पहुंचाने के इनोवेशन कर रही ये कंपनियां। राजस्थान पत्रिका ने ध्वनि प्रदूषण शीर्षक से लिखा है, ट्रैफिक की कर्कश आवाज तले दबी पक्षियों की मीठी चहचहट, इंसानों को अब पूरा नहीं मिल पा रहा तनाव मिटाने वाला नेचुरल टॉनिक।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: India says that from Tokyo to London, heat waves send men to work in shorts. Japan's capital led the way, followed by London, as extreme temperatures swept across Europe. And with that, it's back to you, Pramod.
1: Thank you, Saira. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Massive flash flood claims nearly 160 lives in Nepal, over 750 people, including 133 Indians, missing. High alert issued in Bihar and Uttar Pradesh following Nepal flood. India sends first tranche of relief materials to Nepal. Prime Minister Narendra Modi to address Khelo India dialogue today through video conferencing. Center begins targeted release of onions from buffer stocks to ensure adequate availability and check seasonal price rise. US halts all visa appointments globally amid President Donald Trump's immigration crackdown. Meta to pay up to $18 billion to settle claims that its platforms harm children. And in men's cricket, Team India on verge of Test Series win against Sri Lanka in Colombo. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। नेपाल में अचानक जबरदस्त सैलाब आने से तकरीबन 160 अफराद की मौत हो गई, 133 भारतीय शहरियों समेत 750 से ज्यादा अफराद लापता हैं। नेपाल में सैलाब आने के तनाजुर में बिहार और उत्तर प्रदेश में सख्त चौकसी बरती जा रही है। भारत ने नेपाल के लिए इमदादी सामान की पहली खेप भेजी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब करेंगे। मरकज ने बफर स्टॉक से मखसूस मकदार में प्याज जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया है, ताकि इसकी मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सके और सीजन के एतबार से इसकी कीमत बढ़ने से रोकी जा सके। अमेरिका ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन कार्रवाई के तनाजुर में आलमी सतह पर वीजा की सभी दरख्वास्तों पर रोक लगा दी है। मेटा अपने प्लेटफॉर्म्स के जरिए बच्चों को नुकसान पहुंचने से मुतालिक दावों को निपटाने के लिए $18 अरब अदा करेगा। और मर्दों की क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के करीब है। अब खबरें तफसील से। नेपाल के वस्ती हिस्सों में कल अचानक जबरदस्त सैलाब आने से तकरीबन 160 अफराद की मौत हो गई, जबकि 133 भारतीय शहरियों समेत 750 से ज्यादा अफराद लापता हैं। तिब्बत से शुरू होते हुए ये सैलाब अपने साथ अहम पुलों को बहा ले गया, कई कस्बे और गांव तबाह हो गए और एक दर्जन पनबिजली प्रोजेक्ट दरहम बरहम होकर रह गए। नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल ने पार्लियामेंट को बताया कि मुकामी वक्त के मुताबिक कल सुबह 8:37 पर तिब्बत के खित्ते में जलजला आया और इसके 3 मिनट बाद अचानक सैलाब आने की इत्तला मिली। इससे ये जाहिर होता है कि जलजले के झटकों की वजह से ग्लेशियर फट पड़ा और इसके सबब ये सैलाब आया। नेपाल पुलिस के मुताबिक अचानक सैलाब आने से 157 अफराद की मौत हुई। नेपाल सरकार ने कहा है कि तकरीबन 500 अफराद लापता हैं। उधर चीन के सरकारी कंट्रोल वाले न्यूज चैनल के मुताबिक चीन के इलाके में भी 3 अफराद मारे गए, जबकि 265 लापता हैं। हुकाम ने बताया है कि नेपाल के मुख्तलिफ मुतासिरा इलाकों से लगभग 100 अफराद को बचाया गया है। इनमें से 30 अफराद काठमांडू में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी अस्पताल में जेर इलाज हैं। इधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेपाल के वजीर आजम बालेंद्र शाह से फोन पर बात की और उन्हें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। जनाब बालेंद्र शाह ने वजीर आजम मोदी की तरफ से यगांगत के इजहार और इमदाद की पेशकश पर उनका शुक्रिया अदा किया। भारत पहले ही इमदादी सामान की पहली खेप नेपाल भेज चुका है। काठमांडू में भारतीय सिफारत खाने ने इमदाद बाहम पहुंचाने और भारतीय शहरियों के बारे में जानकारी फराहम करने के लिए इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: इधर पेशिंग में भी भारत की सिफारत खाने ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर व्हाट्सएप के जरिए राबता कायम किया जा सकता है। जो भारतीय शहरी लापता हैं, उनमें से कम से कम 50 अफराद कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले यात्री थे। भारतीय शहरियों के साथ साथ 2 दर्जन से ज्यादा मुल्कों के सैयाह लापता बताए गए हैं। इनमें अमरीका, मलेशिया, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड शामिल हैं। नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल ने पार्लियामेंट को बताया कि मुख्तलिफ मकामात से नेपाली फौज के 44 अहलकारों समेत 80 सिक्योरिटी अहलकार लापता हैं। अचानक सैलाब आने से आठ पनबिजली प्रोजेक्ट

0: को नुकसान पहुंचा है, जिनकी मजमुई सलाहियत 354 मेगावाट की थी। इसके अलावा 19 पुल भी सैलाब के पानी में बह गए हैं। नेपाल की फौज, मुसल्ला पुलिस फोर्स और नेपाल पुलिस के अहलकार मुतासरा इलाकों में बचाव और इमदादी कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं। खबरनामे के लिए न्यूज डेस्क से मैं शमीम इरफान।
1: नेपाल में सैलाब आने के तनाजुर में बिहार और उत्तर प्रदेश में सख्त चौकसी बरती जा रही है। मुकामी इंतजामिया के साथ साथ NDRF सख्त निगरानी कर रही है और सरहदी इलाकों में बचाव और इमदादी टीमों को तैयार रखा गया है। इधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से सूरत हाल और दरियाओं के पानी की सतह में मुमकिन इजाफे के बारे में फोन पर बात की। बिहार सरकार ने मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली समेत गंडक दरिया से मुत्तसिल जिलों में चौकसी बरतने की हिदायत दी है। अलबत्ता गंडक दरिया में अब पानी उतरने का सिलसिला शुरू होने की इत्तला मिली है। बिहार सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो चौकस रहें, घबराएं नहीं और अफवाहों पर ध्यान न दें। इधर उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे हुए रियासत के लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 जारी किया है। नेपाल में शदीद सैलाब के तनाजुर में उत्तर प्रदेश के सरहदी जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब करेंगे। खेलों के कौमी दिन की तकरीबात के हिस्से के तौर पर इस प्रोग्राम का एहतमाम मेरा युवा भारत माई भारत कर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: खेलो इंडिया डायलॉग का एहतमाम पूरे मुल्क में किया जाएगा। इसमें रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में हर जिले में 2 कॉलेजों से नौजवान शिरकत करेंगे। इसके जरिए खेलों और नौजवानों के रहनुमाओं, सिविक जिम्मेदारी, रजाकारों, फिटनेस और मुल्क की तामीर में शामिल लोगों को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकेगा। इस डायलॉग के जरिए नौजवान अफराद को खेलों से मुतालिक मुल्क की उमंगों के सिलसिले में बराह रास्त बात करने का मौका मिलेगा और इस तरह उनके ख्यालात और नजरियात भारत के यूथ और स्पोर्ट्स इको निज़ाम के बारे में जारी मुजाकरात का हिस्सा बन सकेंगे। इसकी एक अहम खसूसियत युवा संवाद का एहतमाम होगा, जहां नौजवान शुरका को अपने ख्यालात और नुक्ते नज़र को बयान करने के लिए मदऊ किया जाएगा। खेलो इंडिया डायलॉग का एहतमाम एक तंदुरुस्त डिसिप्लिन और खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नज़रिए के ऐन मुताबिक हो रहा है, जिसमें नौजवानों की उमंगों को मुल्क की तरक्की के एजेंडे में मरकजी हैसियत हासिल होगी। दिल्ली से तकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: मरकज ने बफर स्टॉक से मखसूस मकदार में प्याज जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया है, ताकि इसकी मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सके और सीजन के एतबार से इसकी कीमत बढ़ने से रोकी जा सके। सारिफिन के उमूर, खुराक और तकसीम आम्मा महकमे की वजारत ने कहा है कि आने वाले महीनों में घरेलू मांग पूरी करने के लिए प्याज मुनासिब मकदार में दस्तियाब है, क्योंकि 2025-26 के सीजन में प्याज की पैदावार 307 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने का तखमीना लगाया गया है। वजारत ने कहा है कि मोबाइल वैन्स और कौमी इमदाद बाहमी सारिफिन फेडरेशन नेफेड के साथ साथ है सफल और केंद्रीय भंडार मराकज के जरिए प्याज 35 रुपये फी किलोग्राम की शरह पर फरोख्त की जाएगी। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं। वो गुजरात विद्यापीठ के तकसीम असनाद की 72वीं तकरीब में शिरकत करेंगे और अहमदाबाद में आइंदा होने वाले ओलंपिक और दौलत मुश्तरका खेलों की तैयारियों के सिलसिले में जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
0: जनाब अमित शाह अमरेली जिले के दुधला इलाके में नौ तामीर शुदा हैथनी झील का इफ्तिताह करेंगे। इसे हरे कृष्णा फाउंडेशन ने तैयार किया है। बाद में वजीर दाखिला अहमदाबाद के सर्किट हाउस में एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे, जिसमें वो आइंदा होने वाले ओलंपिक और दौलत मुश्तरका खेलों की तैयारियों का जायजा लेंगे। सपहर को जनाब अमित शाह मेहमान खसूसी की हैसियत से गुजरात विद्यापीठ की 72वीं तकसीम असनाद तकरीब में शिरकत करेंगे और वहां तलबा से खिताब भी करेंगे। बाद में वो भोपाल के کھڑلودیا حلقے میں لوک دربار میں شرکت کریں گے جہاں وہ مقامی لوگوں سے

0: बात करेंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: उत्तर प्रदेश में रियासती हुकूमत ने रक्षाबंधन के दौरान रियासत में ख्वातीन के लिए बस में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया है। ख्वातीन मुसाफिर आज से 29 अगस्त की निसफ शब तक उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन और शहर की बसों में एक फर्द के साथ मुफ्त सफर कर सकेंगी। ये सहूलत 900 से ज्यादा बसों में दस्तयाब होगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्राइवेट गाड़ियों को भी हिदायत दी है कि वो मनमाने तरीके से किराया वसूल न करें और मुसाफिरों से तयशुदा किराया ही लें। उन्होंने मजीद कहा कि गुंजाइश से ज्यादा सवारी बिठाने, ज्यादा किराया वसूल करने और मुसाफिरों के साथ बदसलूकी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा हुकूमत रक्षाबंधन के मौके पर हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट की आम बसों में ख्वातीन को मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करेगी। ये सहूलत आज दोपहर से शुरू होकर कल आधी रात तक मुअसर रहेगी। 15 साल की उम्र तक के बच्चे भी ख्वातीन के साथ मुफ्त सफर कर सकेंगे। ये सहूलत दिल्ली और चंडीगढ़ समेत किसी भी मुकाम के सफर के लिए वैलिड रहेगी। अमरीका ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन कार्रवाई के तनाजुर में आलमी सतह पर वीजा की सभी दरख्वास्तों पर रोक लगा दी है। अमरीकी महकमे खारजा के इस इकदाम का मकसद बंदिशों को सख्त बनाना और उन दरख्वास्त गुजारों के लिए रसाई को महदूद करना है जो बासलाहियत अमरीकियों के लिए मखसूस अवामी फायदों पर मुनहसर हो सकते हैं। ट्रंप इंतजामिया ने गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रखी है और ग्रीन कार्ड जारी करने से मुतालिक जाब्तों को भी सख्त बना दिया है। इससे एक दिन पहले ही अमरीकी इंतजामिया ने H-1B वीजा के लिए $1,03,265 की नई दरख्वास्त फीस तजवीज की थी। मेटा अपने प्लेटफॉर्म्स फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए बच्चों को नुकसान पहुंचने से मुतालिक दावों को निपटाने के लिए $18 अरब अदा करेगा। ये कदम एक अहम तारीखी तस्वीर के तहत सामने आया है। अदालत की जानिब से मंजूर होने पर इस समझौते से मेटा के खिलाफ मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों की जानिब से दायर मुकदमात का सिलसिला बंद हो जाएगा। अलबत्ता कंपनी को पूरे अमरीका में मुख्तलिफ अफराद और स्कूल डिस्ट्रिक्ट की जानिब से मुकदमात का सामना है। कोलंबो में सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच के आज आखिरी दिन श्रीलंका अपनी दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट पर 229 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। भारत ने 9 विकेट पर 503 रन का बड़ा स्कोर बनाकर अपनी पहली इनिंग्स खत्म करने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद श्रीलंका की पूरी टीम को 290 के स्कोर पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। इस तरह श्रीलंका को अब तक सिर्फ 16 रन की सबकत हासिल है और दूसरी इनिंग्स में उसके 4 खिलाड़ी आउट होने बाकी हैं। भारत ने पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता था। सिक्किम से ताल्लुक रखने वाले ग्रैंड मास्टर त्रिलोक सुब्बा को आलमी ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप में भारत की नुमाइंदगी करने के लिए मुंतखब किया गया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: बैन अल-अक़वामी सतह पर मारूफ ताइक्वांडो खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर सिक्किम के त्रिलोक सुब्बा को जनूबी कोरिया के शहर चुनचियोन में आलमी ताइक्वांडो पोमसे चैंपियनशिप में भारत की नुमाइंदगी के लिए मुंतखब किया गया है। ये चैंपियनशिप 16 से 20 सितंबर तक होगी। सुब्बा मर्दों के अंडर 60 इनफरादी पोमसे और सीनियर जुमरे के टीम मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। इस सिलेक्शन से पहले सुब्बा ने जुलाई 2026 में महाराष्ट्र में मुनक्किद हुई नेशनल ताइक्वांडो पोमसे चैंपियनशिप में नेशनल टीम के लिए सोने का तमगा जीता था। मैनक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: भारत के वीर चोटरानी और वेलवन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने नेपाल में आए भयानक सैलाब से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की शह सुर्खी है, नेपाल में सैलाब से तबाही, 100 से जायद अफराद हलाक, सैकड़ों लापता। अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नेपाल के वजीर आजम बालेन शाह से फोन पर बातचीत और उन्हें हर मुमकिन मदद फराहमी का वादा करने की खबर को भी नुमाया किया है। अखबार इनकलाब ने इस यकीन दहानी को अहमियत दी है कि भारत मुश्किल घड़ी में अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल के साथ है। अखबार इनकलाब ने तेलंगाना में सड़क हादसे में 6 अफराद की हलाकत को कौमी सफे पर जगह दी है।
1: खास खास खबरें एक बार फिर। नेपाल में अचानक जबरदस्त सैलाब आने से तकरीबन 160 अफराद की मौत हो गई। 137 भारतीय शहरियों समेत 750 से ज्यादा अफराद लापता हैं। نیپال

0: हाल में सैलाब आने के तनाजुर में बिहार और उत्तर प्रदेश में सख्त चौकसी बरती जा रही है। भारत ने नेपाल के लिए इमदादी सामान की पहली खेप भेजी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब करेंगे। मरकज ने बफर स्टॉक से मखसूस मकदार में प्याज जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया है ताकि इसकी मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सके और सीजन के एतबार से इसकी कीमत बढ़ने से रोकी जा सके। अमरीका ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन कार्रवाई के तनाजुर में आलमी सतह पर वीजा की सभी दरख्वास्तों पर रोक लगा दी है। मेटा अपने प्लेटफॉर्म्स के जरिए बच्चों को नुकसान पहुंचने से मुतालिक दावों को निपटाने के लिए 18 अरब डॉलर अदा करेगा। और मर्दों के क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के करीब है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे एक छोटी सी अंतराल के बाद।
2: दस लाख की लॉटरी मुझे,
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
7: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
8: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
9: ये सिर्फ एक गाना नहीं, सच्चाई है, इसलिए जिंदगी के इस सफर में आपके हम सफर बने हैं हम, UP112।
10: सड़क पर चलते वक्त होने वाले हादसे, नारी सुरक्षा, घर में किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी या अन्य किसी तरह की इमरजेंसी के दौरान बस फोन उठाओ, 112 घुमाओ और यूपी पुलिस द्वारा तुरंत मदद पाओ।
9: दिन हो या रात, यूपी 112 है आपके साथ। यूपी 112 द्वारा चिन्हित में जारी।
11: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
12: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
11: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
12: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
11: बुकिंग है तो संपर्क करें
13: 0542227658,
14: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप लीजिए सुनिए सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा।

दोस्तों आप सुन रहे हैं मधुरिमा अपनी रेडियो हमसफर नीलू तिवारी के साथ। तो सबसे पहले कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कल है रक्षाबंधन, कल घर आंगन में सजेगी राखी की थाल, कल बहनों की आंखों में होगा अपने भाई के लिए प्यार, कल भाई की कलाई पर सजेगा प्रेम और विश्वास का वो धागा जो सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि बचपन की अनगिनत यादों का रिश्ता है। लेकिन आज हम उस खूबसूरत दिन के आने की खुशी मना रहे हैं। आज की मधुरिमा उन सभी भाई बहनों के नाम जो चाहे कितने भी दूर क्यों न हो दिल से हमेशा एक दूसरे के पास रहते हैं।

दोस्तों कहते हैं ना कि रिश्ते दूरियों से नहीं टूटते, रिश्ते तो तब टूटते हैं जब दिलों में दूरी आ जाए। और भाई बहन का रिश्ता तो ऐसा है जिसमें रूठना भी है, मनाना भी है, लड़ना भी, और सबसे ज्यादा एक दूसरे की फिक्र करना भी है। तो आइए याद करते हैं अपने बचपन को और सुनते हैं ये पहला गाना भाई बहन के लिए।

दोस्तों की इतनी खूबसूरत यादें जुड़ी होती हैं भाई बहन के रिश्ते से। बचपन में जिस भाई से एक खिलौने के लिए लड़ाई होती थी, उसी के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता था। कभी भाई बहन की चोटी खींच देता था, कभी बहन भाई की शिकायत मम्मी से कर देती थी, और फिर जब कोई बाहर वाला कुछ कह दे तो दोनों एक दूसरे के लिए सबसे पहले खड़े हो जाते थे। यही तो है इस रिश्ते की खूबसूरती। कल जब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधेगी तो शायद उसके मन में बचपन की यही तस्वीर घूम रही होगी। वो स्कूल की गलियां, वो साथ खेलना, वो छोटी छोटी शरारतें,

और वो बिना कहे एक दूसरे को समझ लेना। राखी हमें हर साल यही याद दिलाती है कि जिंदगी चाहे कितनी भी बदल जाए, कुछ रिश्ते कभी पुराने नहीं होते। दोस्तों, कल फिर सजेगी राखी, कल फिर सजेगा प्यार, बहना के हाथों में होगी खुशियों की बहार, कलाई पर बंधेगा धागा, दिल से दिल जुड़ जाएगा और भाई बहन का ये रिश्ता फिर थोड़ा और खिल जाएगा। इसी के साथ सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों, आज की सुबह में एक बात उन बहनों के लिए भी जिनके भाई उनसे दूर हैं। शायद इस बार राखी के दिन भाई पास न हो, शायद नौकरी, पढ़ाई या किसी मजबूरी के कारण मुलाकात न हो पाए, लेकिन प्यार को दूरी की जरूरत नहीं होती। एक फोन कॉल भी राखी बन सकती है, एक वीडियो कॉल भी मिलन बन सकता है, और दिल से निकली दो बातें भी पूरे त्योहार की खुशी दे सकती है। और उन भाइयों के लिए भी जो अपनी बहन से दूर हैं, कल सिर्फ राखी की तस्वीर मत देखिएगा, बहन को फोन जरूर कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी रिश्तों को बड़े तोहफों की नहीं, बस थोड़े से वक्त की जरूरत होती है। एक फोन, एक मुस्कान, और कैसी हो, बस इतना ही तो चाहिए अपनों को, क्योंकि

राखी का धागा हाथों में बंधता जरूर है, पर इसका रिश्ता दिलों से जुड़ता है। बहन चाहे रहे कितनी भी दूर, भाई उसके पास होने का एहसास देता है। लीजिए सुनिए एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं मधुरिमा अपनी रेडियो हम सफर नीलू तिवारी के साथ। श्रोताओं, कल रक्षाबंधन है, तो आज एक छोटी सी तैयारी अपने मन में कर लीजिए कि कल राखी बांधते वक्त सिर्फ भाई की कलाई मत देखिएगा, उसमें अपना बचपन देखिएगा। और भाई जब बहन को उपहार दे तो सिर्फ उपहार मत दीजिएगा, उसके साथ अपना थोड़ा सा समय भी दीजिएगा, क्योंकि साल गुजर जाते हैं, बचपन लौट कर नहीं आता, लेकिन यादें हमेशा साथ रहती हैं। एक वक्त था जब भाई बहन एक ही घर में रहते थे, आज शायद दोनों की अपनी अपनी दुनिया है, फिर भी राखी का एक दिन दोनों को वापस उसी बचपन में ले आता है। यही तो त्योहार की असली खूबसूरती है। और अब बारी है उस भावना की जिसमें भाई बहन के रिश्ते के साथ पूरे परिवार की खुशियां जुड़ी होती हैं। कल जब घर में राखी की थाली सजेगी, मिठाई होगी और हंसी की आवाजें होंगी, तो घर सचमुच घर जैसा लगेगा।

दोस्तों, अब हमारी आज की रक्षाबंधन विशेष मधुरिमा अपने आखिरी पड़ाव की ओर है, लेकिन जाने से पहले आपसे बस इतना कहना चाहूंगी कि कल राखी जरूर बांधिए, लेकिन रिश्ते को सिर्फ एक दिन के लिए मत याद कीजिए। भाई बहन का रिश्ता जिंदगी भर का साथ है। रूठिए, मनाइए, थोड़ी नोक झोंक कीजिए, लेकिन एक दूसरे का हाथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिंदगी में बहुत से रिश्ते हमें मिलेंगे, लेकिन बचपन का साथी और परिवार, अपना इंसान बार बार नहीं मिलता। कल राखी होगी कलाई पर, लेकिन आज ही प्यार बांट दीजिए दिलों में, क्योंकि कल राखी का त्योहार आएगा, संग अपने खुशियां लाएगा। बहन बांधेगी प्यार की डोरी, भैया का चेहरा मुस्कुराएगा। दूर हो या पास रहे हम, दिल का रिश्ता साथ निभाएगा। तो दोस्तों, कल जब रक्षाबंधन का सूरज निकले तो अपने भाई बहन के लिए दिल में ढेर सारा प्यार लेकर उठिएगा। किसी को राखी बांधिए, किसी को फोन कीजिए, किसी को गले लगाइए, और अगर कोई बहुत दूर है तो दिल से याद कीजिए, क्योंकि रिश्तों की असली मिठास इसी में है कि हम अपने लोगों को यह एहसास दिलाते रहें कि तुम मेरे लिए खास हो और हमेशा रहोगे। इसी खूबसूरत एहसास के साथ मैं आपकी रेडियो हम सफ़र नीलू तिवारी आपसे इजाज़त लेती हूँ। कल के रक्षाबंधन की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। रिश्तों की डोर मजबूत रहे, भाई बहन का प्यार यूं ही बना रहे, और हर घर में खुशियों की मधुरिमा बनी रहे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए एहसास और नई मधुरिमा के साथ। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

मधुरिमा द साउंड ऑफ मेलोडी मधुरिमा। अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बलरामपुर और फर्रुखाबाद जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बलरामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रामकुमार मिश्र का।
1: जनपद बलरामपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन ने विकास खंड की ग्राम पंचायत बलुआ बलुई का स्थलीय भ्रमण कर ग्राम पंचायत में संचालित विकास कार्यों, मूलभूत सुविधाओं एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने गाँव का भ्रमण करते हुए ग्रामीणों से सीधे संवाद किया तथा उन्हें मिल रही सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया। जनपद में बाढ़ के दृष्टिगत संवेदनशील गाँव में राहत एवं बचाव दलों द्वारा बाढ़ राहत चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। जनपद में तैनात राहत एवं बचाव दलों द्वारा ग्रामीणों स्कूली बच्चों को बाढ़ आपदा समेत अन्य आपदाओं से निपटने हेतु पूर्व तैयारियों, बचाव के उपायों आदि के बारे में जानकारी दी जा रही है। जनपद बलरामपुर में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान अंतर्गत जिले के युवा स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं। युवा इस योजना का लाभ लेकर अपना रोजगार शुरू कर अन्य लोगों को भी अपने साथ रोजगार से जोड़ रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 331 युवकों को स्वरोजगार से जोड़ा जा चुका है। जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में योजना लाभकारी सिद्ध हो रही है।
2: ऐसे युवा जो कोई विनिर्माण के क्षेत्र में यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री, इन दो इंडस्ट्रियों से संबंधित कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, वो युवा 1 लाख से लेके 5 लाख तक लाभान्वित हो सकते हैं। लक्ष्य के सापेक्ष बैंकों को 1054 फाइल प्रेषित की जा चुकी है। 1400 का भौतिक लक्ष्य है और उसके सापेक्ष 1054 पत्राव बैंक को प्रेषित किया जाए।
1: जनपद में परिवार नियोजन के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने, छोटे परिवारों के संदेश को घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन एवं मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने कलेक्ट्रेट परिसर से परिवार नियोजन जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनपद की मिश्रित आबादी एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे होने के कारण जिले में शांति व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट विपिन कुमार जैन ने संपूर्ण जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 163 लागू दी है। यह आदेश 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा। जिला प्रशासन द्वारा यह कदम आगामी त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करने वाले असामाजिक तत्वों पर रोक लगाने के लिए उठाया है। सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से अफवाह फैलाने, भ्रामक प्रचार करने या वैमनस्यता फैलाने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। जिला कृषि अधिकारी उपेंद्र नाथ खरवार ने बताया कि खरीफ मौसम में कृषक बंधुओं को प्राकृतिक आपदाओं एवं प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों से होने वाले संभावित नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत जनपद के सभी ऋणी एवं गैर ऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं। खरीफ मौसम में धान, केला एवं मिर्च फसलों को योजना के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। ऋणी कृषकों के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। प्रदेश में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निरंतर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में जनपद बलरामपुर के विधानसभा क्षेत्र सदर अंतर्गत बलरामपुर सावस्ती बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 पर गोंडा बलरामपुर रेलखंड में बलरामपुर एवं झारखंडी रेलवे स्टेशन के मध्य स्थित संपार संख्या 136 स्पेशल 3E पर प्रस्तावित 2 लेन रेल ऊपरगामी सेत निर्माण का कार्य भूमि पूजन बलरामपुर में सम्पन्न हुआ। भूमि पूजन विधायक सदर पलटू राम द्वारा वैदिक मंत्रों चार एवं विधि विधान के साथ किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रेल गामी सेतु के निर्माण से रेल फाटक पर लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलेगी तथा नागरिकों को सुरक्षित, सुगम और निर्बाध आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी। जनपद में सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने तथा वाहन चालकों एवं आम जन को यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 20 अगस्त को पूरे जनपद में सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं प्रवर्तन विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत जनपद की सभी तहसीलों में प्रमुख मार्गों, चौराहों, सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को सुरक्षित यातायात नियमों की जानकारी दी गई। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के

0: विरुद्ध प्रवर्तन की कार्रवाई की गई। जनपद बलरामपुर में 22 अगस्त को नवागत पुलिस अधीक्षक मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि जनपद में अपराध पर प्रभावी अंकुश, कानून व्यवस्था का अनुपालन, महिला सुरक्षा जनपद पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि
1: सबसे पहली प्राथमिकता अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के लिए कठोर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण, जन सुनवाई को और प्रभावी बनाया जाएगा और समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। तीसरी जो है, पुलिस के व्यवहार को संयमित और नियमित कराया जाएगा जिससे कि पुलिस का व्यवहार अच्छा हो। ये तीन हमारे फोकस के बिंदु होंगे।
0: जनपद बलरामपुर में सावन माह पर जिले के सभी प्रमुख शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मुख्यालय स्थित झारखंडी मंदिर, राजापुर भरिया स्थित बाबा जंगलीनाथ मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है।
2: बलरामपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं फर्रुखाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गौरव यादव का।
3: उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री तथा जनपद के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाए तथा अधिकारी जनप्रतिनिधियों के फोन अवश्य उठाएं। बैठक में पेयजल, सिंचाई, सड़क, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और ग्रामीण विकास सहित विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा कर लंबित कार्य अतिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर लोकसभा सांसद मुकेश राजपूत, विधायक डॉक्टर सुरभि, एमएलसी प्रांशुदत्त द्विवेदी, जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृत चेक, ब्रेल किट, करौनी पत्र, आवास योजना की चाबी तथा अन्य प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने फर्रुखाबाद जनपद के आगमन पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज फतेहगढ़ में आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने छात्राओं को साइबर क्राइम और सोशल मीडिया के प्रभाव के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बेटियों को जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत से आगे बढ़ने और अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महिला चिकित्सालय में कन्या जन्मोत्सव मनाया गया। यहां केक काटकर 20 नवजात बेटियों और माताओं को खिलौने, बेबी किट, मिठाई का वितरण किया। उपाध्यक्ष जी ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निरीक्षण कर ड्रेस और भोजन की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही वृद्धाश्रम के निरीक्षण के दौरान बुजुर्गों को माता पिता समान बताते हुए के स्वास्थ्य की देखभाल तथा खान पान का विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी। कार्यक्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी सहित अन्य अधिकारी व शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। फर्रुखाबाद जनपद में बाढ़ से प्रभावित किसानों की मदद हेतु जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैंक प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के किसान क्रेडिट कार्ड धारक कृषकों को प्राथमिकता के आधार पर फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति दिलाने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही बैंकों द्वारा निरस्त किए गए आवेदनों का पुनः सत्यापन कराने और अनियमितता पाए जाने पर संबंधित बैंक के खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेजने का फैसला लिया है। जिलाधिकारी ने KCC, SHG, PMEGP, MYSPI और मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रमों में गति लाने तथा लंबित ऋण आवेदनों को बिना अविलंब निस्तारित करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौड़ सहित अग्रणी बैंक प्रबंधक तथा अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। फर्रुखाबाद जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर एवं पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने स्थलीय निरीक्षण कर राहत एवं बचाव योजनाओं की गहनता से समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को समयबद्ध ढंग से राहत सामग्री, खाद्यान्न, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं एवं अन्य आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा संवेदनशील क्षेत्रों में निरंतर निगरानी बनाए रखने के साथ साथ संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए गए।
4: फर्रुखाबाद में गंगा जी और रामगंगा की वजह से बाढ़ आती है और इस बार गंगा जी का स्तर जो चेतावनी बिंदु है उससे ऊपर गया है बट खतरे के निशान से अभी नीचे है। 3 गांव मरहूम हुए हैं, उनका सभी का विजिट किया गया है और 300 लोगों को बाढ़ शरणालय में विस्थापन किया गया है। शरणालय में सभी व्यवस्थाएं की गई है, हेल्थ कैंप भी लगाए जा रहे हैं, साफ सफाई की व्यवस्था है, फॉगिंग छिड़काव, कुक्ड फूड वहां पर दिया जा रहा है और शिक्षा विभाग की तरफ से बच्चों के लिए वहां पे क्लासेस भी लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा गांव में जो आपके पशु हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं तो उसे पशु नाले की भी व्यवस्था की गई है और उनके चारे की भी व्यवस्था की गई है।
3: फर्रुखाबाद जनपद में ऑपरेशन ग्राम संवाद का आयोजन पुलिस अधीक्षक आरती सिंह द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सभी थाना प्रभारी, बीट कांस्टेबल एवं क्षेत्राधिकारी अपने अपने अधिकार क्षेत्र वाले गांव में एक दिन बीट की सूचनाओं, स्ट्रीट शीटरों एवं आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के प्रति जानकारी एकत्र करेंगे। इस ग्राम संवाद का मुख्य उद्देश्य गाँव के संभ्रांत लोगों से बेहतर समन्वय बनाना है, जिससे लोग बेखौफ होकर आपराधिक प्रवृत्ति एवं स्ट्रीट शीटरों की जानकारी बिना डर के पुलिस से साझा करें, भयमुक्त और अपराध मुक्त समाज का निर्माण हो सके।
5: किस इसमें सभी थाना प्रभारी, लीड कांस्टेबल, क्षेत्राधिकारी किसी भी एक दिन अपने क्षेत्र के गांव में जाएंगे, वहां पे जितनी भी सूचनाएं हैं, चाहे वो ब्रीड की सूचनाएं हो गई या फिर एचएस की सूचनाएं हो गई, सी प्लान ऐप में जो संप्राप्त व्यक्ति हैं उनसे जुड़ी सूचनाएं हो गई, इन सारी चीजों

0: से एक तरह से संवाद स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है इस पूरे योजना के तहत।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। जिले की हलचल, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार माधुरी उर्फ सोनी, पत्नी राजकुमारी, निवासी मलहिया टोला, थाना रामनगर, वाराणसी से दिनांक 25 फरवरी 2026 दिन बुधवार से अपने घर से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 28 वर्ष, रंग गोरा, लंबाई 5 फीट है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर अपने निकट के थाने या थाना रामनगर को सूचित करें। सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार पूजा राजभर, पुत्री पप्पू राजभर, गंगापुर वाराणसी से विगत कुछ दिनों से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 21 वर्ष, लंबाई 5 फीट 1 इंच, रंग सांवला है। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या थाना रोहनिया गंगापुर को सूचित करें। सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार मनोज राजभर, पुत्र रमेश राजभर, सुंदरपुर वाराणसी से 3-4 महीनों से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 20 वर्ष, लंबाई 5 फीट 4 इंच, चेहरा लंबा है और इनका रंग गेहुआ है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर अपने निकट के थाने या थाना चितईपुर वाराणसी को सूचित करें। सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार टिंकू मदनवाल उर्फ मोनू, पुत्र राम आश्रय मदनवाल, पंचकोसी रसूलगढ़ सरायमोहन वाराणसी से दिनांक 14 जुलाई 2026 दिन सोमवार से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है कि इनकी उम्र 40 वर्ष, लंबाई 5 फीट 7 इंच है, रंग गेहुआ है और इनके बारे में अगर आपको कोई भी सूचना मिलती है तो अपने निकट के थाने या कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। थाना लालपुर पांडेपुर वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार अनीस कुमार उपाध्याय उर्फ बाबाजी, पुत्र स्वर्गीय पारसनाथ उपाध्याय, ओम नगर कॉलोनी गोईठा पांडेपुर से दिनांक 20 जून 2026 से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 40 वर्ष है, लंबाई 5 फीट 5 इंच, रंग सांवला है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर अपने निकट के थाने या थाना पांडेपुर वाराणसी को सूचित करें। इसी के साथ खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

केवल काली पुतली का दान ज्योतिदान, नेत्रदान को परिवार की परंपरा बनाए। नेत्रदान का संकल्प आज ही ले। ज्योति वो अमूल्य उपहार है जो आप ही दे सकते हैं। दृष्टि के आनंद को बांटिए, जीवन जीते रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम रिले करेंगे अपने

0: आज की पेशकश आकाशवाणी लखनऊ के मरकज से।
1: आज के उर्दू प्रोग्राम के साथ शाइस्ता जाहिद का सलाम कबूल फरमाएं। सामईन, ईद मिलादुन नबी पर समात फरमाएं। खुसूसी उर्दू प्रोग्राम तहरीर है मोहतरम जनाब रईस अहमद साहब की, सदाकार हैं जनाब आसिफ इकबाल साहब, जनाब डॉक्टर सईद अख्तर साहब और जनाब शमसुल आरफीन साहब।
2: रात के तकरीबन 3:32 हो रहे थे जब मैंने अपना तवाफ पूरा किया। खाने काबा का सहन दूधिया रोशनी से नहाया हुआ था, लेकिन मेरी नजर में दूधिया रोशनी से ज्यादा खुदाए जुलजलाल के मुकद्दस अनवार से मुनव्वर था ये पाक सहन। मेरे अलावा भी बहुत से अफराद तवाफ काबा में मशगूल थे। कुछ लोग दुआएं कर रहे थे तो कुछ नमाज में अपने रब के रूबरू उसकी सना बयान कर रहे थे। तवाफ के बाद की नफल पढ़कर मैं एक कोने में बैठ गया। मन में ख्याल ये था कि थोड़ा आराम कर लूं, फिर तहज्जुद पढ़ूंगा। उस वक्त फरहत बख्श हवाएं चल रही थी जिससे रूह तक तस्कीन महसूस हो रही थी। मैं उसी जगह पर लेट गया, कहीं से कुरान की तिलावत की सदा आ रही थी।

0: उसे सुनते सुनते मेरी आंख लग गई। अचानक तेज हवाएं चलने लगी, बादल गरजने की आवाज आई। ये आवाज इतनी तेज थी कि मेरी आंख खुल गई। थोड़ी देर कबल जिस खाने काबा का सहन लोगों की इबादतों से पुरनूर था, उसी खाने काबा के सहन में मेरे अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं मुतहय्यर होते हुए इधर उधर देख रहा था कि मकाम इब्राहिम से दो नूर नमूदार हुए जिनका कद हद्दे निगाह तक बुलंद था। उन दोनों में एक नूर नुकरई था जबकि दूसरे का तिलाई। धीरे धीरे वो मेरे करीब आ पहुंचे और एक साथ सलाम किया। मेरे मुंह से बमुश्किल से सलाम का जवाब निकला। फिर मैंने कपकपाती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? नुकरई नूर से आवाज आई, मैं वक्त हूँ। और तिलाई से आवाज आई, मैं हिजाज हूँ। लेकिन आप लोग इंसानी शक्ल में और जबान भी वो जो मैं समझ सकता हूँ, भला ऐसे कैसे? इस पर वक्त ने जवाब दिया,
1: क्यों, क्या आप खालिके कायनात की कुदरत पर शक करते हैं?
0: अस्तग़फिरुल्लाह, लेकिन आप लोगों का कद इतना बुलंद है कि आपसे बात करने के लिए मुझे अपना सर ऊपर उठाना पड़ रहा है।
2: अच्छा रुको, हम लोग तुम्हारे कद के बराबर आ रहे हैं।
0: फिर देखते ही देखते वो दोनों मेरे कद के बराबर हो गए। लेकिन उन दोनों से नूर फूट रहा था जिससे आसपास सब कुछ मुनव्वर नजर आ रहा था। फिर वक्त ने कहा,
1: तुम अभी मन में ये सोच रहे थे कि आज से 1450 साल पहले कैसा रहा होगा ये खाने काबा जब हमारे नबी का दौर था।
0: बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन आपको ये इल्म कैसे हुआ?
1: जिस खुदा ने तुम्हारे रूबरू इंसानी शक्ल में हमें भेजा है उसी रब ने ही ये बताया है।
0: ओह अच्छा, सुभान अल्लाह।
1: आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले के वक्त में जाना पड़ेगा।
2: बिल्कुल ये वक्त है, इन्होंने नबी के जमाने का मुशाहिदा किया है। लेकिन वक्त भाई, मेरी गुजारिश है कि आप नबी की विलादत से कबल के हालात सबसे पहले मेरे यानी हिजाज की सरजमीन से बताइएगा।
1: मैं पहले मक्का, मदीना, ताइफ और शुमाल मगरिब के इलाके से शुरू करूंगा। दरअसल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान तकरीबन 600 साल का फर्क है। ये वो दौर था जब इंसानियत शर्मसार हो रही थी। गुनाहों की बू जज़ीरतुल अरब ही नहीं बल्कि पूरे आलम में फैली थी।
0: गुनाहों की बू?

0: मैं कुछ समझा नहीं।
1: वक्त भाई, जजीरतुल अरब की जुल्मतों पर कुछ मैं अर्ज करूं?
2: जी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं।
1: नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले के दौर को दौरे जाहिलियत कहा जाता है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि वो लोग जाहिल या अनपढ़ थे, उनमें भी कुछ पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन वो लोग अखलाकी और रूहानी तौर पर बिल्कुल जाहिल थे।
0: अखलाकी जाहिल, मैं समझा नहीं।
1: चलिए मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। दरअसल ये लोग सहरा नशीनी और खाना बदोशों जैसी जिंदगी गुजारते थे और उसी के आदि हो चुके थे। मुआशरे की फलाह के लिए कोई बेहतरीन उसूल नहीं था।
2: हिजाज साहब, आप उस मुआशरे की खातीन का जिक्र करें कि उनको क्या हुकूक हासिल थे।
1: जी बिल्कुल, चलिए हम आपको एक कबीले की तरफ ले चलते हैं।
3: हिजाज ने अपने हाथ हवा में उठाकर उसको गोल दायरे में खींच दिया। देखते ही देखते एक दूसरा मंजर सामने आ गया, जहां दो पहाड़ियों के दामन में एक कबीला आबाद था, जिसे बनू तमीम कहते हैं।
1: ये बनू तमीम कबीला है। वैसे तो औरतों के हालात पूरे जजीरतुल अरब में खराब थे। वहां ख्वातीन को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता था, बल्कि खुद औरतों को माल की तरह तकसीम कर दिया जाता था। बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था।
0: जिंदा दफन, वो क्यों?
1: दरअसल उनको ये लगता था कि बेटियां जब बड़ी हो जाएंगी तो उनकी शादी करनी पड़ेगी, जिससे उन्हें मुआशरे में शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। दूसरे कुछ कबायल गरीबी की वजह से भी ऐसा करते थे। उनको लगता था लड़का होगा तो जंग के लिए अफराद बढ़ेंगे, कबीला बड़ा होगा, जबकि लड़कियों की शादी करनी पड़ेगी, लिहाजा गुर्बत में इनका बोझ कौन उठाए।
0: अच्छा, तो इतनी बुरी सोच थी।
2: हाँ क्यों नहीं, चलिए जिंदा दरगोर होती बच्चियों का एक मंजर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।
0: ठीक है, लेकिन बिल्कुल करीब से ना दिखाना, क्योंकि मुझ पर गम हावी हो जाता है।
2: हाँ ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे।
3: वक्त ने अपना दाहिना हाथ आसमान की जानिब किया और फिर तेजी से जमीन की जानिब ले आया। देखते ही देखते मंजर तब्दील हो गया। रेत का बड़ा सा मैदान था, ऊंची नीची रेत के टीले नजर आ रहे थे। उन्हीं टीलों के एक तरफ अच्छे खासे आदमियों की भीड़ जमा थी और भीड़ का ताल्लुक भी बनू तमीम के कबीले से था। भीड़ में एक 4 साला मासूम लड़की हैरानो परेशान खड़ी थी। उसको अच्छे से तैयार किया गया था। पास में एक अधेड़ उम्र अराबी एक गढ़ा खोद रहा था। थोड़ी देर में जब वो गढ़ा खोद चुका तो उसने उस मासूम बच्ची को गढ़े के अंदर लिटा दिया। वो बच्ची चीखने लगी, अब्बा मुझे इसमें मत डालो, प्यारे अब्बा मुझ पे मिट्टी मत डालो, मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन वो बेरहम बाप लगातार मिट्टी डालता रहा। धीरे धीरे उस मासूम की आवाज कम होते होते बिल्कुल खत्म हो गई। अब इंसान नुमा दरिंदा पसीना पोंछता हुआ लोगों से फखरिया मुखातिब हुआ, ए लोगो, आज मैंने अपनी ये 5वीं बेटी दफन की है। इससे पहले वो कुछ और बोलता, मैंने घबराकर वक्त से कहा, अब मुझे यहाँ और नहीं रुकना, कहीं और चलो। वक्त ने हाथ से इशारा किया तो फिर हम वापस अपने पुराने मकाम पर आ गए। फिर वक्त ने कहा,
2: देखा, ये जमाने जाहिलियत का एक अदना नमूना था।
0: अदना, तो क्या ऐसे कभी ही काम और भी होते थे? इस बात पर हिजाज बोला,
1: बिल्कुल, और भी बहुत कुछ होता था जमाने जाहिलियत में, जैसे बादानोशी, छोटी छोटी बातों पर जंगे छिड़ जाना, जिनाकारी, कीमारबाजी और सूदखोरी वगैरह वगैरह।
0: अरे ये तो सरासर गुमराही और जिहालत है।
2: तभी तो इसे दौरे जाहिलियत का नाम दिया गया।
0: फिर तो सही दिया गया।
1: लेकिन जब ये जाहिलियत हद से ज्यादा हो गई और चारों तरफ जुल्मत की हुकूमत कायम हो गई, तब रब्बे कायनात ने उस मोहसिन इंसानियत को मबऊस किया जिसे सारी दुनिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानती।

काबा में अब इंसानों की तादाद अच्छी खासी हो गई थी। फजर की अजान हो रही थी। अब मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने नींद की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त की जियारत कर

0: इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम खत्म होता है। आदाब।
1: उर्दू प्रोग्राम आज की पेशकश थी आकाशवाणी लखनऊ के मरकज से, पेशकश आसिफ इकबाल की थी। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए
5: 0542227658।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें
6: 0542227658।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं आप लीजिए सुनिए लोक संगीत। आज के कलाकार हैं सुभाष चंद्र यादव और साथी। इनके साथ ढोलक पर साथ दे रहे हैं सुभाष और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं शिव वचन और कोरस में हैं शीतला प्रसाद और बरसाती। इनके स्वर में सबसे पहले लीजिए सुनिए मिर्जापुरी कजरी।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। आज के कलाकार थे सुभाष चंद्र यादव और साथी। इनके साथ ढोलक पर संगत की थी सुभाष ने और हारमोनियम पर साथ दिया था शिव वचन ने। कोरस में थे शीतला प्रसाद और बरसाती। इसी के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म 1942 ए लव स्टोरी से। आवाज है लता मंगेशकर की, गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

अब लीजिए सुनिए अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में आशिकी फिल्म का गीत। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

अब लीजिए सुनिए अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में फिल्म बादशाह का ये गीत। गीत लिखा है जावेद ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

अब लीजिए सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म बाजीगर से ये गीत। गीत लिखा है नवाब आरजू ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

अब लीजिए सुनिए सोनू निगम की आवाज में चाहत फिल्म का ये गीत। गीत लिखा है जमीर काजमी ने और संगीत दिया है श्याम सुरेंद्र ने।

अब लीजिए सुनिए बाबुल सुप्रियो और महालक्ष्मी की आवाज़ में चेहरा फिल्म का ये गीत। गीत लिखा है राहत इंदौरी ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

अबले जी सुनिए साधना सरगम और मुर्तजा की आवाज़ में साथिया फिल्म का ये गीत। गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत दिया है आर डी, क्षमा कीजिएगा, संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

अब लीजिए सुनिए श्रेया घोषाल की आवाज़ में फिल्म साया का ये गीत। गीत लिखा है सईद कादरी ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

कार्यक्रम के अंत में अब लीजिए सुनिए सोनू निगम और श्रद्धा पंडित की आवाज में संघर्ष फिल्म का ये गीत। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

मीडियम वेव 241.56 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स। मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स। वेव्स OTT पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। प्रस्तुत है आपके ईमेल संदेशों पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। और आज कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त अनुपम। आप सभी को हमारा नमस्कार और आज के दिन की शुभकामनाएं।

को हमारा नमस्कार और आज के दिन की शुभकामनाएं। कार्यक्रम में जो पहले से आए हुए मेल होते हैं हम उनको शामिल करते हैं, ये तो आपको पता है, लेकिन जो श्रोता आगे इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए हम अपनी मेल आईडी बताना चाहेंगे। नोट कीजिए हमारी मेल आईडी aarvnsfgexp@gmail.com। मेल आईडी एक बार फिर से सुन लीजिए fgexpaarvns@gmail.com। तो हम शुरू कर रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। हर बार हम आपको कार्यक्रम शुरू होने के पहले बता देते हैं कि हमारे मेल के समंदर में कितने मेल आ चुके हैं। तो आज इनकी संख्या है 74,807 इतनी ढेर सारे मेल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहे हैं और इन मेल्स में से हमें आपके छांटने हैं कुछ खास मेल्स को। तो हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक श्रोता इस कार्यक्रम में शामिल हो पाएं। तो देखते हैं, पहला मेल हमने लिया है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश का। भेजने वाले श्रोता है मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाई जान ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधान खुराना का भी मेल हमें मिला है। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्बी और बाय हिमाक्ष ने भी हमें मेल किया है और ये मेल भेजा है। पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपांकर गोप ने। गोवर्धन बिहार कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा। तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, मोहम्मद यूसुफुद्दीन। बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू। सिंधी बुजुर्ग महाराष्ट्र से किशोर वडतकर, शुभम वडतकर, पुन्नु वडतकर का भी मेल हमें प्राप्त हुआ। छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम अक्षय सेन। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। मदरसा गेट भावपुर मड़ियाह जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नावेद इरशाम, अजरा तबस्सुम। रायपुरा ने जिला बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी, आफिया परवीन। जिला सिरसा हरियाणा गांव खारिया ढाणी से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू, नव्या बिजारनिया। जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्याण, सुरेंद्र भ्याण, शमशेर भ्याण, मनोज भ्याण और इनके परिवार के सभी सदस्य। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से मोहम्मद ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मिराज जहां का भी मेल हमें मिला है। कंवर कॉलोनी बड़वा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली। आप सभी सुनना चाहते हैं आशा फिल्म का गीत लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में। शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आशाओं के सावन में उमंगों की बहार है। जी हाँ, अब ये महीना तो धीरे धीरे आ गया है ना, जिसमें बहुत से पर्व और त्यौहार हैं। तो चलिए बातें करेंगे और भी, लेकिन हम फरमाइश पहले शामिल करना चाहेंगे। अगली फरमाइश में भेजी है पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुतासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद ने। बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। अपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्राव्या रामटेके। गिर्रा पलारी छत्तीसगढ़ से वीरेंद्र कुमार साहू, सोनू, आशीष, कपिल साहू। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना गोंडा ने, प्रणय कुमार प्रसिद्धि, प्रतिभा गोंडा ने, हीरामण शेंडे। पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधान खुराना का भी मेल हमें मिला है। गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से पूजा रघुवंशी, नंदिनी रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा रघुवंशी, कुमारी मराठा, भाऊ मराठा, ललिता, जगदीश चौहान, चंदा, युवराज वानखेड़े। गड़िया मौजे उस्तु भागलपुर से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी और सुनीता देवी। शिवाजी चौक कटनी से हमारे बहुत पुराने श्रोता अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कन्नौजिया, पवन यादव, यहीं से संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, रज्जन रजक, लालू, सोना मोना, हनी यस और उनके मम्मी पापा। पटेल नगर मुगलसराय से शशि सिंह, आस्था सिंह और आकाश सिंह का भी संदेश हमें प्राप्त हुआ। पद्मा टागिश नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, आश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना पंखा रोड, जनकपुर से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय, कनॉट प्लेस ने दिल्ली से डॉक्टर अर्चना और पुरुषोत्तम। सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से भाई अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकर्ष राजभर। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा।

आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल, नंदिनी जंघेल, धमदा ग्राम सुकरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओष्का और अंजलि जंघेल, रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू, नंदनी साहू, मनीष साहू, मयंक साहू, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आश्रय गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी, अन्नु गोस्वामी। आप सभी को हम सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में बेईमान फिल्म का गीत, गीतकार वर्मा मलिक, संगीत शंकर जय किशन का। तो दोस्तों, कल एक बहुत ही बड़ा पर्व भाई बहन के अटूट प्यार का रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन सिर्फ कलाई पर बंधी एक राखी नहीं है, ये विश्वास की डोर है, स्नेह का बंधन है और बचपन की अनगिनत यादों को फिर से जी लेने का

कार्यक्रम में अगला मेल हमें भेजा है बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा काजोन अंसारी, सुमित रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदिबार, दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से राज एस टी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, कुटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय, दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, मुंबई से अनु बड़जात्या, शमशुल खान, अनुराज बेनारा का भी संदेश प्राप्त हुआ। चूंकि संदेश इतने ढेर सारे हैं उसमें से हम कोशिश करते हैं कि संदेश रिपीट न हो। ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन और फातिमा सोगरा का भी मेल मिला है। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से रेखा, बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता, बेबी अन्विका और तनुश्री गुप्ता।

संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, भानुप्रकाश, बोधराज खोरवाल, सुमन सरिता। लालगंज रायबरेली से केके साहू, अमिता साहू, स्वस्तिका, रिशु, इला और विनस। ग्राम कुंडावल तारा पोस्ट लार रोड स्टेशन जिला देवरिया उत्तर प्रदेश से रतिना त्रिपाठी, राखी आर्या, एंद्री ओमनाथ सारंग, शिवांग रोली, अदिति, माताजी निर्मला त्रिपाठी। बटिना रोड मड़ी दड्डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंशु नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार। मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन। बासमत रोड परभणी से रणजीत कोरगांवकर, कांचन कोरगांवकर, सृष्टि कोरगांवकर, समरजीत कोरगांवकर। नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साई गायकवाड़, नांदेड़ से इन्होंने संदेश भेजा है।

अनिल कुमार घोटके वैशाली, अनिल प्रोजक्ता घोटके वैष्णी घोटके गायत्री घोटके यज्ञेश घोटके जिला छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू। अनारकली बाजार जगरावा पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक। तो अब आप सुनेंगे बेईमान फिल्म का गीत। श्रोताओं, क्या आपको याद है वो बचपन जब बहन राखी लेकर भाई के पीछे दौड़ती थी, भाई राखी बनवाने से बचने के लिए इधर उधर भागता था और फिर मिठाई के बदले अपनी मनपसंद चीज की मांग करता था। लेकिन उम्र बढ़ती गई, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, रास्ते अलग होते गए, मगर भाई बहन का रिश्ता वैसा ही बना रहा। बहन चाहे कितनी भी दूर चली जाए, भाई के लिए उसकी चिंता बनी रहती है ना दोस्तों। और भाई चाहे कितना भी व्यस्त क्यों न हो, बहन की आवाज़ सुनते ही चेहरे पर उसके मुस्कान आ जाती है। रिश्ता है ये सबसे प्यारा, जिसमें छुपा है प्यार हमारा। राखी की डोर नहीं ये केवल, यह जन्मों का साथ तुम्हारा।

ये गीत था फिल्म रेशम की डोरी से दोस्तों। और कार्यक्रम में अगला मेल हमें भेजा है पटेल नगर मुगल सराय से सुनील कुमार सिंह ने, जमानिया जिला गाजीपुर से आप हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल, जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल, अभिनव जायसवाल।

कंवर कॉलोनी बड़वा जिला खरगोन मध्य प्रदेश प्रवीण श्रीमाली मीना श्रीमाली। अदार नानघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा चांदनी भूपेश दीपेश वर्मा। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश राज वर्मा प्रीति वर्मा कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार पिंकी स्वर्णकार आर्यन कृष्णा और पिहू स्वर्णकार। हितेंद्र दास ने आसाम से संदेश भेजा है, मुझे लगता है सबसे छोटा संदेश आपका है। तालुका पंढरपुर फुल चिंचोली से जाकिर मुलाणी सुमैया मुलाणी सुबान मुलाणी समीर मुलाणी सलमा मुलाणी मुमताज मुलाणी दिलशाद मुलाणी नसीर मुलाणी चाचा चाची और पूरा परिवार। देवेंद्र भटकर सुशीला भटकर अंकिता और अनिकेत भटकर मानेवाला रोड नागपुर से। बबरी बाजार जिला चंदौली से विजय जायसवाल सरोज जायसवाल गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल आर्य जायसवाल रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहो जायसवाल देवंती जायसवाल चकिया बाजार जिला चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल। तो श्रोताओं, किसी ने अपनी बहन के लिए गीत भेजा है तो किसी ने अपने भाई को याद करते हुए फरमाइश की है, और यही तो रेडियो की खूबसूरती है। आवाज हमारी होती है लेकिन भावनाएं लाखों दिलों की होती हैं। आज जो भाई अपनी बहन से दूर है और जो बहन अपने भाई से दूर है, ये गीत उन सभी के नाम। सुनिए काजल फिल्म का ये गीत।

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से इसमें आप सुन रहे हैं अपने ईमेल संदेशों पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस अपने रेडियो दोस्त अनुपम के साथ। अगला मेल हमें भेजा है गांव और डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर, ओबरा सोनभद्र से ये संदेश भेजा है शुभम और आयुषी ने, चितबड़ा गांव बलिया से जीसी गुप्ता, आराधना गुप्ता, आयुषी, अनुष्का और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये संदेश भेजा है गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। गोरोसा भैसा रायपुर छत्तीसगढ़ से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज साहू, सुष्मिता साहू, दीपिका साहू। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब का भी मेल हमें मिला। गांव अलगीडांड जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से जोहित यादव, विपिन, आयुष, अतुल, विभा, श्रीमती फूलजी यादव। ग्राम धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदुलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा, कुमारी क्रिस्टी पटवा। रामचरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से आपने संदेश प्रेषित किया है। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी। गुरमीत सिंह मीता साउथ दिल्ली से। बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनोली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा। दिग्दर्शन और कविता गौड़ मेरठ कैंट से। जिला नांदेड़ ऐताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश जायसवाल, राखी जायसवाल, तृप्ति जायसवाल। तो दोस्तों, बात हो रही थी रक्षाबंधन की, और रक्षाबंधन का अर्थ केवल भाई द्वारा बहन की रक्षा करना नहीं होता है, है ना दोस्तों। आज की दुनिया में भाई बहन दोनों एक दूसरे की ताकत है। बहन भाई का हौसला बनती है और भाई बहन का विश्वास। कभी बहन सलाह देती है, कभी भाई परेशान करता है, लेकिन जब कोई तीसरा परेशान करे तो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। यही है इस रिश्ते की खूबसूरती। कहते हैं ना, न बचपन लौट कर आएगा, न वो शरारतों का दौर आएगा, बस राखी का त्यौहार आएगा और हर बार भाई बहन का प्यार याद आएगा। कुछ ऐसा ही गीत सुनिए बिहारी बाबू से।

फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम में समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से अपने रेडियो दोस्त अनुपम के साथ। तो श्रोताओं, बात हो रही थी रक्षाबंधन की और बातें कुछ और भी करेंगे, लेकिन अब देखते हैं हमें और संदेश किन श्रोताओं ने भेजा है। तो ये संदेश अगला हमारे पास है श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती सिंह, विनायक सिंह, मोहिनी सिंह, मोहित सिंह और इनकी प्यारी कोको रानी का है। अगला संदेश भेजा है शफी मोहम्मद सोलंकी, शाहरुख खान, मांगे खान, शाहिद खान, ईदो कुमारी, इसरोल, बाड़मेर, राजस्थान से। संजय नगर कॉलोनी ऐशबाग लखनऊ से वारिस अली खान, मुरीन उनिसा का भी संदेश में प्राप्त हुआ। अशोक प्रजापति, आकाश प्रजापति, अंजलि प्रजापति और कन्हैया लाल प्रजापति, करोता लोहता वाराणसी से परवेज अहमद फागु सुनकर, शुक्लपुरा वाराणसी से गौ लक्ष्मी सासाराम गली नंबर 8B से ये संदेश में भेजा है। कुमारी गंगा रति चौहान, राजेश कुमार अकेला, कुमारी गुड्डू चौहान और आर के सिंह ने। इमरती यादव का संदेश हमें मिला है ग्राम बरटी पोस्ट सकल दिहा चंदौली से। गणनौखा लालगंज रोहतास बिहार से आप हैं राजकिशोर सिंह चौहान, बड़क सिंह चौहान। लल्लापुरा वाराणसी से अलीजा अयान खान, अलीजा और ऐनुल खान। तो हमने आपको पहले बताया था संदेशों की संख्या अभी बढ़ के 74,764 हो गई। तो संदेश हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार आ रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक श्रोताओं के नाम इस कार्यक्रम में शामिल हो जाए, क्योंकि इस कार्यक्रम का नाम ही है फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। और ये संदेश भेजा है टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला श्याम कुमार, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुमार, अनुश्री श्याम कुमार। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, चूँकि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में ये गीत सुनना थोड़ा अच्छा लगता है।

कार्यक्रम का अगला गीत और अंतिम गीत सुनना चाहे जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा ने। आप हैं सैयद मसरूर, साइना हसन, अक्सा, अदीब, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम, कुमार हैडा सहारनपुर से। गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमार थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी बामिका और वाणी थांदी, ये हैं ग्राम टोरोवाल नवा शहर पंजाब से आपने संदेश में भेजा था। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना ने भी संदेश में प्रेषित किया है। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंचान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहत, मेफरा नवाज, बेबी चाहत और साधिया। मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख, जगताई राजे जाधव देशमुख, कुमार संचित देशमुख, प्रथमेश सर्वत, हर्षिता सानवी और प्रणाली देशमुख। कार्यक्रम के अंत में आप सब सुनना चाहते हैं किशोर कुमार की आवाज में महबूबा फिल्म का गीत, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत आर डी बर्मन का।

इसी ख्वाहिश के साथ की होगी फिर मुलाकात फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम समाप्त करने की। अपने रेडियो दोस्त अनुपम को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।

ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था। अब आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं श्रोताओं आज का सुविचार। इसे भेजने वाले हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला जी। लिखते हैं,
2: सत्य की राह भले कठिन हो लेकिन मंजिल हमेशा उजाले तक पहुंचाती है। झूठ कुछ पल चमक सकता है पर सत्य सदा सम्मान

0: और विश्वास दिलाता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके द्वारा भेजे गए संदेश। कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत और गुरकीरत राहुल के साथ गुरशब्द सिंह राहुल जी का।
0: तहसील ठियोग, जिला शिमला से सूरज चौहान जी।
1: और मोताला, महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने लिखा है, आज उमंग कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के जीवन, संघर्ष और राष्ट्रभक्ति से जुड़ी अत्यंत रोचक, प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने का अवसर मिला।
0: ये भी जानिए, मैं ये जानकर गर्व हुआ कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जैसे ओजस्वी पुकार और जय हिंद जैसे अमर राष्ट्रनाद को जन जन तक पहुंचाने में नेताजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
1: उनका अदम्य साहस, अटूट देश प्रेम और बलिदान

0: महत्वपूर्ण भूमिका रही।
1: उनका अदम्य साहस, अटूट देश प्रेम और बलिदान आज भी प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए अजीत जी और विमलेश जी और कार्यक्रम की पूरी टीम का हार्दिक धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। लिखा है, आपकी संपूर्ण टीम को बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने वाले कार्यक्रम के निर्माण हेतु हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के देश सेवा सर्वोपरि के सिद्धांत को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से श्रेष्ठ साबित करने वाला प्रेरक प्रसंग सुनकर मन गदगद होकर उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। आपको हार्दिक आभार और धन्यवाद।
0: आपको भी हार्दिक आभार संदेश भेजने के लिए। ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। जैसा हर बार हम निवेदन करते हैं, इस बार भी करेंगे कि जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, इस सप्ताह पिछले दो दिनों में हमने बात की भारत के दो अनोखे गांवों की। आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं एक और रोचक गांव की जानकारी। तो विमलेश जी, आज अपनी ज्ञान यात्रा में हम कहाँ चल रहे हैं?
0: अजीत जी, चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्य की ओर और चलते हैं एक गांव में जहां मानो बारिश रुकना ही भूल गई हो।
1: क्या बात है, जहां मानो बारिश रुकना ही भूल गई हो। अच्छा, ऐसा भी कोई गांव है? कोई मजाक कर रहे हैं आप?
0: नहीं नहीं अजीत जी, बिल्कुल सच। ये वो जगह है जहाँ के छाते भी कहते हैं वर्षा रानी कभी तो रुको।
1: क्या बात है, वर्षा रानी कभी तो रुको।
0: जी चलिए, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछते हूँ, बताइए ये कौन सी जगह है?
1: अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कि वर्षा भी रुकना भूल जाती है तो मुझे याद आ गया, वो जगह है मौसिन राम, ये मेघालय राज्य में है।
0: बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, तो जरा श्रोताओं को ये तो बता दें कि कितनी बारिश होती है वहाँ।
1: विमलेश जी, यदि यूं ही बता दूं ना कि वहाँ की औसत सालाना बारिश कितनी होती है तो जानकारी में वो मजा नहीं आएगा
0: जी।
1: तो पहले मैं बताता हूँ कि भारत के कुछ और शहरों में बारिश कितनी होती है
0: जी।
1: जैसे दिल्ली की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 650 मिलीलीटर,
0: चेन्नई की लगभग 1400 मिलीमीटर और मुंबई की लगभग 2200 मिलीमीटर।
1: और यदि कोलकाता की बात करें तो ये लगभग 1600 मिलीमीटर है। तो अब सुनिए कि मौसिन राम मेघालय की औसत सालाना वर्षा कितनी है
0: जी।
1: तो यहाँ की सालाना औसत वर्षा है 11900 से लेकर 12000 मिलीमीटर तक, यानी यदि इसे मीटर में मापें तो औसत सालाना बारिश लगभग 12 मीटर के आसपास है।
0: 12 मीटर यानी अगर इतना बारिश का पानी जमा हो जाए तो 4 मंजिला मकान की ऊंचाई के बराबर होगा
1: जी। जी तो विमलेश जी, अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि चेन्नई, मुंबई और अन्य शहरों की अपेक्षा यहाँ बारिश कितनी होती है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि यहाँ पर 1200 मिलीमीटर की बात हम कर रहे हैं। तो आपने ठीक कहा, 12 मीटर यानी इतना पानी यदि जमा हो जाए तो 4 मंजिला मकान की ऊंचाई के बराबर होगा। हालांकि इतना पानी वहाँ जमीन पर लगातार जमा नहीं रहता, लेकिन जरा सोचिए विमलेश जी, आसमान से हर साल करीब 12 मीटर यानी 39 कह लीजिए या तो 40 फीट पानी बरसता है।
0: आपने बड़ी अच्छी तरह से इसकी तुलना की है, अब समझ में आया कि कितना पानी वहाँ बरसता है। तो अब एक और मजेदार सवाल, वहाँ के लोग सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते होंगे, चाय या मौसम का हाल?
1: शायद दोनों ही, लेकिन उनके लिए बारिश कोई खास घटना नहीं है, ये तो उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा है
0: जी। अब कुछ और मजेदार बातें जानते हैं अजीत जी, वहाँ अनाज का भंडारण और कपड़ों को सुखाना तो बहुत बड़ी समस्या होगी, वहाँ ये काम कैसे होते हैं?
1: विमलेश जी, बड़ा अच्छा और उपयोगी प्रश्न आपने पूछा। वहाँ कपड़ों को सुखाने के लिए पारंपरिक रूप से टिन या लोहे की पेटियाँ होती
0: जी,
1: जिन्हें आग जलाकर गर्म रखा जाता है। भीगे कपड़े उन्हीं गर्म पेटियों में सूखते रहते हैं।
0: और अनाज का भंडारण वे धान के पुरालों या पुआलों में रखकर करते होंगे, ये उनके पारंपरिक तरीके हैं
1: जी।
0: तो जी जी, अब बात करते हैं उनके घरों की। घरों को भी भारी बारिश को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। उस इलाके में बहुत से ऐसे घर मिल जाएंगे जो बांस के खम्भों पर टिके हुए हैं। वहाँ रास्तों पर पानी, फिसलन और कभी कभी भूस्खलन भी बहुत बड़ी चुनौती है। बता दें कि खासी जनजाति का मुख्य भोजन चावल है और जादू यहाँ का पारंपरिक व्यंजन है।
1: इंग्लिश जी, मन में एक सवाल और आता है कि वहाँ बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे?
0: अजीत जी, ऐसा नहीं है कि वहाँ बारिश के कारण स्कूल बंद रहते हैं। भूस्खलन और तेज तूफानों के समय विशेष सावधानी बरती जाती है, लेकिन वहाँ बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाते हैं। दिल्ली और NCER शहरों में स्कूल जाते समय बच्चे सोचते हैं आज बारिश होगी तो क्या होगा, जबकि
1: मौसिन राम में बच्चे सोचते होंगे आज कितनी

0: बारिश होगी। मीनाक्षी, इतनी बारिश के बाद वहाँ की प्रकृति कैसी होगी?
1: अद्भुत, चारों तरफ हरियाली, पहाड़, झरने, धुंध और गुफाएं, मानो प्रकृति ने खुद को हरे रंग में रंग दिया हो। एक बात और, वहाँ लगातार होने वाली बारिश के कारण सामान्य पुल बहुत अधिक नहीं टिकते, इसलिए उस क्षेत्र और मेघालय राज्य में पेड़ों की जड़ों से भी पुल बनाए जाते हैं।
0: जी हाँ, इन्हें लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है। यहाँ पेड़ों की जीवित जड़ों को वर्षों तक दिशा देकर मजबूत पुल का रूप दिया जाता है। ये पुल कभी नहीं टूटते।
1: जी,
0: यानी विमलेश जी, सब कुछ सुनकर ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग प्रकृति को हराने की कोशिश नहीं करते।
1: जी बिल्कुल सही कहा अजीत जी, वे प्रकृति के साथ जीना सीखते हैं। तो अजीत जी, मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स का ये गांव मौसिनराम हमें क्या सिखाता है?
0: विमलेश जी, ये गांव हमें ये सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, मनुष्य उनके साथ तालमेल बनाकर जीवन को सुंदर बना सकता है।
1: जी अजीत जी, मेरे मन में एक खूबसूरत वाक्य आ रहा है।
0: भला वो क्या?
1: बारिश कितनी भी हो, जीवन में उमंग की धूप बनी रहनी चाहिए।
0: वाह क्या बात है, बारिश कितनी भी हो,
1: जीवन में उमंग की धूप बनी रहनी चाहिए।
0: जी जी, ये बात है। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी भारत के एक और गांव मौसिनराम के बारे में। ये गांव तो है ही, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा क्षेत्र भी। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, हमारा प्रश्न है, मौसिनराम और मेघालय खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मौसिनराम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है?
0: श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
1: और यदि आपको एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए।
0: जी, पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT Books PDF टाइप करें।
1: और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना है या ऑडियो बुक्स तो YouTube पर जाइए और टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल, विकल्प आपको मनचाही पाठ्य पुस्तकों पर ले जाएंगे।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सबसे पहला हमारा आज का कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में विस्तार से बताया गया है और विशेषकर इसके बनने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई है।
0: धरती का हरियाला उत्सव।
2: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
3: नाना जी, नाना जी।
4: अरे ऋतिक, रश्मि भाई, आओ आओ आओ, कैसी रही चौपाल?
3: ठीक रही नाना जी, आज ना किसी ने गीत गाया और ना ही कोई नाटक दिखाया गया। आज तो बस यही बात हो रही थी कि
5: बहुत गर्मी पड़ रही है, कोई कह रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है।
6: नाना जी,
5: इतना तो मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
3: हाँ हाँ बताइए ना, माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
4: बेटा मैं भूगोल पढ़ाता था।
5: ये लो, नानी जी भी आ गई।
7: अरे यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
4: अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
7: हाँ वो तो है।
3: नानी, हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
7: अच्छा तो ये बात है, तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
4: अच्छा चलो भाई चलो, मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, मानसून के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
3: कहाँ से आया है
4: भाई? शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
3: अरबी भाषा के

0: मौसम शब्द से।
1: बहुत अच्छे बहुत अच्छे। भाई मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
0: पूरी दुनिया में नहीं होता तो फिर?
1: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
0: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
1: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है, ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
0: नाना जी, मानसूनी पवन कैसे बनती है?
1: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है, वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
0: अच्छा नाना जी।
1: चूँकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
0: अच्छा।
1: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे भारी वर्षा होती है।
0: अब समझ में आया। नाना जी, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
1: देखो भाई, यदि भारत की बात करें तो मानसून यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती हैं, कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
2: और बच्चों, भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है।
1: हाँ।
2: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है।
0: ओ।
2: हमारे देश की लगभग 60-70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
1: बिल्कुल।
2: और हाँ, हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
0: अच्छा।
2: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
0: अच्छी अर्थव्यवस्था।
2: हाँ।
1: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है, हमारी कला, साहित्य, त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
0: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर चित्रण है।
0: ओ।
2: अगर आधुनिक कविताएं कहें तो फिर सुमित्रानंदन पंत, निराला और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
1: भाई इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ, यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मिया मल्हार, गौड़ मल्हार और राग देश विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए?
0: जी नाना जी। और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
3: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम तुलसी गौड़ा जंगल की इंसाइक्लोपीडिया।
5: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण जनजातीय कार्यकर्त्री तुलसी गौड़ा के जीवन और पर्यावरण संरक्षण में उनकी अहम भूमिका के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।
6: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहनी
7: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका,
8: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती।
9: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट इज कॉल्ड इन कर्नाटका।

0: तुलसी गौड़ा।
1: जंगलों की इंसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
0: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है।
2: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
3: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण।
2: ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। देश भर में प्रसन्नता की लहर।
4: आज नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों में करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी दो बार दिया जाता था

0: और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
1: अच्छा,
0: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो दो दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
1: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
0: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
1: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
0: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
0: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
1: अच्छा,
0: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
1: अरे, ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
0: हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
2: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
0: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
2: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
3: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
2: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
4: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
0: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
4: अच्छा।
0: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ,

0: पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
1: अच्छा।
0: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
1: अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
0: हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है। ठीक है ना?
1: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत धन्यवाद।
2: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
3: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
4: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम तुलसी गौड़ा जंगल की इंसाइक्लोपीडिया। हमें आशा है कि हमारे आज के कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आए होंगे। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम
5: चेतना,
4: जगबंधु
5: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, उसके पहले ये संदेश।
8: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
9: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
8: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
9: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
8: डायल कीजिए
10: 0542227658।
9: नंबर एक बार फिर नोट करें
11: 0542227658।
7: सुगम संगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं प्रियंका सहवाल। इनके स्वर में पहले सुनिए गुरु नानक की ये रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार हैं प्रियंका सहवाल। कार्यक्रम के अंत में इनके स्वर में सुनिए सूरदास की ये रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार थी प्रियंका सहवाल। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, इनके गाए भजन आप रात 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में एक बार पुनः सुन सकते हैं। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए उस्ताद बिस्मिल्ला खां वसाथी का शहनाई वादन, कजरी में धुन।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे उस्ताद बिस्मिल्ला खां साथी द्वारा शहनाई पर बजाई कजरी धुन। मीडियम वेव 241.5 शर मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH, DRM 1233 किलो हर्ट्स वेव्स OTT पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन का 1 बजने को है, कुछ क्षणों में आप सुनेंगे समाचार जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
2: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
1: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खेल राष्ट्रीय प्राथमिकता और युवा सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। श्री मांडविया ने कहा कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम खेलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ा रहा है तथा सभी खिलाड़ियों को समान अवसर देने में मदद करेगा। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026

20 के तहत मेरा युवा भारत ने आयोजित किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में 2030 राष्ट्रमंडल खेल और प्रस्तावित 2036 ओलंपिक खेलों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। श्री शाह एक दिन के गुजरात दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमरेली जिले में दुधाला के पंचगंगा तीर्थ में नवनिर्मित हेतनी हवेली झील का उद्घाटन करेंगे। नेपाल में

0: देंगे। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पन बिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया है कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की है और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद है और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। नेपाल में बाढ़ के बाद किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बिहार में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की 9 टीम और उत्तर प्रदेश में 1 टीम तैनात की गई है। नई दिल्ली में आज बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने संवाददाताओं को बताया कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास कुशीनगर क्षेत्र में एनडीआरएफ की 1 टीम तैनात की गई है। उन्होंने कहा कि बिहार में अभी तक बाढ़ का व्यापक असर नहीं हुआ है, लेकिन स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और इस्पात विनिर्माण में भारत जापान साझेदारी बढ़ाने के लिए निवेशकों से चर्चा की। ओसाका में आरओएचएम के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कात्सुमी अजुमा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ उन्होंने बैठक की। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट में भारत मजबूत स्थिति में बना हुआ है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 127 रन की बढ़त बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 164 अंक गिरकर 77,309 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said the government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century. Addressing the case

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए कुछ खोए व्यक्ति के संबंध में सूचना। पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार रीना पत्नी नानक निवासनी ग्राम बलमपुर नौगवां थाना ड्रमंडगंज जनपद मिर्जापुर कहीं लापता हो गई हैं। रीना की उम्र है 22 वर्ष, लंबाई 5 फीट, चेहरा गोल, रंग गेहुआ है। ये जब लापता हुई थी उसमें भूरे रंग की साड़ी पहने हुए थी। रीना के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर को सूचित करें। यहीं से एक और भी सूचना प्राप्त हुई है। गोविंदा पुत्र दशरथ निवासी ग्राम चेहरा थाना जिगना जनपद मिर्जापुर कहीं लापता है। गोविंदा की उम्र है 22 वर्ष, लंबाई 5 फीट 6 इंच, रंग गेहुआ, डील-डोल सामान्य, चेहरा लंबा है। ये जब लापता हुए थे सफेद शर्ट हल्के नीले रंग का जीन्स पहने हुए थे। गोविंदा के बारे में कुछ भी पता चले तो अपने निकट के पुलिस थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर को सूचित करें। एक और सूचना यहीं से प्राप्त हुई है। वंदना बिंद पत्नी राम आश्रय बिंद, ये ग्राम नरोइया थाना जिगना जनपद मिर्जापुर की रहने वाली

थीं कहीं लापता हैं। बंदना बिंद की उम्र है 36 वर्ष, लंबाई लगभग 5 फीट, रंग गेहुआ, दुबला पतला शरीर, चेहरा सामान्य। ये जब लापता हुई थी उस समय साड़ी पहने हुए थीं। बंदना बिंद के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के पुलिस थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर को सूचित करें। आप सुन रहे थे खोए व्यक्ति के संबंध में सूचना। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में सुनिए शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 4 बजे, जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे पंडित भीमसेन जोशी का ख्याल गायन। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम अंगनैया होगा दिन में 1:15 पर। इसमें किशोरियों और महिलाओं में अवसाद की समस्या और समाधान विषय पर सजीव फोन इन हेलो अंगनैया आप सुनेंगे दिन में 1:15 से 1:45 तक। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम अंजुमन आप सुन सकते हैं रात 9:30 पर, और कहकशा का प्रसारण होगा दिन में 2:30 पर। रात 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी प्रियंका सहवाल। शाम 6:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी में सुनिए गन्ने की फसल में आवश्यक कृषि कार्य विषय पर महेंद्र कुमार सिंह से बातचीत। इसी कार्यक्रम में सुभाष चंद्र यादव व साथी का लोकगीत भी होगा। इनका गाया लोकगीत आप दिन में 1:45 पर भी सुन सकते हैं। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे आज की बात मेरी पसंद यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। शाम 5 आप सुनेंगे धरती के गीत कार्यक्रम में कुछ सिंधी गीत। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 6:10 पर, शाम 7:31 पर रसरंग में, रात 8:15 पर रसमाधुरी में, और रात्रि 10 आपकी पसंद कार्यक्रम में। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। यह आकाशवाणी वाराणसी है। अब से कुछ ही पलों में ठीक 1:10 पर आप सुनेंगे इलाकाई खबरें, जिसे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: वजीर आजम ने कहा कि दोनों ममालिक की टीमें बचाव और इमदादी कार्रवाइयों के लिए मिलकर काम कर रही हैं। सैलाब की वजह से दोनों अजला में गंडक और नारायणी नदियों के पानी की सतह बढ़ने का खदशा है। सैलाब से होने वाले तबाही पर तशवीश का इजहार करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज और कुशीनगर के मकामी इंतजामिया को तमाम जरूरी तैयारियों को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने नेपाल में फंसे हुए लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1070 शुरू किया। हमारे नामानिगार ने बताया कि मुतासरा खानदान इस हेल्पलाइन के जरिए फौरी तौर पर मालूमात शेयर कर सकते हैं।
1: उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार अगर राज्य का कोई भी नागरिक नेपाल में फंसा है या उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो उनके परिवार वाले तुरंत 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और उन्हें तुरंत मदद पहुंचाने के लिए दूतावास स्तर पर संपर्क शुरू कर दिया है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: वहीं हिंदुस्तान ने 37 टन से ज्यादा इंसानी इमदाद और कुदरती आफा से मुतालिक इमदादी सामान की दूसरी खेप नेपाल को भेजी है। बिशमूल अदव्यात और खाने के पैकेट, ये इंसानी इमदाद नेपाल को फराहम की जा रही है जो कल के तबाहकुन सैलाब से मुतासर हुआ था। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इमदादी सामान लेकर दूसरी परवाज रवाना हो गई है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान नेपाली हुकाम के साथ मुसलसल राबते में है और इमदादी सरगर्मियों में अपना भरपूर ताउन फराहम कर रही है। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन ने कल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नतायज जारी किए। कमीशन की वेबसाइट पर नतीजे का ऐलान करते हुए कमीशन ने कहा कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी सतह के इम्तिहानात में शिरकत करने वाले 130,000 उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं। upeesse.up.gov.in पर नतायज कमीशन की वेबसाइट पर हैं। रियासती हुकूमत ने रक्षाबंधन पर रियासती खवातीन को मुफ्त बस सफर का तोहफा देने का ऐलान किया है। आज से 29 अगस्त की आधी रात तक खवातीन मुसाफिर उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और सिटी बसों में एक साथी के साथ मुफ्त सफर कर सकेंगी। ये सहूलत 900 से ज्यादा बसों में दस्तयाब होगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दी है कि प्राइवेट गाड़ियां मनमानी किराया वसूल न करें और सिर्फ मुसाफिरों से तयशुदा किराया वसूल करें। कल रियासत भर में वक्फे से दरमियान दर्जे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महकमा मौसमियात ने आज मगरबी उत्तर प्रदेश के कई अजला में शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक अगले दो दिनों मशरकी उत्तर प्रदेश में कई मकामात पर गरज चमक के साथ तेज बारिश के भी इम्कान हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम अंगनैया, उसके पहले ये संदेश।
3: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ,
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
6: 0542227658।
4: ओ
7: 0542227658।
4: लो अभी फोन लगाता हूँ।
7: 0542227658।

0: लोगन के नमस्ते मुनक्का तोरो के नमस्ते हो।
1: नमस्ते हो लाली दीदी, और संगे संगे अपने कुल बहिन लोगन के भी हमरे ओरी से नमस्ते।
0: आज देखा अपने अंगनैया कार्यक्रम में हेलो अंगनैया कार्यक्रम का प्रसारण होए जा था और इमन बहनी लोगन सीधे फोन करी हैं, डॉक्टर भैया से बात करी हैं। तो देखा आज का विषय का वो बता दा।
1: विषय यह हो कि जौन किशोरी हैं और जौन आप पर बहिन लोगन हैं, उनमें अवसाद का समस्या का होला और एके कैसे पहचानिहन और एकर समाधान कैसे होई, यही विषय पर बात कही हुई और बहिन लोगन हमन के फोन भी करी हैं।
0: हाँ, और एकर विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी हुवन जौन अब हमरे बीच में आवत हुवन। तनी देखा रक्षाबंधन का त्योहार है ना काली,
1: अरे
0: तो
1: एकदम,
0: वही में इतना जाम लगल है ना कि जानला कि डॉक्टरों साहब वही में फंस गई है।
1: अरे डॉक्टर साहब का छोड़ा ये दीदी, हम खुद द फसल रली है कैसो जौन है कि भागत परात आवत है कि बहिन लोगन से मिले के भी है। आई ऐसन त्योहार है ना लाले दीदी कि का बतावल जा, एकदम जेहर जा उधर इतना मनसैन, बाजारे में जा उधरों परिवार में जा उधरों तैयारी भी ऐसन होत बा, कहिए से त्योहार है ऐसन बा।
0: तुहार कुल तैयारी हो गई का रक्षाबंधन के?
1: कहाँ हो गई, जब ले बांध न ले तब ले कहाँ हुई, पहले बहिन लोगन से जौन है कि मिल मिला लेवल जी, करे बाद न ओकरे बारे में सोचाई हो।
0: हम तो इनसे कब को कहत है कि देखा हमके नैहरे पहुंचा दा हमार भैया भौजी जोहत हुवन। हाँ, लेकिन इता ऐसा नजरात हुवन ना कि कहत हुवन कि नाही त्योहारी पर तो तोके घरे जाए न दे। हमके अब तू न जाए दे बना तो हम अकेले, आजकल तो देखत हूँ ना सुविधा हो जाता बहनी लोगन बदे, बस में फ्री टिकट में चाहे कैसे भी तू चल जा सकत हूँ।
1: तब का
0: और न जाइए तो ले जाइबे करी आदमी, साल भर का त्योहार का अपने भैया के हाथे में राखी न बानी।
1: अरे एकदम बानी, बाकी देखा हम कहीं ना कि ये बात ना हो कि चाहे लड़ाई झगड़ा ना हो, देखा मन मनाए के उनके जौन है कि तनी सा बतिया के काहे ना जइहन। अब बहुत से बहिन लोगन ऐसन हैं भाई, सामर्थ्य में हैं स्वयं जा सके नहीं, अब कहीं कहीं तो हमार तो भैया देखा जौने साल हमके नहीं मौका मिला तो आवन लोगन तो हम घर में बांध दे हो।
0: अजानत हो कबो कबो का होला कि भाई निकले के होला तो ननद लोगन हैं कुल लोगन आ जाए लेन, तो भाई उन्हों के निपटावे के है, एहरो देखे के है। हाँ,
1: सही
0: तो
1: बात
0: भाई
1: है,
0: दोनों चीज करे के है प्रेम से। अगर दोनों चीज कर दा ना तो घर परिवार में से अगर प्रेम व्यवहार बनल रहेला तो कुल 30 त्योहार
1: सही
0: निकलेगा।
1: बात कहलू है लाली दीदी। और ये जौन राखी का त्योहार है ना, ये प्रेम का त्योहार है, विश्वास का त्योहार है, इमन जौन है कि ऐसा ना होवे के चाहिए कौनो बात की मतलब मन मुटाव हो जाओ। देखा कहल जाला ना, बहुत से बहिन लोगन ऐसा हैं दीदी कि छोटी छोटी बात के ले करके उनके मन में अपने भैया के प्रति थोड़ा सा ठेस पहुंच जाला तो वो थोड़ा सा अलग फील करे लगनी। वैसे ही कुछ भैया लोगन भी ऐसा हुआ जौन कि बहिन लोगन के लिए इस तरह से अनुभव करा ना, तो ये सब ना हुआ कि चाहे देखा जिंदगी हो और जैसे घरे में देखा रसोईया में 4 बर्तन बा, तो दीदी केतनो संभाल के रखबू वो तो खनकबे करी है ना, तेकर मतलब ये थोड़ो है कि वो बर्तन का फिर उपयोग न हो या वो बर्तन के कहीं और फेंक देवल जाए। हैं
0: बिल्कुल सही बात कहत हो। यही से तो कुल समय समय पर त्योहार बनावल गए है कि मनई अपन सब चीज शिकायत शिकवा मिटाए के अकुल यही में अजुरायल रही, अप्रेम भाव से एक दूसरे से जुड़ जाई, बंध जाई। रखियो ऐसन त्योहार है इमन जे खाली ई बंधन नहीं है, ई प्रेम का बंधन है। बहनी लोगन अपने भैया के कलाई पर राखी बांधे लीन, मिठाई खियावे लीन कि उनकर उम्र लंबी हो। भाई जो ना वो आशीर्वाद देवेला कि हम अपने बहनी के दुख सुख में कत्तों कहियों रही उनका रक्षा करी। और रक्षा का बात आवत है ना तो देश पर जो सीमा पर जवान लोगन लड़त हुवन, हाँ अपने देश के रक्षा खातिर जो तैनात हुवन उन लोगन के बदे भी बहुत बहनी लोगन राखी भेजेली।
1: बिल्कुल भेजे नहीं, और इतने नहीं हो देखा बहुत सा ऐसा अपने देखा स्कूलन में बच्चन के भी ई देखा रखल गयल हो। आज तो हमरे ननका के स्कूल में ई रहल है दीदी कि माने जौने बच्चन का बहिन नहीं है तो उनकर मैडम लोगन स्कूली में वो लइकन के राखी बनवावत हैं और उनके जौन है कि उपहार दिवावत हैं, उनसे ई लेत हैं कि भाई तू जहाँ भी रहा एक दूसरे के प्रति जौन विश्वास बनल रह, मिलजुल के रह जा। आ एक साथे तो कई थे कहानियों हो अपने इतिहास में कि देखा जब एक रानी रहनी हाँ उनके जब उनके ऊपर युद्ध छिड़ गयल उनके राज्य पर, तो वो कहनी कि दूसरे राज्य का जो राजा रहा उनसे भेज करके

0: सखी के माध्यम से उन उनसे सहायता मांगनी और राजा आई ना उनकर सहायता कही ना।
1: देखा अब अपन कहानी के गठरी मोटरी समेटा डॉक्टर भैया आ गए लोगन। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सभी बहनों के धन्यवाद। हम माफी चाहते हैं थोड़ा लेट के खाते।
1: हाँ देखा एक फोनो आ गई डॉक्टर साहब के आवते आवत ले ली हल जाए। हेलो
0: हेलो
1: हेलो हेलो संपर्क नहीं हो पावा था। बुझा था कि जैसे शहरे में जाम लगल है ना वैसे फोनों में जाम लग गए।
0: अरे सही
1: फिर से देखा फिर से लेवल जाए। हेलो हेलो
0: हेलो
1: श्रोता भैया बहनी जे भी हो उसे संपर्क नहीं हो पावा था। हाँ तब से डॉक्टर भैया से बतिया लिया जाए। हाँ डॉक्टर भैया पहले जब आज अवसाद का बात होता तो किशोरियन में पहले लिया जाए किशोरियन में अवसाद का कारण आपके देखे के मिला था इस समय में।
2: देखो कारण बहुत बा एगो तो एक तो शरीर के कारण होला कि भाई कौनो हार्मोन्स खासकर आप जैसे शरीर है शरीर में बहुत सारे हार्मोन बाटे न्यूरो ट्रांसमीटर बा केमिकल बा तो कभो कभो ऊपर नीचे होला तो अवसाद आवेला। जिंदगी में बहुत सारा ऐसे समस्या आ जाला जेकरा
1: फोन आवा था डॉक्टर साहब।
2: हाँ ले ले जा।
1: हेलो हेलो हेलो हाँ हेलो हेलो ए मुनक्का लगा था हमारा आवाज नहीं इनके पसंद आवा था तो ही बतियावा
0: डॉक्टर साहब कुछ बतावत रहनी है।
2: हम ही बतावत नहीं कि जब समस्या कौन आ जाला जिंदगी में जेके हमें लागे कि हम ओके के सॉल्व ना कर पाई के ठीक ना कर पाई तो कई बार आदमी एडजस्टमेंट के समस्या हो जाला जैसे बोला ना क्योंकि साथ रहा था आदमी बन नहीं खे पावा तो उसे दुखी हो जाला। जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आवेला ओकरा वजह से अवसाद आ सकेला। शादी हो गल बा पत्नी पत्नी में बटे ओमें नहीं खे बनत आदमी बहुत दिन तक चिंता परेशानी हो जाला तो ओमें अवसाद आ जाला। कोनो जीवन में घटना ऐसा घट जाला जौन आदमी कबो ना सोचले रहला घर में केहू के मृत्यु हो गई या कोई ऐसा विवाद हो गई ओके लेके दिन तक आदमी बहुत सोच देला तो होला सामाजिक रूप से।
1: फोन आवा था डॉक्टर भैया।
2: जी जी
1: हेलो
3: हेलो
1: हाँ के बोलत हूँ भैया।
3: जी हम सभा कांत बोलत हूँ गांव नदौली से।
1: अच्छा सभा कांत भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर भैया से बतियाई डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी आज हमारे बीच में हुआ।
3: जी डॉक्टर साहब को नमस्कार।
2: जी प्रणाम बा भैया।
3: जी हम भी पूछा था डॉक्टर साहब के तो जैसे कि कोई कि अगर हार्मोन्स कम हो जाए कोई महिला या किशोरी हो तो के का करे चाहिए।
2: देखा सबसे पहले डॉक्टर से मिले के चाहिए ये डॉक्टर बता सकत हुमन कि कम भइल बा कि नहीं खे भइल। आदमी का करेला कि केहू केहू से पूछ के कोनो कोनो गलत ओकर उत्तर मिल जाला वो बात के तो डॉक्टर ही ओके बता पाई कि हार्मोन्स की कमी बा कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स बा कि कोनो शारीरिक कमी के वजह से कहा बाटे ओकर बहुत सारा टेस्ट होला टेस्ट से पता चल जाई लेकिन ओकरा खातिर डॉक्टर से मिले के पड़ी तो डॉक्टर से आप जाके मिला तो शायद आपके कोनो उचित मदद मिल पाई।
3: मिल चुका डॉक्टर से मिल चुका है से ओकर नहीं इलाज मिल पाता तो क्या करें।
2: नहीं इलाज तो मिल पाई ना तो मनोचिकित्सक के दिखाओ पहले तो मालूम नहीं है कि ओकर क्या समस्या बाटे ओकर कौन लक्षण बाटे तो ऐसे तो फोन पे बतावल बड़ा मुश्किल बा।
3: जैसे छोटा मोटा अस्पताल में जांच कराए ले रहा को नहीं बताओ तो कैसे होगा।
2: नहीं तो समस्या का बाटे ये तो जाने के पहले जरूरी हो ना समस्या का बा। हाँ तो समस्या आप बताइबा तो सब हम बता पाए। अब हार्मोन्स के कई बात होला ना यहाँ अवसाद के बात होत बा तो अवसाद में कई बार सामाजिक समस्या के वजह से पारिवारिक कलह कलेश की वजह से या खुद आदमी कई बार अपन सही तरीके से जीवन में सामंजस्य ना बैठा पावेला इससे समस्या आ जाला तो ओकर अनेकों अनेक कारण बा लेकिन ओकरा खातिर मनोचिकित्सक के मिले के पड़ी अगर जो ये समस्या अवसाद या डिप्रेशन के बात है। और हमारा भोजपुरी खातिर माफ करिए हमारे भोजपुरी ठीक बा कि ना अब हम नहीं की जानत सखी लोग बताइए कि कैसन बा हमारे भोजपुरी।
0: नमस्ते यो एक दवाई हो कि मतलब बोली भी बहुत अच्छा होला एक दवा का काम कर दे
2: वाला
1: जौन बोली सीधे श्रोता लोगन से जुड़ जाए उनके करेजा में धस जाए तो जान लें कि बहुत
0: बहुत
2: जी जी बिल्कुल सही बात।
1: हाँ तो मुनक्का तू का पूछल चाह तू पूछ पहले।
0: हम ये पूछल चाहती कि जैसे बहुत से किशोरी ऐसा हैं जे कि या बहुत से महिला लोग

0: सब ऐसन है जे कि छोटी छोटी बात पर उनके बहुत जल्दी गुस्सा आ जाला, या उ कौनो घर में उनके काम बिगड़ल तो उ अपने के दोषी माने नहीं। तो का ई भी अवसाद का ही लक्षण हो क्या? एकरे लिए भी उ लोगन के मनोचिकित्सक के पास जाए के चाहिए, या ये उनका प्रकृति है एक सारी
1: प्रश्न का
0: बात?
1: उत्तर दी है डॉक्टर भैया इ फोन के बाद। हेलो हेलो,
2: हाँ, मैम
1: हाँ
2: आकाशवाणी, मैं वाराणसी से संध्या बोल रही हूँ मैम।
1: अच्छा संध्या जी, वाराणसी से कौने जगह से बोलत थी ना?
2: रामेश्वर।
1: अच्छा रामेश्वर से। संध्या जी आपका बहुत बहुत स्वागत है अंगनैया कार्यक्रम में। आज अवसाद पर, जो उन किशोरियन और महिला लोगन में अवसाद का समस्या है, वो विषय पर बात होता। हम लोगन के बीच में मनोचिकित्सक डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी आ गए हुए, तो आप डॉक्टर भैया से सीधे बात करें और अपन समस्या बताएं।
3: जी प्रणाम बा
2: जी, नमस्ते मैम।
3: जी।
2: सर मैं ये जानना चाहूंगी कि महिलाओं में जो अवसाद की समस्या है वो तो समझ में आती है सर, कि तमाम उनके पास परेशानियां हैं, घर है, देखना है, लेकिन जो आजकल की जो नई, मतलब नए नए लोग हैं, जो नई युवती हैं या बच्चियां जो हैं, उनके अंदर ये डिप्रेशन क्यों हो रहा है?
3: हाँ यह बात बहुत सही बटे कि नया नया जो किशोरी बड़न बच्चन बड़न उनमें बहुत अवसाद के समस्या और तमाम समस्या देखल जाए। कोई कई कारण बाटे। एगो तो पहले जो सामाजिक परिवेश रहल है बहुत मिले जुले वाला रहल है, लोग घुलिया मिलिया बात करिया। अब आ गेल बा मोबाइल फोन एगो, और दूसर का एगो बड़का टीवी। हाँ और तीसरा जोन बात हो पढ़ाई के दिन रात बोझ। तो का होला कि आजकल हर चीज़ मोबाइल पे दिखता, मोबाइल पे खूब आदमी देर तक इस्तेमाल करता, तो इससे क्या होता है कि हमारे दिमाग में जोन सोचे समझे वाला शक्ति बा वो धीरे धीरे कम हो जात बा। जोन लोग पहले क्षमता रहा है चीज़ों के झेले के, वो झेले के क्षमता कम हो गई बा। तो ओकरा वजह से क्या होता कि और एगो बाकी पहले आदमी समय देते रहा अपने बच्चन के। अब क्या होता कि माता पिता के पास पहले माता घर में रहते रहिए, पिताजी कमा रहे हैं, माता भी कमा रहे हैं, पिता भी कमा रहे हैं, छोटा छोटा एकल परिवार हो गया बा। पहले रहला कि भरा पूरा परिवार रहा है, तो मैं आदमी दादा दादी नाना नानी चाचा चाची, हाँ बड़का पापा छोटका पापा छोटका माई बड़का माई सबके होत रहा है। अब तो का होत बा कि सब धीरे धीरे धीरे धीरे अकेला अकेला हो चल चल चल जात बा। तो इसे क्या होता है कि लइकन बच्चन के अपने भावनाओं को संप्रेषित करे खातिर या भावनाएं दिखावे खातिर कहूँ ये नहीं खे दिन भर पढ़ाई या मोबाइल। तो ऐसे क्या होता है कि आदमी के सोचे समझे के शक्ति कम होत बा, धीरे धीरे याददाश्त कम होत बा, ओकरा अंदर इम्पल्सिविटी तुनक मिजाजी हो जल जाता, छोट छोट बात पे बहुत गुस्सा आ जाता वे। पढ़ाई के प्रेशर अलग बाटे, तो में कई अनेकों अनेक कारण बाटे। और जहाँ तक महिलाओं के बात होला तो महावारी के समय भी कई बार मूड स्विंग करेला, उदासी हो जाला, गुस्सा चिड़चिड़ापन ये सब होला।
2: जी आजकल देखा जाए तो छोट छोट बच्चों में भी बहुत चिड़चिड़ापन रहता सर,
3: जी
2: वो काहे बदल रहता।
3: वह हम कहनी है ना कि पहले का होता है कि लइकन खेलिहन कूदिहन प्रेशर कम रहला। अब माई बाप पे जितना प्रेशर बा ओकरा डबल वो बच्चा पे बाटे, क्योंकि जब परिवारे में प्रेशर रही तो ओकर एगो कहल जाला फ्लाइंग इफेक्ट, मतलब घर परिवार में केहू अगल बगल में दुखी रही तो बगलों वाला दुखी हो जाला। तो माँ बाप हमेशा गुस्सा में रहत बड़ा, चिड़चिड़ापन रहत बड़ा, उनके लगे इतना प्रेशर बाटे ऑफिस के काम के कॉलेज के स्कूल के समाज के। तो वैसे क्या होला कि आदमी इतना ज़्यादा एक होता ना कि वो पॉपकॉर्न खाने एकदम गर्म बालू में डाला पॉपकॉर्न तो अपने आप लावा जोन फूटे लगेला, वैसे आदमी धान के लावा के साथ दिमाग फूटे लगा था। तो जब वो फूटी तो बच्चों के दिमाग फूटी, तो गुस्सा करता तो बच्चन के मनोभाव के को समझे वाला तो बाना। दिन भर मोबाइल फोन, दिन भर इधर उधर, बस काम का प्रेशर इतना बच्चों पे भी है। तो ये सब को देखल के ये सब के वजह से देखे के मिला था कि लेकिन बहुत जल्दी गुस्सा तनाव टेंशन सब होत बटे।
1: देखिए कितना फरिया के डॉक्टर भैया बता देलन। संध्या जी आपकी समस्या का समाधान हमके लगा था कि मिल गए हुई। हेलो, हाँ अब संध्या जी का लगत है संपर्क टूट गया है, लेकिन
3: हाँ
1: बहुत बढ़िया बतौलन है
3: नहीं
1: डॉक्टर
3: मिलजुल के रहे
1: भैया।
3: के बाद आज के समय में हम ये कर बनी मोल फोन से दूर रहे के बाद मेल मिलाप लोगन से बढ़ावे के बाद और अपने मन के बात जरूर न जरूर केहू न केहू ऐसे आदमी से कहे के बाद कि जो मन के बात ध्यान से सुने, और जब
1: हाँ
3: केहू न सुने तो मनोचिकित्सक जरूर सुनी।
1: एक ठो फोन और आवा था डॉक्टर भैया।
3: जी
0: हेलो हेलो हेलो हेलो।
1: देखा संपर्क नहीं हो पावत है।
3: मौसम थोड़ा गीला बा ना, तो इसे नेट

0: के थोड़ा
1: हाँ, तो मुनक्का के प्रश्न का उत्तर दे दें जोन पूछत रलिन। का पूछत रलिन?
2: हाँ, ये पूछत रली है कि जैसे बहुत से बहिन लोगल हैं जे कि बहुत जल्दी उनके गुस्सा आवेला, या फिर कोई अच्छा बात भी परिवार में कहत हो तो उनके बहुत जल्दी बुरा लगी, या घर में मान लही कहीं भी कोई ऐसन बात हो गल, मान लीजिए काम बिगड़ गल, तो ओके उनके लगी कि मतलब एकर दोष अपने पर डली हैं, तो क्या ये भी अवसाद हो या ये उनकर एक मतलब कह सकेला जाए कि नेचर है प्रकृति?
0: बहुत बहुत सही प्रश्न बाटे। देखो नेचर प्रकृति तो सब केहू के होला, है ना, केहू के तनी ढेर होला गुस्सा, केहू के थोड़ा कम होला, केहू जल्दी संभाल लेला, केहू थोड़ा देर से संभाल पावेला। लेकिन देखो अवसाद के जो अनुभव में
2: बीच में रोका था ही लगा था एक श्रोता भैया का फोन। हेलो हेलो
1: हेलो
2: हेलो।
1: हाँ भैया बहनी जे भी है अगर फोन कैले हुआ तो बोली भी।
2: हेलो हाँ डॉक्टर साहब
0: जी। तो देखिए अवसाद के समझे खातिर कुछ बात समझे के बाद, मन में उदासी, चिंता, बिना बात के रोना आवे, मतलब रोवाई भरे,
2: अच्छा
0: कहीं मन ना लगे, कौन पहले जौन काम ठीक लगत रहा है एकदम वो काम के इच्छा निखे लागत, सुबह उठ के लगा था कि मन बिस्तर छोड़े के मन निखे करत, खूब उदासी और खूब चिंता, अनर्गल विचार आवता बहुत ज़्यादा अपने आप के लेके, भविष्य के लेके, भूतकाल के लेके, और ये सब जब होके लगी और ये लगातार 2 हफ्ता से अधिक होके लागल, ये जौन हम बताओ तनी लक्षण, तो समझ ले कि अवसाद के बा। चिड़चिड़ापन मचेला तो भैया ओके कई कारण होला, जैसे समस्या घर में बाटे तो कई बार क्या हो कि भैया बहनिन के होला कि काम घरे के ढेर बाटे, कोनो खराब भइल तो सौन पूरा घर भर दोष दे देला महिला के कि नहीं के वजह से भइल है, बच्चों संभाले के बाद, पति संभाले के बाद, सास ससुर संभाले के बाद, बच्चे के होमवर्क कराव के बाद, और कोनो और परेशानी बा, दूर के रिश्तेदार, शादी ब्याह, नातेदार सब निभावे के रहला, तो इसमें बड़ा स्वाभाविक होला कि आदमी के टेंशन तनाव ऐसे ही बढ़ जाला। लेकिन ये बार बार अगर जो बढ़त रहे, जैसे कि आपके काम में नुकसान होके लागल, आपके नींद नहीं खावत, आपके भूख नहीं खिलागत।
2: बीच में रोका थी डॉक्टर साहब, एक फोन आवत है। हेलो
1: देखा फोन आवत आवत नहीं, अब तू मत बोलिए डॉक्टर साहब के बीच में मत रोकिए।
0: कौन कौन बात नहीं के, तो कहे के बाद भाई कि आदमी के नींद भूख प्यास उड़ गई बा, कहीं विचार चलाता दिमाग में, हमेशा उल्टा विचार चलता, ओकरा वजह से रोना आवता, दुखी हो जाता आदमी। ये सब अगर जो लक्षण देखे लगे आदमी के और 2 हफ्ता से अधिक हो गई बा और अपने में कंट्रोल नहीं के आ पावत, तो जितना जल्दी हो सके कोनो मनोचिकित्सक भैया और बहनी से मिले के चाही, एक समाधान संभव बा। और आदमी डेराला कि दवाई खाई तो अरे मतलब हम पागल थोड़ी बानी, हम पागलन के डॉक्टर के पास, जैसे आदमी ठेठ बोले लाई बोले के तो ना चाही, लेकिन लोगों के समझावे खातिर बोलता नहीं, तो लोगों के कई बार लगे लगे अरे हम पगला थोड़ी गिल बनी कि हम डॉक्टर के लगे जाए, लेकिन डॉक्टर के लगे जाए ताकि आप कोनो समस्या ना आए कुछ आहू के रही, तो डॉक्टर के पास जाए जाइला के बाद हो सका था कि समस्या ठीक हो जाए, केहू समझा देला तो जीवन में थोड़ा सा अस्त व्यस्त जीवन थोड़ा में हमें सुधार आ जाला, थोड़ा उसमें एक कहल जाला ना कि ठहराव आ जाला। तो एक ऐसा केहू होके चाहिए जो आपके मन के समझे, क्योंकि मन के समझे वाला आज के जिंदगी में बड़ा कम आदमी बा, वही से ईश्वर का धन्यवाद बाकी मनोचिकित्सक बा। तो आसपास पे फोन बाटे अपन फोन उठाव देखो आसपास में आपके के बा मनोचिकित्सक, ओकरा से मिलल जाए तो समस्या का समाधान एक मिनट में हो जाए, तो जहाँ समस्या बा वहाँ समाधानो बा, लेकिन बस आदमी के एक एक निष्ठा के साथ जाके मिले के चाहे कि भाई चलो एक समस्या है उके सॉल्व कर लेल जाओ।
2: मैंने कहा कि ये हो कि बहन लोगन अगर आपके आस पड़ोस में या हिताई नताई में या कोई परिचित ऐसा हो जिकरे घरे ऐसा लोग हुए, तो आप के गंभीरता से लेके हल्का में एकदम मत ले, कहें से समस्या गंभीर हो सकेला।
0: एक और ही बात हम बतावे के भुला गनी है, बहुत बार लोगन के ऐसा होला कि मन में ऐसा आवेला मन के हम जिंदगी अपन खत्म कर ली, जैसे कर आत्महत्या के विचार आवेला
1: जी, जी।
0: तो अगर जो यो आवे लागल तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जा करके अपने मनोचिकित्सक से मिले के चाहे, है ना। कभी कभी आदमी के ऐसा होके लगेला कि अब तो कुछ कहिए ली, तो ये एक बहुत अलार्मिंग और बहुत कह सकते हैं कि खतरनाक मोड़ पे आप खड़ा बानी, जहाँ पे आपके जल्दी से जल्दी मनोचिकित्सक के मिले के बैठे।
1: एक फोन आवत है मुनक्का, आप देखिए कि बतिया सकी लकी नहीं हम। हेलो हेलो हाँ के बोलत हैं?
3: हाँ हम दुलारी बोलत हैं।

0: बाबतपुर से।
1: अच्छा, दुलारी बहनी बावतपुर से बोलत हैं। बहुत बहुत स्वागत है अंगनैया कार्यक्रम में। आज अवसाद पर बात होता महिला लोगन में और किशोरियन में जो अवसाद का समस्या होला, तो
0: हाँ
1: डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी हमन के बीच में हम आप बतिया लें सीधे डॉक्टर भैया से।
0: हाँ
2: जी
0: जी
2: प्रणाम
0: हेलो
2: प्रणाम
0: जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब प्रणाम प्रणाम। डॉक्टर
2: जी।
0: साहब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे हमार उम्र हो गई बा 40 से ऊपर,
2: हाँ
0: अब बहुत बार ये मन में आवला कि अब कुल घर द्वार छोड़ के जो है कि अब कुछ ना हुआ, या जैसे कभी कभी कोनो चीज में मान लिया सफलता मिल गल तो फिर मन बहुत मैंने कुछ कुछ और सोचा लगेला, तो ये बताएं कि का कैल जाए।
2: देखा तो ई 40 उम्र के बाद ही शुरू भइला कि उमरिया देखत रहलू हो कि 40 हो गेल बा, अब हमारे कोनो काम नहीं करे के, या उम्र के छोड़ के ही समस्या आवता पहले, क्योंकि आप पहले बतले कि हमारे 40 साल उम्र हो गई, अब हमके ऐसा लगता। तो आदमी कई बार उम्र देख के लगेला कि अरे इतने साल से हम जिंदगी में सब काम करता होता नहीं, अब मन उचाट हो गेल
0: डॉक्टर
2: बा।
0: अब ने जैसे लगेला कि अब कुल बेकार हुआ, अब कुछ में मन ना लगेला कि नहीं चला, अब जोन हो तो तोन होए दा, अब जीवन
2: हाँ
0: से कोनो बहुत प्यार ना लगेला कि नहीं
1: मानी
0: चला।
1: पहले लगत रहे अब इस
2: अब नहीं के
1: समस्या
2: लागत।
1: भेल।
2: हाँ देखा,
1: हाँ
2: तो पहले तो ये बात बाटे कि जिंदगी हमेशा खूबसूरत बा, जले आदमी के सांस बा और स्वास्थ्य बाटे तब तक जीवन बहुत खूबसूरत बा, हमें कोनो दो राय नहीं
0: जी
2: के। अब ये बात बाकी आपके केहू जिंदगी में सहारा बा कि ना, केहू साथ में आके पूछता कि ना। एक तो अपन साथ के मित्रता बहुत कम हो चल जाता बा, सखी सहेली बनावा थोड़ा बैठा उनसे का कहल जला है भोजपुरी में गलचौरा, थोड़ा इन्हें उन्हें के बात बतियावा,
3: थोड़ा मन
2: हाँ
3: हल्का होए।
2: थोड़ा
0: डॉक्टर साहब
2: संगीत।
0: केहू बदे कुछ कहता क्यों कीमत समझता ना हो घरे में, सबका अपना अपना पड़ल हुआ था, ई बताएं कि जब क्यों कीमत ना समझौता तो केकरे बदे का कही जाए।
2: लेकिन
0: बहुत
2: हम अपन
0: अच्छे
2: अपन कीमत समझता नहीं कि ना, एगो बड़ा कहावत है कि हमके मन की शक्ति देना, हम मन विजय करे और दूसरा केहू का के जय कहले से पहले खुद के जय
3: जय
2: करे,
3: करें।
2: एक हिंदी में ना कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे और दूसरों की जय
0: जी
2: करने से पहले हम स्वयं की जय करें।
3: बिल्कुल
2: एमे एगो सबसे बड़ा दिक्कत ये बा कि तू अपन के भी आज इज्जत नहीं करत, केहू नहीं कह बैठा तो अपना संगे हम ही बैठ जाई, हम ही कबो कबो सोची कि का पहनी का कैली। अब दूसरा खातिर तो आदमी सब जियेला, लेकिन जब आप पहले अपना खातिर जी तबे दूसरा खातिर केहू जी पाई, है ना। अगर
0: डॉक्टर साहब
2: जो
0: हमारे मन में बस एक बात बहुत आवला टाइम कि हम चल जाएं खाली मंदिर में जाके खाली बैठल रहें, वहां हमसे केहू कुछ बोले ना, खाली हम मने लगला कि हम जाके एकांत में कहीं बैठ जाएं।
2: सही बात बाटे। हाँ एक बार ना आपके जरूर मिले के चाहिए कोनो मनोचिकित्सक से, बैठ के अपन दर्द दुख बतावे के चाहिए, है ना। क्योंकि होला
0: हाँ
2: कबो कबो कि बड़ा स्वाभाविक है कि केहू केहू से मन उचाट हो जाला, केहू ना समझेला मन में मन के बात। तो हर आदमी में देखा यो नहीं है ना कि हर आदमी मन के बात समझ पाई ओकरा अंदर
0: देखिए
2: उतना।
0: घरे का कुल काम काज डॉक्टर साहब बड़ी जिम्मेदारी से कईला, सब
2: हाँ
0: रिश्तन के निभाईला,
2: हाँ
0: लेकिन कभी कभी लगेला कि नहीं जिंदगी में कुल बेकार हो
2: तो
0: गए।
2: कभी कभी लागेला ना, कभी कभी तो सब केहू के लागल बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन तबो ढेर लागता और आपके परेशानी होता तो एक बार हमारा कहला से आप मनोचिकित्सक से जरूर मिली और सुनी, चार पांच बात और करी, रोज एक्सरसाइज करी, हेल्दी खाना खाई, मतलब कौन सा पुष्ट कौन सा आहार बोलते हैं ना,
1: पौष्टिक आहार।
2: पौष्टिक आहार,
0: पौष्टिक
2: हाँ
0: आहार
2: पौष्टिक आहार
0: जी
2: खाइए, रोज 1 घंटा टहलिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए और सही टाइम पे सोइए, सही टाइम पे उठिए, क्योंकि अपना ख्याल आपके रखल बहुत ज़रूरी बा, तब वो आप दूसरा के ख्याल रख पाइबो। अपना अपने ख्याल ना रही तो फिर तो अपने शरीरिए ना रही तो फिर काहे का जरूरत बाटे जिंदगी में, है ना। और जब कुछ नहीं के समझ आओ तो मनोचिकित्सक से एक बार मिल लेवे के बाद काउंसलिंग हो जाए, बढ़िया हो जाए सब। ठीक है जी
1: बिल्कुल बहुत बढ़िया बात आप कहलिन हैं डॉक्टर भैया। आ ई समस्या बहुत घरेतिन लोगन कहलिन कि भर दिन खटनी करत रहिला, लेकिन जब मनसेदू अहिया राति के तो कहिए कि अरे दिन भर करत कात रहलू, खात रहलू,
2: हाँ।
1: सुतत
2: ये
1: रहलू।
2: पुरुष भाई अगर सुनत हो तो उन्हों से एगो निवेदन बैठे कि कहना ना कि भगवान के आगे खड़ा हो क्योंकि खूब तारीफ कर जाला, तो जेवन इंसाने भगवान बा हमारा बुझाता जौन हमारा खातिर काम कर रहा था, आपके सुख दुख बच्चा रिश्तेदार नातेदार घर परिवार जो संभलने बा भगवान से कम नहीं के। तो हर स्त्री के इज्जत करे के चाहिए, हर पुरुष के। जी
1: बहुत नीक जानकारी आप देत हुवन मुनक्का। औरों कोनो सवाल है तो पूछ ला हाली से।
3: सवाल हमरे मन में एक और है कि बहुत से लोग अपने के ना सबसे अलग रखे ना, है ना। बहुत से बहन लोगन भी हैं, बहुत से लड़की भी ऐसा है जे कि अपने के सबसे अलग रखी हैं, मतलब उनके मिलना जुलना परिवार में ही उनके ना ही पसंद आओ, तो का ई भी यही के अंदर आवला और सादे के अंदर आवला।
2: जी एगो एक व्यक्तित्व हला केहू केहू के,
3: जी जी
2: है ना।
1: एक थे फोन आवा था डॉक्टर भैया, ले लीहल जाए। हेलो हेलो
4: हाँ जी नमस्ते नमस्ते।
1: नमस्ते भैया, कहाँ से बोलत हूँ, नाम
4: अरे
1: बता दी।
4: हम आखिर बकही हो क्या कर जौनपुर से बोल।

0: बस सही के राकत जौनपुर से बोला थी, नाम बताइए अपन।
1: नाम हमारा रमा शंकर गुप्ता
0: रमा शंकर गुप्ता भैया, अंगनैया कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज महिला और किशोरियन पर अवसाद का बात होता और डॉक्टर डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी हमन के बीच में हुआ मनोचिकित्सक, आप
1: यही
0: बतियाई
1: बताओ
0: भैया
1: जा कि
0: से।
1: आज महिलाओं का हो तो हम बात कर सकीला पुरुषों के।
2: कहाँ है शादी हो गल बना आपके?
1: अरे हम 65 साल उम्र है हमारे
2: हाँ तो
1: बना।
2: शादी ब्याह हो गल, आप तो बहू हुई घर में, आपके नाती पोता हुई,
1: हाँ माने ना
2: नतिनियो
1: सब
2: हुई,
1: मौजूद हुए।
2: हाँ पोतियो हुई, तो पुरुषन के ढेर
1: माने
2: बात
1: माने
2: करे के
1: लो।
2: चाहिए महिलाओं के बारे में,
1: अच्छा
2: क्योंकि
1: अच्छा
2: जौन
1: अच्छा
2: समस्या पैदा करत बड़ा ढेर इकुल, मतलब हम अपना से नहीं कहत, ये तो अब
1: हाँ
2: तो रिसर्च में आ गेल बा कि पुरुष
1: हाँ
2: ठीक रखी घर के तो महिला वैसे ही ठीक रही, तो पुरुषन के ढेर जाने के जरूरी बा। बड़ा खुशी के बात
1: डॉक्टर
2: बा कि
1: साहब
2: आप
1: इको
2: फोन
1: तो
2: कइले।
1: होता इको तो विशेष ध्यान देवल जात बा, क्योंकि अकेलापन जो जीवन लोग आकर जिया ना, हमें समझ में वो ठीक ना हो।
2: बिल्कुल
1: तमल परिवार में हम देखी ला, जब लोग हंसन बोलन चलन फिरन है तो मन कुछ लोगों में बंटवारा हो जाला ये तनाव
2: जी
1: के।
2: जी हाँ
1: अभी आजकल के लोग ऐसा हमारा कि अकेले जीवन जिये चाहत में, शादी ब्याह हो के पहले सोचिए कि भाई हम अकेले हमारी लड़की रहे, तो कौन
2: आधा
1: जीवन है वो।
2: ये आधा बतिया तो आपे बता देला, तो जे सुना था ये बता दे कि भाई हमारे संगे काउंसलर जुड़ल हुआ है, वो कान हुआ अंकर,
0: रमा
2: हाँ
0: शंकर
2: रामा शंकर
0: गुप्ता
2: भैया, आप तो बड़ा बैठ के पंचायत में सब बतियावा, सब पुरुषन के बैठावा और सब पुरुषन के कहा बैठ करके कि अपने महिला के ध्यान रखे के बा, घर के बहू बेटी के ध्यान रखे के बा, गुस्सा नहीं करे के, चिड़चिड़ा नहीं करे के और अधिक काम नहीं के देवे के, है
0: डॉक्टर
2: ना?
1: साहब। हाँ लोगों के मुख में जो हंसी हो, हंसी जल्दी आवत ना हो,
2: हाँ
1: एक
2: एकदम
1: दूसरे के
2: हाँ
1: देख के अवसाद वेरी डिस्ट्रेसिंग।
2: हाँ तो एगो एगो
0: चलिए
2: लेके बैठा कहीं पे 10-20 पुरुषन के और उनके काउंसलिंग करा सब केहू के बैठ करके कि इस समस्या के कैसे निदान होई।
0: बिल्कुल ध्यान देवे के है डॉक्टर भैया हमहनों के, कि समय का समाप्त तो हो गया ला, हम लोगन के भी अब अपने कार्यक्रम के यहीं रोके के होई। आप हमारे कार्यक्रम में अइलन और श्रोता भैया लोगन के फोन पर से इतना उनकी समस्या का समाधान कइलन डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, एकरे लिए आपका बहुत बहुत
1: बहुत
0: धन्यवाद
2: धन्यवाद
0: करत
2: हमको,
0: हूँ।
2: बहुत बहुत आप सबके धन्यवाद, सभी श्रोताओं के धन्यवाद। थोड़ा सा लेट हो गई है ट्रैफिक के कारण, ओकरा खातिर माफी बटे।
0: जी हाँ,
2: हाँ
0: अंत भला तो सब
1: सब
0: भला,
1: भला
0: मुनक्का
1: बिल्कुल
0: कहीं हम लोगन के भी चले के चाहिए। चलत चलत बता दी हल जाए कि कार्यक्रम का प्रस्तुत करता रहलन है दिलीप यादव जी। हम लोगन अब बहनी लोगन से फिर अगले कार्यक्रम में भेंट करे आए जाए, तब तक कहल जाए नमस्ते।
3: नमस्ते।

अभी ग्रामीण महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम अंगनैया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH और DRM 1233 किलोहर्ट्स पर। दिन के 1:45 हुए हैं। अब आए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम और आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं सुभाष चंद्र यादव और उनके साथी। इनके सर में पहले सुनिए ये खेमटा।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार थे सुभाष चंद्र यादव और साथी। इनका गाया लोकगीत आप शाम 6:30 पर किसानवाड़ी में भी सुन सकते हैं। मीडियम वेव 241.56 यानी 1242 किलोहर्ट्ज़। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्ज़। वेव्स OTT पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही पल बाद यानी ठीक 2 बजे आप सुनेंगे समाचार, जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मैं हमेशा कहता आया हूं जो खेले वो खिले और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
1: He said every district has the potential to shine on the global sports map. The Prime Minister said he had announced from the ramparts of the Red Fort a big talent hunt to identify kids from 5 to 15 years of age in sports.
0: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा

0: Indra, who had already won the opening test in Galle, secured a first innings lead of 213 runs and asked Sri Lanka to bat again. India currently lead the two-match series 1-0. In squash, India's Veer Chotrani and Velavan Senthil Kumar have stormed into the semi-finals of the Budapest Open. Chotrani defeated Egypt's Mohamed El Sherbini 3-1 in the quarterfinal, while Velavan Senthil Kumar beat Malaysia's Ian Yao Hung 3-0 yesterday. The two Indian players will now face each other in the semi-final this evening. Benchmark domestic equity indices were trading with modest losses in the afternoon session today. The Sensex was down 143 points to 77,330, while the Nifty dropped 36 points to 24,171 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century, addresses Khelo India dialogue through video conferencing. 300 Indians among thousands missing in massive flash flood in Nepal, over 160 dead. India sends second tranche of relief materials. NDRF teams deployed in Bihar and Uttar Pradesh to respond to any flood-like situation. Forecast of heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and northeastern states till Saturday. US President Donald Trump says no fixed timeline for Iran to return to negotiating table. And in men's cricket, Sri Lanka extends their lead over India to 151 runs in second innings of the second and final test at Colombo. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध। नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत, 300 भारतीय समेत सहित 1000 से ज्यादा लोग लापता। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए बातचीत की कोई निश्चित समय सीमा नहीं। और कोलंबो में दूसरे तथा अंतिम टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 151 रन की बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल ढांचा विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले।
2: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
2: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है। खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े प्रतिभा

0: खोज अभियान की घोषणा की थी।
1: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी।
0: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों ने लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया है।
2: भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल्स तक सीमित नहीं है। फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों तक आपने फिटनेस को लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी को मजबूत करने का प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभा को अपना टैलेंट साबित करने का समान मंच मिले।
0: ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत माय भारत ने आयोजित किया था। देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले के दो दो कॉलेजों के युवाओं ने इसमें भाग लिया। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश में मजबूत खेल व्यवस्था और बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 36,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। गुजरात में गांधीनगर के पालज स्थित आईआईटी में आयोजित खेलो इंडिया संवाद से अलग मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल खेल अकादमियों की स्थापना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खेल सुविधाओं को मजबूत करने में किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत को अपनी खेल परंपराओं को एक जीवंत खेल संस्कृति में विकसित करना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली के हिंदू कॉलेज में खेलो इंडिया संवाद में हिस्सा लिया। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश एक मजबूत खेल तंत्र विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहा है।
3: इंटरनेशनल लेवल में हमारा मेडल्स बढ़ रहे हैं। पहले तो हम एक मुश्किल से 2 मेडल मिलते थे, अब तो हम हर कंपटीशन, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, चाहे ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, अब तो मल्टीपल मेडल्स जीतते हैं इंडियन प्लेयर्स। ये तो बहुत फख्र की बात है।
0: कश्मीर के सभी 10 जिलों के हजारों छात्रों, खिलाड़ियों और अन्य लोगों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल माध्यम से आयोजित खेलो इंडिया संवाद में भाग लिया। प्रतिभागियों ने युवा पीढ़ी को खेल अपनाने और खेल में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की। चंडीगढ़ के 51 शिक्षण संस्थानों के हजारों विद्यार्थियों और राष्ट्रीय खेल सेवा स्वयं सेवकों ने आज खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पठानकोट स्थित आर्य महिला महाविद्यालय की छात्रा शिव्या ने कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश हमेशा युवाओं को विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित रूप से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अहमदाबाद के सर्किट हाउस एनेक्सी में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृहमंत्री गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से टी सीरीज टैंकों के ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस परियोजना से रक्षा उपकरणों के रखरखाव और उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहाले गई और कई पन बिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया है। एक रिपोर्ट।
4: नेपाल में आई इस भीषण त्रासदी का कारण भूकंप के झटकों से ग्लेशियर फट जाने को माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इस बीच काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिक

0: से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर हैं +977-985-131-6807 और +977-970-910-7500। विश्व बैंक ने भी प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। इसके अलावा नेपाल में बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव और काठमांडू और पेचिंग में भारत के राजदूतों के साथ नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्रालय इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, पर्यटन संचालकों और परियोजना अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार राहत सहायता प्रदान करने के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने कहा है कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि दोनों राज्य सरकारों के समन्वय से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की 20 टीम तैनात की गई है, जिनमें से 9 बिहार में और 11 उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बल्कि एक टीम तैनात की गई है।
2: यूपी में कुशीनगर एरिया अफेक्ट होता है गोरखपुर के पास, तो एक टीम वहां पर डाइवर्ट कर दी गई थी। एक जो सीडब्ल्यूसी का भी इनपुट था कि उसका इम्पैक्ट वाल्मीकि नगर में बैरेज है गंडक रिवर पे, उसका जो पानी का डिस्चार्ज का फ्लो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फील्ड में अभी तक फ्लड का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज एनडीआरएफ की जो रिक्वायर्ड तैनाती है वो कर दी है दोनों राज्यों में, और अभी तक हम इस स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं।
1: इस बीच मौसम विभाग ने शनिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। वहीं शनिवार और रविवार को ओडिशा के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया कि प्याज को 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस महाराष्ट्र के नासिक से रवाना हो चुकी है और लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आज देर शाम या कल सुबह तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इसके पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर अपने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जारी न करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि डीए अभी तक जारी नहीं होने के कारण 3 लाख से अधिक राज्य सरकार के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ

0: संघर्ष समाप्त करने के लिए वार्ता फिर शुरू करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें बातचीत फिर से शुरू करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका बड़ी बढ़त हासिल कर रहा है। उन्होंने ईरान की आर्थिक मुश्किलों का भी उल्लेख किया। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी आज ईरान पहुंचेंगे। वे ईरानी अधिकारियों से मुलाकात कर तनाव कम करने और बातचीत के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत मजबूत स्थिति में बना हुआ है। श्रीलंका ने चायकाल तक दूसरी पारी में 155 रन की बढ़त बना ली है। इससे पहले भारत ने श्रीलंका को उनकी पहली पारी में 290 रन पर ऑल आउट करके फॉलो ऑन दिया है। दो मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 143 अंक गिरकर 77,330 जबकि निफ्टी 36 अंक गिरावट के साथ 24,171 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध। नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत, 300 भारतीय समेत 1,000 से ज्यादा लोग लापता। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और कोलंबो में दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 155 रन की बढ़त बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम कहकशा।
2: नमस्कार श्रोताओं, कहकशा कार्यक्रम लेकर हाजिर हो गई हूं मैं आपकी रेडियो दोस्त पूजा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कभी कभी ना दिन भर की भागदौड़ के बाद हमें किसी सलाह की जरूरत नहीं होती, किसी लंबी बातचीत की जरूरत नहीं होती, बस जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो दिल के किसी कोने को छू जाए। और जब वो आवाज गजल की हो तो फिर क्या कहने, क्योंकि गजल सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आप सुन रहे हैं मेरे साथ कहकशा कार्यक्रम और आज का ये सफर समर्पित है उन खूबसूरत अल्फाज के नाम जो कभी मोहब्बत बनकर दिल तक पहुंचते हैं, कभी तन्हाई में साथी बन जाते हैं और कभी पुरानी यादों का दरवाजा खोल देते हैं। तो आज थोड़ी रफ्तार कम करते हैं, मोबाइल की स्क्रीन से नजरें हटाते हैं और शब्दों की दुनिया में चलते हैं जहां हर शेर कुछ कहता है और हर खामोशी का भी एक मतलब होता है।

दोस्तों कहते हैं ना, कुछ गीत कानों तक पहुंचते हैं और कुछ सीधे दिल तक। गजल शायद इसी दूसरी श्रेणी में आती है। इसमें कहानी भी होती है, एहसास भी, और सबसे खास ठहराव। आज की दुनिया में जहां हर चीज जल्दी चाहिए, वहां गजल हमें थोड़ा रुकना सिखाती है। एक शेर आता है, हम उसे सुनते हैं, फिर शायद 2 सेकंड चुप रहते हैं और अचानक लगता है, अरे ये तो मेरे दिल की बात थी। कुछ आवाजें सुनकर ऐसा लगता है कि कमरे की रोशनी थोड़ी धीमी कर दी जाए, चाय का कप हाथ में हो और बस गजल चलती।

जाए। गजल की खूबसूरती यही है कि इसमें मोहब्बत सिर्फ प्रेम कहानी नहीं होती। कभी मोहब्बत किसी इंसान से होती है, कभी किसी शहर से, कभी किसी याद से, और कभी उस बीते हुए वक्त से जो वापस तो नहीं आता लेकिन दिल में हमेशा रहता है। और अगर बात शहर की मोहब्बत की हो तो भला काशी को कौन भूल सकता है। काशी भी तो अपने आप में एक गजल है। सोचिए, गंगा किनारे शाम उतर रही हो, हवा में हल्की ठंडक हो, दूर कहीं मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही हो और कानों में कोई धीमी सी गजल, बस उस पल को और क्या चाहिए। दोस्तों, गजल का एक और खूबसूरत पहलू है शायरी। शायर कुछ शब्दों में वो कह देता है जिसे हम कभी कभी पूरी जिंदगी में भी ठीक से कह नहीं पाते। एक अच्छा शेर पढ़ते हुए अक्सर लगता है, ये एहसास मेरे अंदर भी था, बस इसे शब्द नहीं दे पाया। तो चलिए अल्फाज को आवाज देते हैं और सुनते हैं अगली गजल।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कहकशा। एक छोटी सी बात पूछूं आपसे, आपके लिए गजल क्या है? मोहब्बत, याद, सुकून या फिर पुराने दिनों की कोई खूबसूरत तस्वीर? क्योंकि हर इंसान की अपनी एक गजल होती है। किसी की गजल में पहली मुलाकात होती है, किसी की गजल में बारिश, किसी की गजल में दोस्ती, किसी की गजल में माँ की याद और किसी की गजल में बस एक कप चाय और थोड़ी सी खामोशी। और यही तो खास बात है, गजल हर किसी की अपनी कहानी बन जाती है।

अब जरा बात करते हैं दोस्तों उन गजलों की, जिन्हें सुनते ही कोई पुराना दौर याद आ जाता है। रेडियो की यही तो खूबसूरती है, कभी एक धुन बजती है और अचानक हमें याद आता है वो पुराना कमरा, वो खिड़की, वो शाम, वो दोस्त, वो सफर। यादें भी बड़ी कमाल की चीज है, हम उन्हें बुलाते नहीं लेकिन एक धुन सुनते ही वो खुद ब खुद चली आती हैं। तो ऐसी ही कुछ यादों के नाम ये अगली गजल।

दोस्तों, पता ही नहीं चला कि हमारी ये गजलों वाली महफिल अपने आखिरी पड़ाव पर आ गई। लेकिन जाते जाते बस एक बात, जिंदगी में चाहे कितनी भी भाग दौड़ क्यों न हो, कभी कभी रुकिएगा, किसी पुराने गाने को सुनिएगा, किसी शायर का शेर पढ़िएगा, खिड़की के पास बैठकर चाय पीजिएगा और खुद से पूछिएगा, मैं कैसा हूं। क्योंकि दूसरों की खबर लेते लेते कहीं हम खुद की खबर लेना न भूल जाएं। और गजल वो तो हमेशा आपका साथ देगी, कभी मुस्कुराकर, कभी याद बनकर और कभी बिल्कुल खामोशी से। तो आज की इस कहकशा की महफिल को यहीं विराम देते हैं। मैं हूं आपकी रुड़ो दोस्त पूजा, दीजिए मुझे अनुमति। आपकी जिंदगी में सुकून की धुन कभी कम ना हो, आपके रिश्तों में मिठास बनी रहे और आपके दिल में हमेशा कोई ना कोई खूबसूरत गजल बजती रहे। नमस्कार।

आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम कहकशा, प्रस्तुति पूजा सिंह की थी। मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज आर एआईआर, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज़ वेव्स ओटीटी पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं, संपन्न हो रही है आज की हमारी पहली सभा। शाम 4 बजे दूसरी सभा आरंभ होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजने वाले हैं, आरंभ होती है हमारी दूसरी सभा। सभा के आरंभ में आइए सुने कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

बहुत स्वागत है आप सभी का संदेश टू सोल्जर्स में। ये एक ऐसा खास कार्यक्रम है जो वर्षों से हमारे जो जवान हैं उनकी वीरता, उनके अनुशासन, उनके समर्पण, उनके त्याग की कहानियां आपके बीच लेकर के आता रहता है। उन्हीं की जुबानी आप सुनते हैं उनकी कहानी।

कहानी। लेकिन आज हम आपकी आवाज, आपके दिल की आवाज उन सीधे उन सैनिकों तक पहुंचाएंगे जो इस समय शायद किसी बर्फीली चौकी पर हैं, किसी तपती सीमा पर हों, किसी जहाज पर, समुद्री जहाज पर, या किसी ऑपरेशन के बीच खड़े हैं। आज का संदेश टू सोल्जर्स पूरी तरह समर्पित है आपके संदेश, आपकी दुआओं, आपके गर्व की। और गर्व की बातें जो उनकी होती हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आज संदेश टू सोल्जर्स में। मेरा नाम है शैली भाषांजलि, इसी अभिमान की मैं बात कर रही हूँ।

और हमारे सैनिक अपने परिवार से महीनों महीनों बहुत दूर रहते हैं, लेकिन हमारी ओर से एक छोटा सा संदेश जब पहुंचता है तो शायद उनका हौसला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तभी तो एक सैनिक ने कहा था कि सरहद पर सबसे मुश्किल रातें तब आसान होती हैं जब लगता है ना कि देश वाले हमें याद कर रहे हैं। ये बात सच है, क्योंकि देशवासियों का जो प्यार है, भरोसा है, उससे भी लड़ते हैं वो। तभी तो सियाचिन में तैनात एक जवान ने लिखा था ये संदेश कि माँ, यहाँ तापमान -30 है, लेकिन जब कोई बच्चा पत्र लिखता है, संदेश भेजता है कि भैया आप हो इसलिए हम सुरक्षित हैं, तो मेरे ना दिल का तापमान गर्म हो जाता है। बस यही भाव, यही रिश्ता हम जोड़ना चाहते हैं। 9868107070 हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है और कार्यक्रम में बहुत खास संदेश टू सोल्जर्स।

वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स. इस शो में आज आपके साथ हूँ मैं शैली भाषांजलि. अमूमन हमारे साथ होते हैं देश के जाबाज, जो रूबरू हमारी बातचीत होती है उनसे आप सुनते हैं और गर्व करते हैं. लेकिन आज आपका गर्व पहुंचाने का काम मैं कर रही हूँ, सूत्रधार हूँ. 9868107070 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जो आपका आपके दिल का संदेश है. जो भी आप महसूस करते हैं ज़रूर लिखिएगा. युद्ध के मैदान में देश की रक्षा करने वाले हमारे सशस्त्र बल मुश्किल की हर घड़ी में तो साथ खड़ाई दिखाते थे, लेकिन सिर्फ सीमा पर ही नहीं, बाढ़ हो, भूकंप हो, प्राकृतिक आपदा हो, राहत, बचाव, पुनर्वास, इन सब में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है. याद दिलाना आवश्यक है, महसूस करना हर पल आवश्यक है. कई बार वे वहां पहुंचते हैं जहां पहुंचना भी एक चुनौती होता है. और मीरा जी लिखती हैं, पता नहीं कहाँ से लेकिन लिखी है, बहुत पते की बात लिखी है कि इंडियन आर्म फोर्सेस, आप सरहदों की रक्षा नहीं करते, हमारे सपनों की भी रक्षा करते हैं.

संदेश टू सोल्जर्स जिस कार्यक्रम में हम दोहराने की ये कोशिश करते हैं, बात आप तक पहुंचाते हैं कि जब भी कोई क्षेत्र आपदा में घिर जाता है तो सशस्त्र बल केवल राहत सामग्री नहीं पहुंचाते बल्कि लोगों को कठिन समय से निकाल करके भी लाते हैं। फिलहाल का समय बहुत ही कठिन है नेपाल के लिए भीषण बाढ़ की वजह से, लेकिन भारत एक तत्पर, एक सजग, एक देश की तरह अपने सशस्त्र बल की मदद से इनका बचाव भी करते हैं, रेस्क्यू भी करते हैं, कई जिंदगियों के लिए उम्मीद भी बन जाते हैं। और हमारे सशस्त्र बल की सेवा केवल देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है, ये हम जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो अभियान है उसमें वे हाथ बढ़ाते हैं और काम करते हैं, क्योंकि वर्दी का अर्थ केवल शक्ति नहीं, अनुशासन, साहस और मानवता सबसे बढ़कर।

बहुत स्वागत है आप सभी का संदेश टू सोल्जर्स में. मेरा नाम है शैली भाषांजलि और आज सोल्जर्स की ही बातें कर सकते हैं, बहुत गर्व के साथ बातें करते हैं. अब जो पूरा देश, जो जो बहनें हैं, अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधने की तैयारी में लगी हुई हैं, लेकिन कुछ भाई अपने घरों से बहुत दूर हैं, देश की सीमाओं पर हैं. किसी बहन की राखी आज पहुंचेगी शायद डाक से उनके पास, किसी की वीडियो कॉल पर बंधेगी और किसी बहन की कलाई खाली होगी, भाई की कलाई खाली होगी, क्योंकि उनका भाई देश की रक्षा में तैनात है. लेकिन सच तो यह है कि सैनिक सिर्फ अपनी बहन की रक्षा नहीं करता, पूरे देश की रक्षा करता है. आज संदेश टू सोल्जर्स में देश के हर वीर जवान को एक राखी, एक अनदेखी राखी, वो धागा आपकी कलाई तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन देश की हर बहन की दुआ आपके साथ है.

वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स. और ये कार्यक्रम तभी पूरा होता है जब आप जुड़ते हैं अपने मैसेजेस के साथ, अपने भाव के साथ. शांताचारा बाडिगर कोकानूर, एम आई राइट? ओके, भाव की तरफ ध्यान दीजिएगा. शब्दों पे क्षमा चाहूंगी, लेकिन दावानागरी से लिखते हैं कि कार्यक्रम इसलिए वंडरफुल होता है ना शांताचारा जी, बिकॉज सैनिकों के बारे में होता है. आप जुड़े हैं इस शो के साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और हमारे साथ शंकर जी जुड़े हुए हैं ककरूला द्वारका से, एंड ही सेंडिंग हिज हार्टिएस्ट लव टू द इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड्स द नेशन. एंड बहुत सारी प्यारी बातें, डिवोशन, डेडिकेशन की उनको उनके बारे में लिखी है, एक्सप्रेस की है अपनी फीलिंग्स, और सल्यूट करते हैं उनको. यशवंत जी लिखते हैं अपने अपने भाव के साथ, और मंजू भाटिया जी कहती हैं कि हमारी सीमा पर तैनात सभी सैनिकों को राखी की हार्दिक शुभकामनाएं, अपने हर मिशन में आप कामयाब हो, यही हम चाहते हैं. जी हाँ, रक्षाबंधन एक ऐसा धागा जिसमें विश्वास बंधा है, सुरक्षा का वादा है, वो ये करते हैं. इसलिए आज आपकी आवाज़ उन तक पहुँचे, आपकी दुआ, आपका गर्व, आपका सम्मान, आपके भाव, आपके शब्द, इसी उद्देश्य से तो ये शो बना है. मेरा नाम है शैली भाषांजलि, सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि आपकी बात को उन तक जोड़ूं और पहुंचाऊं.

आकाशवाणी के इस चैनल में आप जुड़ रहे हैं संदेश टू सोल जैसे बहुत ही खास दिल के करीब यह कार्यक्रम होता है। हम जानते हैं कि सब लोग अपने अपने हिस्से का काम करते हैं, कोई धूप में तपकर, कोई छांव में रहकर अपने हिस्से की जमीन कमा रहा है, रोटी कमा रहा है, थकता है, मुस्कुराता है, चलता है, फिर लग जाता है। लेकिन स्पेशली उनकी बात करना चाहूंगी, उन माताओं को नमन करना चाहूंगी जिन्होंने देश को अपने बेटे दिए हैं, उन बहनों को सलाम करना चाहूंगी जो भाई के लौटने का इंतजार करती है। स्पेशली जब राखी आती है तो उनके इंतजार में बहुत ही एक तत्परता बन जाती है। उन सैनिकों को प्रणाम करूंगी जिनकी वजह से हम त्योहार मना पाते हैं, और यही बात कहते हैं अनिल जी, अनिल कुमार, गेंडा खाली, चिलिया घोल, टनकपुर जिला, चंपावत, उत्तराखंड से इन्होंने लिखा है और यही कहा है कि रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं तो दी है, पर ये भी कहा है कि सुरक्षा के साथ हम कोई भी फेस्टिवल मना सकते हैं उनकी वजह से। हैप्पी राखी, हैप्पी हैप्पी लॉट ऑफ विशेज ही इज रिटन। दिस इज श्री रंगम राजेश फ्रॉम तमिलनाडु। आप सुनिए ये गीत, हम फिर आते हैं। मैसेजेस का सिलसिला यहाँ बन चुका है 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। संदेश टू सोल्जर्स में आप अपने संदेश भेज दीजिए। दिस इज द प्रोग्राम विच रीचेस स्ट्रेट टू द सोल्जर्स एंड द हार्ट्स।

चूंकि ये कार्यक्रम प्राइमरली आपके संदेश, आपके दिल की भावना और आवाज से जुड़ा हुआ है, इसीलिए जो सिलसिला मैसेज उसका यहाँ है वो आप तक जरूर पहुंचाती हूँ। यहाँ पर आनंद मोक्षी ने मुंबई से लिखा है, बहुत शुभकामनाएं दी है रक्षाबंधन की। और ये इन्होंने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं, कि इन्होंने, यश सिंध ने लिखी है। इन्होंने लिखा है कि सरहद पर जो खड़े हैं सीना ताने, वही तो इस पावन राखी का असली मान है। जो घर नहीं आ सकते वतन के खातिर, उन भाइयों के लिए दिल से दुआ आती है, बिल्कुल आती है दिल से। रेशम का धागा भले सरहद तक ना पहुंचे, पर हर बहन की दुआ आपको महफूज रखती है। बिल्कुल सही बात है, न जाने कैसे आपके दिल तक

जाती है, और यही बात यश शिंदे जी ने लिखी है। और हमारे पास मैसेज आया विपिन नेहरा का देहरादून से, एंड ही इज़ ऑल्सो विशिंग यू नो वॉर्म विशेज ही इज सेंडिंग टू ऑल द सोल्जर्स। और ये शो अच्छा, बहुत धन्यवाद अनिल कुमार जी, इसी तरह से प्यार से आप जुड़े रहिए हमारे शो से, संदेश टू सोल्जर्स, ये हमारा शो है। सोल्जर्स की शान में हमेशा जी करता है कि कुछ ना कुछ बोले, बहुत सारी बातें उन पर लिखी गई हैं, लेकिन ये बात बहुत प्यारी लगती है मुझे। शायद आपने पढ़ा होगा स्कूल में, जानते होंगे इसके बारे में, कि देवों के सिर पे चढ़ जाऊं, भाग्य पे इठलाऊं, ये चाह नहीं है, बस तोड़ लेना वन माली मुझे, उस पथ पर फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक।

और इसी के साथ ही हम रसराज जी, प्रीतम जी और राजकुमार संतोषी जी का जी के मैसेज का बहुत बहुत स्वागत करते हैं संदेश टू सोल्जर्स में। और साथ ही बहुत सारे भाव प्रकट होते हैं ना संदेश टू सोल्जर्स के कार्यक्रम में, जब हम आते हैं सूत्रधार के रूप में, आपकी भावनाओं को सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और फिर माइक के माध्यम से उन तक पहुंचाते हैं, तो एक अलग भावना में परिपूर्ण हो जाते हैं। वो बर्फीली हवाओं में जो डटे सैनिक हैं, कभी समुद्र की अनदेखी गहराइयों में तिरंगे की शान उसकी रक्षा करने जो जो नेवी के जाबाज हैं, जो आसमान में सरहदों की जो चौकसी कर रहे हैं, एयरफोर्स के जो शूरवीर, जो पायलट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, इन सभी की अनगिनत कहानियां आप तक आती रहेंगी संदेश टू सोल्जर्स के माध्यम से। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जिस तरह से दिल से आप जुड़ते हैं, उस तरह से दिल से, प्यार से, मन से, भाव से, आदर से हम

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे धरती की गीत कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे सिंधी गीत। प्रसिद्ध कार्यक्रम धरती के गीत। आज आप सुनेंगे सिंधी गीत।

आकाशवाणी वाराणसी से धरती के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे हैं सिंधी गीत और कलाकार हैं कमला केशरवानी।

0: धरती की गीत कार्यक्रम में अभी आपने सिंधी गीत सुने। कलाकार थीं कमला केशरवानी। धरती की गीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया गया।
1: मुझे याद कर कभी श्रद्धा से झुक जाए अगर तुम्हारा सर, तो मान लेना तुम्हारे भीतर ही है मेरा होना। कभी मेरी राह पर चलते हुए चोट खाओ, रुक जाओ, फिर भी चलो, तो मान लेना मैं हूं, मैं था, मैं रहूंगा। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक शुक्रवार गांधी चर्चा कार्यक्रम में सुबह 6:25 पर सुनिए बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ।

0: आकाशवाणी वाराणसी मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर प्रोग्राम फरमाइश्री गीत एक्सप्रेस AIRVNS@gmail.com। जी हाँ श्रोताओं, अब आप मेल के जरिए भी अपनी फरमाइश के फिल्मी गाने सुन सकते हैं। प्रोग्राम फरमाइश्री गीत एक्सप्रेस में आकाशवाणी वाराणसी से हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, यानी इस मेल पर आपको अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचानी है AIRVNS@gmail.com। तो अब खतों, फोन इन, व्हाट्सएप और SMS के बाद अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचाइए मेल के जरिए भी, और सुनिए फरमाइशी गीत एक्सप्रेस प्रोग्राम। तो अब हम हैं आपके साथ हर घड़ी, हर पल और हर प्लेटफॉर्म पर, आकाशवाणी वाराणसी मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर प्रोग्राम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों बाद यानी शाम के 5:15 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

0: हेलो नमस्कार दोस्तों, रोज की तरह आज भी स्वागत है आप सभी का मेरे और होपफुली आपके भी फेवरेट शो युवाणी में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त तनिष्का।
1: और मैं हूं आलिया। वैसे तनिष्का, आज ना हम शो की शुरुआत किसी कविता, शायरी या किसी पंच लाइन से नहीं, बल्कि एक सवाल से करेंगे। बोलो, क्या कहती हो?
0: हाँ हाँ बिल्कुल, पूछो पूछो।
1: तो दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि ऐसी जगह के बारे में सोचिए जहाँ शोर ना हो, बस पानी की हल्की हल्की आवाज़ हो, ठंडी हवा हो और चारों तरफ सुकून हो, तो आपके दिमाग में क्या आया? तनिष्का, तुम बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या आया?
0: मेरे दिमाग में तो एक सुंदर, शांत, दिल को सुकून देने वाली झील आई। क्योंकि सच कहूँ तो झील के किनारे बैठने का मज़ा ही कुछ और है। पानी को देखते रहो, हवा को महसूस करो, ऐसा लगता है जैसे झील भी हमसे कुछ कह रही है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, एक झील। और आज हम बात करेंगे इसी झील पर।
0: क्यों, आज कुछ खास है क्या?
1: हाँ बिल्कुल, आज खास है, आज है विश्व झील दिवस।
0: वैसे एक बात बताओ, झील के लिए भी क्या कोई दिवस होता है?
1: हाँ, क्यों नहीं होता है, आज है ना, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम झीलों को जितना खूबसूरत समझते हैं ना, उनका काम उससे कहीं ज्यादा बड़ा होता है।
0: शायद इसीलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इस दिन को झीलों के संरक्षण और उनके सतत प्रबंधन के लिए आधिकारिक तौर पर घोषित की थी। और पता है, इसकी पहली वैश्विक शुरुआत पिछले साल यानी कि 2025 में ही हुई थी।
1: लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर विश्व झील दिवस मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये इसलिए क्योंकि झीलें आज कई तरह की परेशानियों से जूझ रही हैं।
0: कहीं झील में कचरा जा रहा है, कहीं गंदा पानी पहुंच रहा है, कहीं झील का पानी कम हो रहा है और कई जगह झीलों के आसपास की जमीन पर लगातार निर्माण हो रहा है।
1: और हम अक्सर सोचते हैं कि एक झील ही तो है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यही हम गलती कर देते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि झील सिर्फ पानी से भरा हुआ कोई एक गड्ढा नहीं है। झील में मछलियां हैं, उनके आसपास पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं और कई दूसरे जीव हैं। यानी एक छोटी सी झील छोटी सी दुनिया है।
1: बिल्कुल, और इंसानों के लिए भी झीलें काफ़ी ज़रूरी हैं। ये पानी को जमा करने में मदद करती हैं, ग्राउंड वाटर को बनाए रखने में मदद करती हैं और आसपास के वातावरण को संतुलित रखने में भी भूमिका निभाती हैं।
0: आप जरा सोचिए, अगर यही झील धीरे धीरे गंदी होने लगे तो सबसे पहले पानी की गुणवत्ता खराब होगी, उसके बाद जलीय जीवों और पक्षियों पर असर पड़ेगा, और अगर झील पूरी तरह सूख जाए तो खत्म हो जाएगी। और एक खूबसूरत जगह ही सिर्फ खत्म नहीं होगी, उससे जुड़ा पूरा इकोसिस्टम ही खराब हो जाएगा।
1: यानी मामला सिर्फ एक झील का नहीं है, मामला हमारे पर्यावरण का है, और इसीलिए ऐसे दिन ज़रूरी है कि हम कम से कम आज तो ये सोचें कि हमारे आसपास की झीलों के साथ आखिर हो क्या रहा है।
0: तो दोस्तों, आप जब भी किसी झील पर जाएं, बिल्कुल एंजॉय करें, फोटो खींचे, चाय पिए, सुकून से झील को देखें, पिकनिक पर जाएं, पर कभी भी उसके आसपास कोई कचरा ना फेंकें।
1: बिल्कुल, क्योंकि झील को बचाने के लिए हमेशा कोई बहुत बड़ा अभियान शुरू करने ज़रूरी नहीं है, शुरुआत हम अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलने से कर सकते हैं।
0: प्लास्टिक और कचरा झील में न डालना, झील के आसपास गंदगी ना करना, पानी को प्रदूषित ना करना और सबसे ज़रूरी, दूसरों को ये भी समझाना कि झील सिर्फ हमारी पिकनिक की कोई एक जगह नहीं है।
1: बिल्कुल, तो चलिए आज से झीलों को सिर्फ खूबसूरत नज़ारे की तरह नहीं, बल्कि ज़िंदगी और पर्यावरण का एक ज़रूरी हिस्सा मानते हुए इनके संरक्षण की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। और तनिष्का, हमने इतनी सारी बातें कर ली, दोस्तों को इतना ज्ञान दे दिया, पर अब उन्हें एंटरटेनमेंट भी दे दिया जाए,
0: बिल्कुल।
1: तो चलिए सुनते हैं ये गीत।
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन

0: एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: यूपी 112 की ओर से उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को रक्षाबंधन की कोटि-कोटि शुभकामनाएं।
3: राखी के दिन एक भाई अपनी बहन को सुरक्षा का जो वादा करता है, वही वादा है फर्स्ट रिस्पॉन्डर यूपी 112 का, जो 2400 घंटे सातों दिन आपकी सुरक्षा में तैनात है।
2: पुलिस सहायता चाहिए या एम्बुलेंस, आगजनी की घटना हो या आ जाए कोई प्राकृतिक आपदा,
3: साइबर सिक्योरिटी का केस हो या मामला हो महिला व बाल संघ अपराध का, शहर हो या देहात, दिन हो या रात, किसी भी आपात स्थिति में फोन उठाएं 112 मिलाएं।
4: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
5: सुनो ना।
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे।
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
7: 0542227658।
5: ओ
8: 0542227658।
5: लो अभी फोन लगाता हूँ।
8: 0542227658।
9: वैसे दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने किसी चीज के लिए पूरी मेहनत की हो, उम्मीद लगाई हो और आखिर में सिर्फ एक शब्द मिला हो, असफलता, और उसके बाद ऐसा लगता है कि बस सब खत्म। बिल्कुल जैसे महीनों की मेहनत, सपने और उम्मीदें एक रिजल्ट ने मिटा दी हूँ।
10: हुई है ना, पता है हमें कैसे पता चला? क्योंकि हम सभी के साथ ये होता है, और यकीन मानिए हम सब आपसे अलग बिल्कुल नहीं हैं। हम सब भी बिल्कुल वैसे ही फील करते हैं जैसे आप सभी। हम सबको भी यही लगता है कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों होता है, मैंने तो इतनी मेहनत की। लेकिन दोस्तों थोड़ा रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए
9: कि क्या असफलता कोई आखिरी पड़ाव था या इस लंबे से रास्ते का एक छोटा सा मोड़। सोचिए अगर आप रास्ते में गलत मोड़ ले लें तो क्या आप पूरी यात्रा खत्म कर देते हैं? नहीं ना, वापस मुड़ते हैं, रास्ता देखते हैं और आगे बढ़ते हैं।
10: बस असफलता भी कुछ ऐसी ही चीज है, वो आपको रोकने नहीं आती, कई बार वो सिर्फ इतना बताने आती है कि इस रास्ते से नहीं बल्कि किसी और रास्ते से या किसी दूसरे तरीके से कोशिश करो। और यकीन मानिए दोस्तों, ये बात हमें देर से ही सही लेकिन रियलाइज जरूर होती है कि फेलियर वॉज नेवर अ हर्डल।
9: सोचिए अगर हर कोशिश में हम पहली बार ही सफल हो जाते तो शायद हमें खुद को सुधारने की जरूरत ही नहीं महसूस होती, हम अपनी कमजोरियों को पहचान ही नहीं पाते। लेकिन जब कोई दरवाज़ा बंद होता है तब पहली बार हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि क्या मुझे वही दरवाज़ा खोलते रहना है या फिर मुझे अपनी चाबी बदलनी है। शायद इसी वजह से कुछ कहानियाँ पहली कोशिश में नहीं बनती।
10: बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी जिंदगी आपको मंजिल देने से पहले आपको उस मंजिल के लायक बना रही होती है। तो अगर आप आज किसी असफलता से गुजर रहे हैं तो इसे अपनी कहानी का आखिरी पन्ना मत समझिए। हो सकता है यही वो पन्ना हो जहाँ से आपकी कहानी का सबसे अच्छा अध्याय शुरू होने वाला हो, क्योंकि गिरना कहानी का अंत नहीं बल्कि सबसे सुंदर मोड़ की शुरुआत होता है।
9: बिल्कुल, और अब हमारे कार्यक्रम में भी वो सुंदर मोड़ आ गया है। अब दोस्तों समय है उस पड़ाव का जिसका इंतजार हमारे श्रोता हर कार्यक्रम में करते हैं, यानी कि हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का।
10: लेकिन नए सवाल से पहले आइए याद करते हैं पिछले कार्यक्रम में पूछे गए सवाल को और जानते हैं उसका सही जवाब। तो दोस्तों पिछले कार्यक्रम में हमने आपसे सवाल किया था कि भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने के लिए इंडिया डे फेस्टिवल का आयोजन किस देश ने किया। इसका सही जवाब था रशिया।
9: और दोस्तों बारी है उन श्रोताओं की जिन्होंने सही उत्तर भेजकर अपनी जागरूकता का परिचय दिया है। तो आज के

0: विजेता हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, ग्राम पीपलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से, चंदा चंदौली से, प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से, ब्रजेश ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से, दुर्गेश नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुमबाई और दिव्यांश नागनपुरे, रिंग रोड नर्मदानगर मध्य प्रदेश से, सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा, ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से, प्रेमलाल वर्मा निकेश नंदिनी हर्षिता और ममताबाई वर्मा।
1: सभी विजेताओं को युववाणी परिवार की ओर से ढेरों बधाइयां और हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी सक्रिय भागीदारी हमारे कार्यक्रम की खूबसूरती को और बढ़ाती है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आइए जान ले हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है कि वर्ष 2026 के लिए G20 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है। एक बार और सुनिए, वर्ष 2026 के लिए G20 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है।
0: दोस्तों, आप हमें अपना जवाब भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी youthairbns@gmail.com या फिर हमारी इंस्टा आईडी youthairvaranasi पर। अब इंतजार किसका है, जल्दी से उठाइए फोन और भेजिए अपना जवाब, साथ ही सुनिए ये गीत।

0: थी। इतना थकने के बाद भी हमें उसे करने का मन करता है, मतलब वो काम जिसे करने के बाद हमें लगता है हाँ ये वक्त मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बिताया है।
1: तनिष्का, कहीं तुम हॉबीज की बात तो नहीं कर रही हो?
0: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने।
1: दोस्तों, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पढ़ाई, काम और जिम्मेदारियों से भरी होती है ना, तो ऐसे में हॉबीज यानी शौक हमारे जीवन को खुशहाल और रोचक बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, हॉबीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिन्हें हम अपनी खुशी के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं, जैसे पढ़ना या गाना, डांस करना, पेंटिंग करना, आर्ट बनाना, खेलना, खाना बनाना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम करते हैं।
0: बिल्कुल, लेकिन आलिया हॉबी ना सिर्फ खाली समय में किया जाने वाला काम नहीं है। कभी कभी यही छोटी सी पसंद हमारी पर्सनालिटी का वो हिस्सा बन जाती है जो हमें सबसे ज्यादा खुशी देती है।
1: दोस्तों, हॉबीज हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी होती हैं। जब हम अपनी पसंद का कोई काम करते हैं तो हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है और मन को खुशी मिलती है। जब हम पढ़ाई या कोई काम लगातार दबाव के साथ करते हैं, लगातार प्रेशर होता है हमारे ऊपर, लेकिन अगर हम उसमें अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लें, अपनी हॉबी के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लें ना, तो हम बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं। क्यों तनिष्का?
0: बिल्कुल, यही तो वजह है कि हॉबी और भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि हर वक्त प्रोडक्टिव बने रहने की कोशिश में हम ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ काम करने के लिए तो नहीं बने हैं। कोई गिटार बजाकर खुश होता है, कोई किताब पढ़ते हुए खुश होता है, कोई को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, कोई पेंटिंग से अपने मन की बात कह देता है, और किसी को बस शाम को कैमरा लेकर निकल जाना पसंद है।
1: बिल्कुल। और तनिष्का, मुझे ऐसा लगता है ना कि जब हम अपनी हॉबीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा लीन हो जाते हैं, तो वो चीजें हमारे रोजगार में भी मदद करती हैं। जैसे अगर किसी को कुकिंग करना पसंद है तो वो इंटरनेट पे अपनी कुकिंग वीडियोस डाल करके अर्न कर सकता है, या फिर अगर किसी को फोटोग्राफी करना पसंद है तो वो फोटोज क्लिक करके अर्न कर सकता है। क्यों?
0: बिल्कुल, आजकल तो कई लोगों ने अपनी हॉबी को ही अपना पैशन बना लिया है, अपना एक्चुअल वर्क बना लिया है।
1: वैसे तनिष्का, तुम्हारी हॉबी क्या है?
0: मेरी फेवरेट हॉबी है फाइनेंस के बारे में पढ़ना।
1: तनिष्का, तुम्हारी भी तो हॉबी ऐसी ही है जो तुम्हें प्रैक्टिकल वर्क में और तुम्हारे वर्क लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी।
0: बिल्कुल, तुम्हारी हॉबी क्या है आलिया?
1: मेरी हॉबी तो है गाने सुनना और पढ़ना। तो हम यहाँ पढ़ तो नहीं सकते हैं, पर हम यहाँ गाने सुन सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो क्यों ना सुने मेरी पसंद का एक गाना।
0: बिल्कुल।

0: तो दोस्तों अब वक्त है आपको लेकर चलने का इतिहास के उन पन्नों में जहां आज की तारीख अभी कोई बड़ा बदलाव आई है।
1: बिल्कुल, और आज तारीख है 27 अगस्त। वैसे तो कैलेंडर में ये एक सामान्य सी तारीख लगती है, लेकिन इतिहास के पन्ने पलटें तो 27 अगस्त को कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिनका असर आने वाले दशकों तक दुनिया पर पड़ा।
0: आज ही के दिन 27 अगस्त 1859 को अमेरिका के पेनसिल्वेनिया में एडविन ड्रेक ने सफलतापूर्वक तेल का कुआं खोदा। इस सफलता को आधुनिक व्यावसायिक पेट्रोलियम उद्योग की शुरुआत माना जाता है। ड्रेक की इस सफलता के बाद पेनसिल्वेनिया में बड़े पैमाने पर ऑयल ड्रिलिंग शुरू हुई और आगे चलकर पेट्रोलियम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी रिसोर्स में शामिल हो गया।
1: और दोस्तों 27 अगस्त 1939 को जर्मनी में हेनिकल HE-178 ने अपनी पहली सफल जेट पावर्ड फ्लाइट की। इसे दुनिया की पहली टर्बोजेट एयरक्राफ्ट फ्लाइट माना जाता है। टेस्ट पायलट एरिक वोसिट्स ने यह विमान उड़ाया था, और इस विमान में हांस वोन ओहेन द्वारा विकसित टर्बोजेट इंजन लगाया गया था। इस उड़ान ने आधुनिक जेट एज की शुरुआत का रास्ता खोल दिया।
0: 27 अगस्त 1955 को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का पहला एडिशन प्रकाशित हुआ। इसकी शुरुआत गिनीज ब्रीवरी के मैनेजिंग डायरेक्टर सर ह्यूग बीवर ने एक सवाल से हुई थी कि यूरोप का सबसे तेज गेम बर्ड कौन सा है। इस सवाल के बाद अलग अलग रिकॉर्ड्स और फैक्ट्स को एक किताब में संकलित किया गया और अलग अलग विचार आए। पहली एडिशन के बाद यह किताब

0: किताब दुनिया भर में लोकप्रिय हुई और आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के नाम से जानी जाती है।
1: दोस्तों 27 अगस्त 1991 को मोल्दोवा की पार्लियामेंट ने सोवियत यूनियन से इंडिपेंडेंस की घोषणा की। ये फैसला उस समय लिया गया जब सोवियत यूनियन राजनीतिक संकट और विघटन के दौर से गुजर रहा था। इससे कुछ दिन पहले मॉस्को में सोवियत हार्डलाइनर्स का कूप अटेम्प्ट भी असफल हुआ था। मोल्दोवा की घोषणा सोवियत संघ से अलग होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। कुछ ही महीनों बाद दिसंबर 1991 में सोवियत यूनियन का औपचारिक विघटन हो गया। और दोस्तों मुझे लग रहा है इतनी जानकारियों के बाद अब वक्त है ये गाना एंजॉय करने का।

0: दोस्तों, अब बारी है यूथ डायरी की। और आप तो जानते ही हैं कि शब्द हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। शब्द होंगे तभी हमें अच्छे विचार आएंगे, और खासकर अच्छे शब्द होंगे तो ज़्यादा अच्छे विचार आएंगे। क्यों तनिष्का?
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का हिंदी शब्द है समन्वय। समन्वय का अर्थ होता है दो या दो से अधिक लोगों

0: संस्थाओं या कार्यों के बीच तालमेल और सहयोग स्थापित करना ताकि किसी काम को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके। आसान शब्दों में कहें तो अलग अलग लोगों या चीज़ों के को एक साथ सही तरीके से जोड़कर काम करना ही समन्वयन है। इसके समानार्थी शब्द हैं तालमेल, सामंजस्य, सहयोग और मेलजोल। वाक्य में इसका प्रयोग कुछ इस तरह से किया जा सकता है कि टीम के सभी सदस्यों के बीच अच्छे समन्वयन के कारण यह कार्यक्रम सफल रहा, यानी सभी लोगों ने आपस में तालमेल बनाकर काम किया।
1: और दोस्तों, अब बारी है हमारे आज के इंग्लिश वर्ड की। आज का हमारा इंग्लिश वर्ड है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट मीन्स एग्रेसिव, हॉस्टाइल और रेडी टू फाइट। इसका मतलब होता है लड़ाकू, आक्रामक या झगड़ालू, खासकर किसी संघर्ष या युद्ध में शामिल पक्ष के लिए। सम कॉमन सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी शब्द बेलिजरेंट के हो सकते हैं एग्रेसिव, हॉस्टाइल, कॉम्बैटिव, कन्फ्रंटेशनल या फिर एंटैगनिस्टिक। और अगर हम इसका वाक्य प्रयोग करें तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। द कंट्री अडॉप्टेड अ बेलिजरेंट एटीट्यूड टूवर्ड्स इट्स नेबरिंग कंट्री, या फिर हिज बेलिजरेंट बिहेवियर मेड इट डिफिकल्ट टू हैव अ पीसफुल कन्वर्सेशन विद हिम।
0: तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के शब्द यूथ डायरी के, समन्वयन और बेलिजरेंट। और दोस्तों, अब बारी है उसकी जिसका होता है सभी को इंतजार।
1: दोस्तों, रोजगार हम सभी के लिए जरूरी है और इसीलिए ये रोजगार सूचना है आपके लिए, तो जरूरी है और ध्यान से सुनिएगा।
0: दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO में सहायक भविष्य निधि आयुक्त के 80 पदों की भर्ती के लिए 19 अगस्त 2026 को संक्षिप्त UPSC EPFO अधिसूचना 2026 जारी की थी। और इसी कड़ी में आवेदन 22 अगस्त से शुरू भी हो चुके हैं और आवेदन की अंतिम तिथि है 11 सितंबर 2026।
1: अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, या और अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आइए सुनते हैं गाना।

0: दोस्तों, पता है एक ऐसी खूबी है जिसे लोग आम तौर पर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। लीडरशिप, ये क्वालिटी सिर्फ किसी पद पर बैठे व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के जीवन में ज़रूरी है। और इसी के साथ ज़रूरी है लीडरशिप क्वालिटी खेल कूद में भी होना, क्यों?
1: बिल्कुल
0: और दोस्तों, खेल कूद हमारे जीवन के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें हेल्थ में सुधार होता है, हम एक्टिव रहते हैं, स्ट्रेस कम होता है। और तनिष्का, तुम खेल कूद करती हो या नहीं?
1: बिल्कुल, मुझे तो बहुत पसंद है गेम खेलना। मैं बचपन में इतने गेम खेली हूँ, बैडमिंटन, टाइकोंडो, वॉलीबॉल। पता है मेरा फेवरेट गेम वॉलीबॉल था, और मैं अपने स्कूल की कैप्टन भी थी वॉलीबॉल टीम में।
0: हाँ, वैसे दोस्तों

0: हम चाहे किसी भी उम्र में हो, खास तौर पर जब हम युवा हैं, तो हमें खेल कूद ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि हम एक्टिव रहेंगे ना, और इसके साथ एक्सरसाइज, व्यायाम, योग, ये सब तो ज़रूरी है ही, और अच्छा खान पान भी ज़रूरी है, क्यों?
1: बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि हम अगर सिर्फ बाहर का खाना खाएं या फिर क्यों क्यों हमारी बॉडी में ऐसा हो जाता है कि हम बाहर का खाना खाकर इतने बीमार हो जाते हैं, क्योंकि
0: बिल्कुल.
1: हम व्यायाम नहीं करते हैं, हम कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं, इसकी वजह से हमारा शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, हमारी हड्डियाँ बहुत स्टिफ हो जाती हैं और हम घर का काम भी नहीं कर पाते, हम नॉर्मल अपना वर्क भी नहीं कर
0: हाँ,
1: पाते।
0: तो इसीलिए दोस्तों, अपने जीवन से आलस को भगाएं, खेल कूद और व्यायाम को लाएं, और मुझे यानी आलिया,
1: और मुझे यानी तनिष्का,
0: हमें दीजिए इजाजत. नमस्कार.

अभी और श्रोता अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी, प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया गया। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं भोजपुरी में समाचार। थोड़ी देर में हम अपने गोरखपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से आज खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम के संबोधित करने हैं। इस दौरान वहां के कहने की सरकार 21वीं सदी के भारत बदे आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करे खातिर प्रतिबद्ध बा।
1: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: प्रधानमंत्री कहना कि लाल किला के प्राचीर से 5 से 15 बरिस के उम्र के लड़कन में खेल प्रतिभा खोजे बदे बढ़हन प्रतिभा खोज अभियान का घोषणा कैले रहना है।
1: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी।
0: प्रधानमंत्री का यह संबोधन प्रदेश के करीब 150 जगहिन के साथ ही देश भर में 1500 जगहिन पर सुनल गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के तहत 107 स्टार्टअप्स के 3.42 करोड़ रुपया से बेसी और 9 इंक्यूबेटर्स के 1.79 करोड़ रुपया से बेसी को प्रोत्साहन राशि बंटले। इस मौके पर उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 पुस्तिका का विमोचन और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन पोर्टल का शुभारंभ भइल। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री उद्यमियों से देश के कुल स्टार्टअप का 20% प्रदेश के भीतर सुनिश्चित कैले में योगदान देहले का अपील कैले।
2: आज यूपी के अंदर हमारे पास एक समर्पित पॉलिसी है और मैं तो आपको इस बारे में कहूंगा कि जितनी संभावनाएं आपके पास उत्तर प्रदेश के अंदर हैं अलग अलग फील्ड में अलग अलग क्षेत्र में उतनी संभावनाएं आपको देश और दुनिया के अंदर कहीं नहीं प्राप्त होंगी। आप उसको थोड़ा देखने का प्रयास तो करें, उस दिशा में थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास तो करें और यूपी गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी होकर के इस पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने में हर प्रकार से मदद करने को तैयार है।
0: कानपुर नगर के ग्वालटोली थाना इलाका में आज दिन में गंगा नदी के किनारे भई लेगो प्रशिक्षण विमान हादसा में प्रशिक्षक पायलट और प्रशिक्षु पायलट का मौत हो गई। कानपुर नगर का पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल विमान हादसा का पुष्टि कैले।
3: ये दो लोगों की डेथ हो चुकी है, इसमें एक इंस्ट्रक्टर थे, ये सचिन भाटिया गुजरात के रहने वाले हैं और ये अभिषेक पुजारी है, ये कर्नाटक के, ये ट्रेनी थे और इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी दोनों जो है 11:30 बजे इन्होंने टेक ऑफ करा है। यहाँ पर गर्ग एविएशन ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ से 11:30 बजे इनका टेक ऑफ होने के बाद करीब 11:50 के आसपास की ये इंसिडेंट है और ये वापस जा रहे थे।
0: सुल्तानपुर जिला के बल्दीराय थाना इलाका में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज माइलस्टोन संख्या 96 के लगे एक यात्री बस और ट्रक के टक्कर में 3 जने का मौत हो गई। बल्दीराय का सीओ आशुतोष कुमार बतौने के हादसा में 11 यात्री घायल हुए।
4: आज दिनांक 27/2/26 को समय करीब 5:50 पर पीआरवी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि पूर्वांचल सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। वहां पर पहुंचने पर जानकारी हुई कि बस गुड़गांव हरियाणा से सुपौल बिहार जा रही थी, जिसमें बस में सवार 11 व्यक्ति घायल हो गए और 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। सभी घायल व्यक्तियों को सीएसटी पहुंचा दिया गया है।
0: पड़ोसी देश नेपाल में आयल भयानक बाढ़ के देखत प्रदेशों में खास सतर्कता रखल जा रहा हो। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला बतौलन कि प्रदेश के गोरखपुर जिला में बल का एगो टीम तैनात कल गई बा।
5: यूपी में कुशीनगर एरिया अफेक्ट होता है गोरखपुर के पास, तो एक टीम वहां पर डाइवर्ट कर दी गई थी। एक जो सीडब्ल्यूसी का भी इनपुट था कि उसका इम्पैक्ट वाल्मीकि नगर में बैरेज है गंडक रिवर पे, उसका जो पानी का डिस्चार्ज का फ्लो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फील्ड में अभी तक फ्लड का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है।
0: मौसम विभाग पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी कर दे हो।

विभाग आज और भी ने कहीं कहीं गरज चमक के साथ ही बिजलियों गिरले के चेतावनी दिले बा। समाचार पूरा भइल, नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार।

0: का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है।
1: बीटिंग वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आई सुने कार्यक्रम विवरण। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। किसान वाणी कार्यक्रम में आज शाम 6:30 पर किसान भाई सुनेंगे गन्ना की फसल में आवश्यक कृषि कार्य विषय पर महेंद्र कुमार सिंह से बातचीत। साथ ही किसान भाई सुनेंगे सुभाष चंद्र यादव और साथियों का गाय लोकगीत। संस्कृत कार्यक्रम में आज शाम 7:00 आप सुनेंगे प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी की वार्ता वैदिक साहित्य पर्यावरणीय चेतना। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज रात 8:00 आप सुनेंगे प्रियंका सहवाल के गाय भजन। रसमाधुरी कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात 8:15 पर। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। आपकी पसंद ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात 10:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज रात 10:30 पर आप सुनेंगे पंडित भीमसेन जोशी का ख्याल गायन। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। और एक नजर कल दिनांक 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में विदुषी डॉक्टर कमला शंकर का गिटार वादन आप सुनेंगे कल रात 10:30 पर। दिन 12:45 पर और प्रातः 7:31 पर। रात 10:00 आप सुनेंगे मंजूषा, इसमें आप सुनेंगे डॉक्टर सत्य प्रकाश पाल की वार्ता। वार्ता का विषय होगा राष्ट्रीय भावना के अमर गायक मैथिली शरण गुप्त। साथ ही आप सुनेंगे हीरालाल मिश्र से काव्य पाठ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8:00 और दिन 12:30 पर कलाकार होंगी डॉक्टर संगीता पंडित। कृषि जगत कार्यक्रम में कल शाम 6:30 पर किसान भाई सुनेंगे सोनम यादव की वार्ता भाई बहन का प्यार रक्षाबंधन का त्योहार। साथ ही किसान भाई सुनेंगे अर्जुन यादव और साथियों का गाय लोकगीत। इनके गाय लोकगीत आप दिन 1:45 पर और सुबह 9:50 पर भी सुन सकते हैं। खेती की बातें कार्यक्रम में कल प्रातः 6:05 पर परवल की खेती विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। युववाणी कार्यक्रम में कल शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे आज की बात, सिने दर्पण, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में दिन 1:15 पर बहनें सुनेंगी फोन इन कार्यक्रम। साथ ही बहनें सुनेंगे गृहलक्ष्मी टिप्स और गीत संगीत। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे कल दिन 12:00। व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस आप सुनेंगे कल दिन 11:00। श्रीराम चरित मानस से संगीत में पाठ आप सुनेंगे कल प्रातः 6:40 पर। साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा आप सुनेंगे कल सुबह 6:25 पर। भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम आराधना आप सुनेंगे प्रातः 6:10 से। गुड मॉर्निंग बनारस आप सुनेंगे कल सुबह 7:00। मधुरिमा सुनिएगा सुबह 8:45 पर। झंकार का समय होगा दिन 10:00 का और फरमाइशी गीत एक्सप्रेस आप सुनेंगे दिन 11:00। दिन 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार। फिल्म संगीत सुनिए शाम 5:00, शाम 6:10 पर, शाम 7:00, शाम 7:31 पर रसरंग में और रात्रि 8:15 पर रसमाधुरी में। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन आप सुनेंगे कल रात 9:30 पर। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे फिल्म संगीत।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।

0: डायल कीजिए
1: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।

ये गीत हमने लिया है फिल्म जॉली एलएलबी 2 से। गीतकार हैं शब्बीर अहमद, संगीतकार मीत ब्रदर्स, और आवाज है मीत ब्रदर्स की।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने वाले हैं संस्कृत में समाचार। थोड़ी देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। सर्वकारः एकविंशतिशताब्द्यां भारताय आधुनिक क्रीडा पारिस्थितिक्याः निर्माणाय पूर्णतया कटिबद्धः। अथ प्रधानमन्त्रिणा मोदिना दृश्य श्रव्य माध्यमेन खेलो इंडिया संवादः सम्बोधितः। नेपालदेशे आकस्मिक जलाप्लावेन मृतानां संख्या 70+ परिमिता जाता। विलुप्तानां अन्वेषणाय च

0: अन्वेषणकार्यं निरन्तरं प्रचलति। बिहार उत्तरप्रदेशयोः जलाप्लावनस्थितिं सम्मुखीकर्तुं एनडीआरएफ दलानां विहितं नियोजनम्। सम्भाषणमञ्चे ईरानदेशस्य प्रत्यागमनाय कापि निश्चितसमयसीमा नास्तीति अमेरिकीराष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः। अपि च शनिवासरं यावत् बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड पूर्वोत्तर राज्येषु अतिवृष्टिपरं पूर्वानुमानम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् सर्वकारः भारतस्य कृते आधुनिक क्रीडा पारिस्थितिक्याः निर्माणाय पूर्णतया कटिबद्धो वर्तते। सः अकथयत् यत् क्रीडा विश्वविद्यालयेभ्यः आरभ्य आधुनिक प्रशिक्षण केन्द्राणि यावत् समग्रदेशे एतादृशं वातावरणं निर्मीयते यत्र प्रतिभायै प्रत्येकस्मिन् चरणे साहाय्यं प्रोत्साहनं च लभेत्। अद्य दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन खेलो इंडिया संवादं सम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् क्रीडा केवलं पदकावाप्ति पर्यन्तं सीमिता नास्ति, अपितु विकसित भारतस्य निर्माणे भारतस्य क्रीडा सामर्थ्यं युवशक्तिं च संघटयितुं एकं महत् राष्ट्रियाभियानम् अस्ति।
1: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
0: प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् वैश्विक क्रीडापटले स्वप्रतिभां प्रकाशयितुं देशस्य प्रत्येकस्मिन् जनपदे सामर्थ्यं विद्यते। सः असूचयत् यत् क्रीडाक्षेत्रे पञ्चभ्यः पञ्चदशवर्षपर्यन्तं वयस्कानां बालकानां चिह्नीकरणाय रक्तदुर्गस्य प्राचीरात् एका महती प्रतिभा अन्वेषण योजना उद्घोषिता।
1: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है, और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है, हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी।
0: प्रधानमंत्री प्रसन्नतां प्रकटयन् न्यगादीत् यत् अद्य भारते क्रीडा उत्कृष्टा जीविकात्वेन अथ च व्यवसाय रूपेण समुदेति।
1: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: अत्रावसरे केंद्रीय युव प्रकरण क्रीडा मंत्री मनसुख मांडविया अवदत् यत् प्रधानमंत्रिणः मोदिनः कुशल नेतृत्वे क्रीडा राष्ट्रीय प्राथमिकता रूपेण अथ च युव सशक्तिकरणस्य महत्वपूर्ण साधन रूपेण च संवर्धते।
2: भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल्स तक सीमित नहीं है, फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों तक आपने फिटनेस को लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी को मजबूत करने का प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभा को अपना टैलेंट साबित करने का समान मंच मिले।
0: नेपालदेशे सञ्जाते आकस्मिक जलाप्लावे मृतानां संख्या प्रवृद्ध्य 70+200 सम्प्राप्ता। देशस्य इयम् अतीव दारुणतमा आपत् मन्यते, यत्र 88+200 भारतीय पर्यटकानन्तर्भूय सहस्रशः विलुप्तजनानाम् अन्वेषणाय नेपाल प्रशासन संस्थाः तीव्रगत्या समुद्धरण कार्याणि प्रचालयन्ति। ह्यः दुरापन्नेन जलाप्लावेन नेपालस्य त्रिषु जनपदेषु व्यापकः विनाशो जातः। नेपाल आरक्षिबलेन सूचितं यत् अद्य 93 नूतनशवाः प्राप्ताः। तिब्बत नेपाल प्रशासनानुसारमेतावता 13,00,000 जनाः

0: विलुप्ताः सन्ति येषु बहवः वैदेशिकाः वर्तन्ते। उभयोः अधिकारिभिः ज्ञापितं यत् प्रायः 30+ देशानां नागरिकाः विलुप्ताः अभवन्, येषु प्रमुखतया भारतस्य, अमेरिकादेशस्य, मलेशिया, युक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, रूस देशानां पर्यटकाः सम्मिलिताः सन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रीय आपत् प्रबंधन बलेन अद्य स्पष्टीकृतं यत् नेपालदेशे आकस्मिक जलाप्लावेन बिहार उत्तर प्रदेशयोः सीमावर्ती क्षेत्रेषु सम्प्रति कोऽपि प्रतिकूल प्रभावः नैव संजातः। तथापि राज्य प्रशासनेन सह समन्वयं विधाय स्थितेः अनवरतं निरीक्षणं विधीयते। एनडीआरएफ महानिरीक्षक नरेन्द्र सिंह बुंदेला अवदत् यत् उभयोः राज्ययोः 20 दलानि निरतानि सन्ति, येषु 9 दलानि बिहारे, 11 च उत्तर प्रदेशे सेवा निरतानि सन्ति।
1: यूपी में कुशीनगर एरिया अफेक्ट होता है गोरखपुर के पास, तो एक टीम वहां पर डाइवर्ट कर दी गई थी। एक जो सीडब्ल्यूसी का भी इनपुट था कि उसका इम्पैक्ट वाल्मीकि नगर में बैरेज है गंडक रिवर पे, उसका जो पानी का डिस्चार्ज का फ्लो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फील्ड में अभी तक फ्लड का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज एनडीआरएफ की जो रिक्वायर्ड तैनाती है वो कर दी है दोनों राज्यों में, और अभी तक हम इस स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं।
0: आपत्काले जलसंकटे वा जनानाम् उद्धाराय सुरक्षितस्थाननयनाय तथा आपत्शमनाय एतैः दलैः सुरक्षासज्जता कृता अस्ति। अमेरिकी राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः संसूचितवान् यत् ईरानेन सह वार्ता पुनरारम्भाय कोऽपि त्वरितकालसीमा नास्ति। ईराने आर्थिकसंकटस्य उल्लेखं कुर्वन् ट्रम्पः अवदत् यत् अमेरिकादेशः सुदृढस्थितौ अस्ति। अपरपक्षे अतिचिन्तां शमनाय वार्ता वातावरण निर्माणाय च कतार प्रधानमन्त्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमानः अद्य तेहरान नगरे ईरानी अधिकारिभिः सह मन्त्रणां करिष्यति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन शनिवासरं यावत् बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, पूर्वोत्तर राज्येषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। विभागेन श्वः यावत् ओडिशा, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम राज्येषु अपि अतिवृष्टेः संभावना व्यक्ता। सहैव शनिवासरे रविवासरे च ओडिशा राज्यस्य कतिपयेषु पृथक् पृथक् स्थानेषु अतीव भीषण वृष्टिः भवितुमर्हति। ऋतुविभागानुसारम् अग्रिमदिनद्वये अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहेषु, आन्ध्रप्रदेशे, तमिलनाडुराज्ये, पुदुचेर्यां तथा करैकल क्षेत्रेषु च भीषण मेघगर्जनेन, विद्युत्पातेन, तीव्रझंझावातेन च सह वर्षायाः पूर्वानुमानं विहितमस्ति। प्रधानमन्त्री जनधन योजना श्वः स्वकीयानि 12 वर्षाणि पूरयिष्यति। अस्याः योजनायाः शुभारम्भः 2014-2023 अगस्तमासस्य 28 दिनाङ्के प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कृतः आसीत्। विवेकानन्दकेन्द्रस्य पूर्वराष्ट्रियाध्यक्षस्य ए बालकृष्णन्वर्यस्य निधने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अनुशोचितवान्। प्रधानमन्त्रिणा संस्मृतं यत् बालकृष्णेन 15+ अधिकं कालं यावत् स्वामी विवेकानन्दस्य विचारान् जनं जनं प्रति नेतुं राष्ट्रसेवायै च जीवनं समर्पितम् इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

0: बोला
1: बोला
0: भैया
1: जय
0: जय
1: जवान
0: जवान।
1: जय किसान।
0: बुझावन भैया,
1: हाँ मोहन भैया,
0: देखा ही पुराने समय से लेकर के आज तक देखा, जौन अपन पशु चौवा हुआ ना, वो देखा उनकर एक परिवार की तरह, एक साथी की तरह साथ निभाओ चली आओत हुआ।
1: मोहन भैया कितना बढ़िया बात बोला है।
0: हाँ
1: जोन मनुष्य और पशुओं के जो संबंध बा वो
0: हाँ
1: प्राचीन काल से चल चला आवत बा।
0: आ दोनों देखा जो ना कि एक दूसरे के ऊपर जो ना खेती किसानी में जो ना आदमी लगल हुआ, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हुआ लोग जो ना।
1: अच्छा निर्भर हुआ भैया, साथे साथे एक दूसरे के प्रति वफादारी भी बा।
0: हाँ देखा ये कहम ना कि देखा जैसे परिवार में केहू अगर बेराम हो जाला तो ओकर परिवार का चिंता बढ़ जाले, वही तरह देखा जो ना कि जौन पशु चौवा हुआ ना गोरू चौवा, वो देखा भी जो ना कि अपन एक परिवार की तरह हुआ।
1: अब बिल्कुल हो भैया, ये चीज़ के माने के भी चाहिए और
0: हाँ
1: समय समय पर उनका बहुत ध्यान रखे के चाहिए। जैसे अपने घरे में
0: हाँ
1: और कोनो सदस्य बीमार होगी ना, कोनो मनई बीमार होगी ना,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: करे बदे तो हमन बहुत परेशान हो जाए जला कि
0: हाँ
1: भाई डॉक्टर के बुलावा, हॉस्पिटल ले जा। तो वही
0: हाँ
1: तरीके से अगर उनकर भी अगर कोनो प्रकार का समस्या होते, बीमार हो जात हुआ,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: उतना उनके साथ भी काम करे के चाहिए।
0: भैया जो ना कि देखा आदमी बीमार होता हुआ तो वो तो कह दिए कि देखा हमके ही बेरामी हुआ, लेकिन जब पशु चौवा अगर बेरामी उनके हुई तो वो कैसे कहीं है, तो ई तो हमन के समझे के हुई ना उनके देख के।
1: बिल्कुल समझे कि अच्छा एक चीज जान दो भैया,
0: हाँ का
1: जिसे हम जिसे धान का खेती हमन कर बढ़ जाए तो
0: हाँ
1: खाद पानी हमन समय से दे बढ़ जाए ना,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: धान हरियात बाय ना।
0: हाँ
1: तो वही प्रकार से पशु से भी हमन जवन फायदा मिलत बा, जिसे दूध देत बाना
0: हाँ
1: उसे जवन
0: हाँ
1: फायदा मिलत बा, तो उसे हमन का कितना फायदा होत बा।
0: भैया जो ना कि पूरा जो ना किसान लोगन का अर्थव्यवस्था जो ना वो देखा पशु चौवा खेती पर जो ना निर्भर हुआ, तो ये लिए जो ना हम ही कहम ना कि देखा वो कौनो तरह से उनके कौनो बेरामी ना आवे, ये लिए जो ना उन बेरामी आवे से पहले ही जो ना ओकर समाधान कर लेओ के चाहिए।
1: मने हम समझत बड़ी बुझत बड़ी ये
0: हाँ
1: बदे
0: का
1: कि बीमार न होखा उसे
0: हाँ
1: पहले ही डॉक्टर भैया लोगन से, जिसे पशु चिकित्सा अधिकारी भैया लोगन बाणे, उनसे
0: हाँ
1: संपर्क करके उनके कुछ व्यवस्था कर लेवे के चाहिए, चाहे टीका वगैरह लगवाए देवे के चाहिए।
0: हाँ तो तोहार नाम जो बुझावन रखले है ना वो
1: हाँ
0: गलत ना रखले है, कि कहे से पहले ही हर बात के बुझ जाला
1: एक चीज और है,
0: का।
1: जिसे तू तो कहत हुआ नहीं कुछ बुझ जाला,
0: हाँ
1: वैसे तोहरो मोहन जो ना हो ना ऐसे वैसे नहीं रखल बा। कुल
0: हाँ
1: बतिया कि मोह मोह बतिया वाला भैया, हमारे किसान भैया जो बड़ा लोगन पशुपालक भैया बड़ा, उहो कहो ना कि भैया मोहन भैया तो बड़ा मोह मोह बतिया हुआ ना।
0: भैया जो ना कि देखा कहल गल ना कि जो ना मीठी बानी जोन होले ना वो
1: हाँ
0: सबके देखा अपनी तरफ आकर्षित कर ले, लेकिन जो ना कि जो हम बात करत रही है ना कि देखा पशु चौवा बीमार ना होखा उनके कोने बेरामी ना होखा, ये लिए देखा जो ना कि उनके टीका जरूर लगा देवे के चाहिए।
1: बिल्कुल भैया, टीका लगौले से फायदा ये रही
0: हाँ
1: कि अब जैसे बीमार हो गई ना, तरह तरह का देखा बीमारी होत रहे वो मोहन भैया, जैसे
0: हाँ
1: पहले
0: हाँ
1: रहे जैसे हमन छोट छोट जो रही,
0: हाँ
1: जैसे हमन के बाबूजी चाहे दादाजी बतावा, जैसे
0: हाँ
1: पशु जो पहले रहे भैया वो कहल जाए कि खांग गईनी,
0: हाँ
1: खांग
0: हाँ
1: गईनी मतलब उनके पैर में संक्रमण
0: हाँ
1: हो गया,
0: हाँ
1: चाहे उनके मुंह से चारा नहीं खाई जात बा। तो तरह
0: हाँ
1: तरह का देसी दवाई अपन लोग करें, उतना जानकारी भी नहीं रहे, लेकिन अब तो भैया नया नया युग आ गया और डॉक्टर भैया लोग अब तो तरह तरह का टीका भी लगावत बाड़ा।
0: अरे भैया देखा गला घोटू बाय, खुरपका बाय, मुंहपका बाय, लंगड़ी बुखार बाय, लंपी बीमारी बाय, कुल देखा कुल पशुओं के बीमारी हैं, यही पशुओं के न होखे, ये लिए जो ना जरूरी है कि जा करके ब्लॉक में जो न अपन पशु चिकित्सा अधिकारी हुआ उनसे संपर्क करके पशुओं का जो ना कि टीकाकरण जरूर करवा ले।
1: ये भैया यही से कहल जाला ना कि
0: हाँ
1: रोग से लड़ाई आसान हुई जब टीकाकरण समय पर हुई,
0: हाँ
1: माने
0: देखा
1: टीकाकरण अगर पशु के समय से मोहन भैया अगर करवाए दे गए ना, तो
0: हाँ
1: भैया
0: हाँ
1: बीमारी ना हुई।
0: भैया समय के बात के लिए तो हर काम देखा, चाहे खेती के काम, चाहे टीकाकरण का काम, चाहे आवे का काम, चाहे जाए का काम, सब चीज़ समय पर होए के चाहिए।
1: आ एक चीज और कहब हो मोहन भैया,
0: कहा बुझौन भैया।
1: समय के बात कहियो बड़ा निक लगल हो।
0: हाँ तो देखा समय के बात कहला ना, तो देखा समय हो गया कि हमन किसान भाई लोग के एक ठे संदेश सुनवा देवल जाए।
1: बिल्कुल सुनवाए दा मोहन भैया।
2: वो आज गुड़िया को लड़के वाले देखने आने वाले हैं।
3: अरे फिक्र मत कर, आज तो रिश्ता पक्का हो ही जाएगा।
2: अरे कैसे हो जाएगा, घर देखकर ही उल्टे पैर लौट जाते हैं। और यार जवान बहन और बीवी को लोटा लेके जाना पड़े, वो कुछ कहते तो नहीं?

0: उनसे आंखें नहीं मिला पाता हूँ यार।
1: अब नया घर होगा और वो भी शौचालय के साथ। भारत सरकार हमारे जैसे को लोन राशि पर ब्याज की सब्सिडी दे रही है।
0: अच्छा, क्या बात कर रहे हो?
1: तो मेरे यार, अब घर होगा बड़ा और किस्त होगी छोटी।
2: अब किसी भी बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिए गए घर के लोन के ब्याज दर पर रियायती सब्सिडी देगी भारत सरकार, ताकि घर होगा बड़ा और ईएमआई छोटी। इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और अब मध्यम आय वर्ग के लोग भी उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, सबका सपना घर हो अपना। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से संपर्क करें या डायल करें 1800-11-3377 या 6163।
3: मोहन भैया,
4: हाँ मोहन भैया,
3: सनेस तो हो गए, लेकिन अभी हमने कि किसान भाई लोग के आज के मौसम का जानकारी भी दे दो के चाहिए।
4: ये भैया, मौसम का जानकारी तो बहुत जरूरी बा। हाँ। काहे से कि मौसम अगर सही बा तो खेती बाड़ी भी सही बा। हाँ। और मौसम सही बा तो भैया हमन के पशु भी बढ़िया बाड़े।
3: हाँ, तो पहले कौन जिला का जानकारी देत हुआ?
4: तो भैया हम सबसे पहले जौन बाय ना, हाँ, वाराणसी में जौन आज का तापमान रहा है,
3: हाँ,
4: अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस।
3: अच्छा,
4: चंदौली जिला का 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम, हाँ, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। और तनिक तो हूँ मोहन भैया बताए देते हो।
3: देखा, जब हम कहत हुआ तो देखा हम बता देते कि गाजीपुर जिला का जो ना कि अधिकतम तापमान रहा 32 डिग्री सेल्सियस आ देखा न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। आ मिर्जापुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आ न्यूनतम जो ना कि 26 डिग्री सेल्सियस रहा।
4: अच्छा,
3: आ वही में देखा जौनपुर का भी बता देते ही।
4: वो को बता दे भैया,
3: 32 डिग्री सेल्सियस वहाँ का अधिकतम तापमान आ 24 डिग्री सेल्सियस देखा न्यूनतम तापमान रहा। तो इत हो गई देखा मौसम का जानकारी किसान भाई लोगन के। लेकिन ये कहम ना बुझौन भैया कि
4: हाँ,
3: देखा जो ना कि हम समय समय पर जो ना अलग अलग खेती किसानी का बातचीत लेके आए ला जा।
4: बिल्कुल,
3: आज जो ना कि देखा बातचीत हमन सुनवा जाती जहाँ किसान भाई लोग के कि गन्ना के फसल में कौन कौन आवश्यक जो है कृषि कार्य होला, ये विषय पर आज देखा महेंद्र कुमार सिंह से अपने सतीश कुमार यादव भैया बतियोले हुआ, तो हूँ सुना हम सुन लीजा।
4: बिल्कुल सुनवा दो भैया।
5: आज अपने कार्यक्रम में आयल हैं महेंद्र कुमार सिंह, आप गन्ना विकास निरीक्षक पद से सेवानिवृत्त हैं। आज आपसे हमने लोग जानल जाये कि गन्ने की फसल में आवश्यक कृषि कार्य का है। तो सबसे पहले आपका महेंद्र जी हमने कार्यक्रम में स्वागत है।
6: आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
5: तो जैसा कि आज का अपन गन्ना से जुड़ल विषय है, हमने की खेती बाड़ी कह लो कि हमने की खेती किसानी में बड़ा एगो महत्व रखेला ये खेती, तो सबसे पहले हमारे किसान भैया उनके बताएं कि एक बुआई कब कब लोग करें और कैसे एक बुआई होता और कौन सा समय होता।
6: किसान भाइयों, आप भी अवगत हैं
5: जी,
6: ये फसल 3 बार में बोई जाती है। एक शरतकालीन गन्ना होता है जो बाव होता है ये आपका शरद के रूप में, और ये अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है
5: जी।
6: दूसरी फसल बसंतकालीन होती है बावक, इसका बावक मार्च फरवरी मार्च में करते हैं। तीसरी फसल पेड़ी की है जो बहुत महत्वपूर्ण है
5: जी।
6: ये बावक फसल जब कट जाती है तो उसका बढ़ावा बढ़ता है, तो वो पेड़ी के रूप में इसको भी को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि तीनों फसलों से किसान को बड़ा लाभ मिलता है और बढ़ावा भी होता है, और लगभग अच्छा उत्पादन से इसका पैसा अच्छा मिलता है और कई रूप में इसका प्रयोग होता है। तो इसलिए तीनों फसलों को बढ़ाना करना या कृषि कार्य में बढ़ाना जिससे उत्पादन अच्छा हो आवश्यक।
5: अगर हमारे भैया लोग एकर खेती करत हैं या कैले हैं तो उमे शुरू शुरू में अगर कहल जाओ कि जैसे उकर बुआई होत है तो उमे सिंचाई का प्रबंधन करें कैसे करें और उकर कुड़ाई का कहे करे कैसे कि लोग कहे ना कि और देखे में आवेला कि एकर बहुत से ज्यादा बार कुड़ाई करे के पड़त है, इसे इसमें कुछ मजबूती मिलत है, का ये बात सही है?
6: जरूर सही है, जितना इसमें कृषि कार्य अच्छा करेंगे उतना ही उत्पादन बढ़ेगा, चूंकि ये तना से ही रस मिलता है, रस से ही इसका जो भी है गुड़ है होना है सब इसी से होना है, इसलिए इसका देख रेख और हर तरह से बढ़ाव के लिए हर चीज का प्रयोग, जैसे उर्वरक है, उर्वरक इसमें बहुत महत्व रखता है, अगर उर्वरक नहीं देंगे तो बढ़ाव अच्छा नहीं होगा। उर्वरक में मुख्य तौर से यह है कि 1/3 भाग टास और सुपर फास्फेट बुआई के समय ही संपूर्ण डाल दिए होंगे किसान भाई, अब रह गई बात 2/3 भाग यूरिया के रूप में, तत्व के रूप में इसमें देना आवश्यक है और देने में संपूर्ण यूरिया और नत्रजन एक वर्षा ऋतु से पहले इसको दे देना चाहिए। इसका अत्यंत लाभ मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। और इसके बाद आता है सिंचाई का।

0: गन्ने के लिए काफी सिंचाई की जरूरत पड़ती है। अगर बरसात नहीं होती तो 4-5 सिंचाइयां नितांत आवश्यक है, क्योंकि इसमें इसका बहुत महत्व है, बढ़ावा महत्व है, और इसका किसी स्रोत चाहे वर्षा ऋतु न होने पर इसका जरूरत। अब इसके बाद सिंचाई के बाद 4-5 सिंचाइयां आवश्यक है। इसके बाद गन्ने के मिट्टी चढ़ाना है। मिट्टी नहीं चढ़ाएंगे किसान भाई तो गन्ना गिर सकता है और उससे काफी क्षति होगी, नुकसान भी होगा और पशु भी इसको नीचे जैसे जंगली जानवर है इसका नुकसान करेंगे। तो सिंचाई भी बहुत आवश्यक है। गन्ने की जड़ पर मिट्टी चढ़ाना, अगर मिट्टी किसान भाई नहीं चढ़ाएंगे तो गन्ना बरसात में या तेज बरसात होने पर गिर सकता है, काफी नुकसान होगा। मिट्टी चढ़ाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि दो लाइनों के बीच में फावड़े से उनकी जड़ पर मिट्टी चढ़ा दें, जिससे कि नाली बन जाए, नाली से पानी बाहर निकल जाएगा और गन्ना भी नहीं गिरेगा और जो गन्ने की जड़ है उस पर चढ़ा देने से काफी स्थिर हो जाएगा।
1: अच्छा, एक बधाई के बारे में बताए महेंद्र जी की, एक लोग बधाई कैसे करें, कहे से कि बहुत देखे में आवला कि गन्ना इससे नुकसान भी होता है, गिर जाता है, तेज हवा चलत है और इस समय तापन बारिश का मौसम है और इसमें बरसात के कारण बहुत जगह देखे में आवला कि गन्ना नुकसान भी हो जाता, तो उनमें लोग का विशेष ध्यान रखे?
0: उस पर विशेष ध्यान ये रखना है बधाई का कि गन्ना लगभग एक साल करके लग जाता खेत में रहता है, बढ़ाव काफी हो जाता है और वर्तमान समय में जो मावा गन्ना है जैसे शरदकालीन वाला या पेड़ी गन्ना है, जो पेड़ी गन्ना बाव गन्ना कटने के बाद हुई है ये अगर इसको नहीं बांधेंगे तो गिर जाएगा, करीब 6 फुट से अधिक बढ़ गया होगा, 1.5 मीटर से अगर अधिक हो गया हो तो पहली बधाई इनकी तत्काल कर दिया जाए ताकि बरसात में इसका नुकसान न हो। दूसरी बधाई पहली बधाई से 50 सेंटीमीटर अधिक हो गया हो तो दूसरी बधाई बांध देना चाहिए और थनों को मिला के बांध देना चाहिए, उसमें आपका कल्ले निकले होंगे जो है दूसरी बधाई में आ जाएंगे, उनका बढ़ाव वहां तक आ जाएगा तो इसका लाभ मिलेगा।
1: कीट नियंत्रण के बारे में बताइए।
0: कीट नियंत्रण सबसे नुकसानदेह है आपका टॉप बोरर। टॉप बोरर इसका बहुत बड़ा है, जिसमें गन्ना पेड़ी में चाहे बाव फसल में ऊपर गोप में हल जाता है।
1: अच्छा, गोप में होता
0: है? हाँ, गोप में कीड़ा हल जाता है काट करके और जाके टॉप पर उसके ऊपर भाग पर काट देते हैं और काट देने से इसका बढ़ाव रुक जाता है गन्ने का और साथ साथ बंची बंची रूप में उसका साइड में ब्रांचे निकल जाती हैं तो काफी नुकसान हो जाता है।
1: एक बात, कोनो दवा वगैरह भी है, कोनो उपाय है?
0: कार्बोफ्यूरान एक दवा आती है जो 30 किलोग्राम और यूरिया के साथ मिला करके इनकी लाइनों के बीच में उनकी जड़ों पर देते हैं और बढ़ाव रुक जाता है और इससे गन्ना क्षतिग्रस्त से बच जाता है।
1: दीमक का भी अपन प्रकोप होता का?
0: कभी ऐसा है कि कभी कभी ऐसी मिट्टी है जिस पर दीमक का प्रकोप होता है।
1: अच्छा, तो ओकरे बदे का लोग ध्यान दें?
0: ओकरे बदे ये है कि सब पहले तो इसकी सफाई रखें,
1: गन्ने के अंदर
0: जैसे खरपतवार साफ रखें
1: जी,
0: और दीमक का अगर प्रकोप होता है तो बार बार सिंचाई करने से दीमक का प्रभाव कम हो जाता है। और दूसरी चीज ये क्लोरोपाइफास एक दवा आती है।
1: अच्छा,
0: जिसको 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भूरक करके और कर देना चाहिए, नहीं तो ये लिक्विड फार्म में है क्लोरोपाइफास 3 लीटर 3 लीटर का प्रयोग करें, जहाँ जहाँ सिंचाई के स्रोत है बूंद बूंद पद्धति द्वारा उसको धीरे धीरे नालियों में चला देते हैं जिससे सेचुरेट हो जाए, पूरा फैल जाए खेत में और उसका रुकाव हो जाता है, तो इसका प्रयोग आवश्यक।
1: देखिए मैं आओ था कि भैया उनकी फसल में टिंडा कीट भी लगा था, उकर लोग कैसे उपाय करें?
0: टिड्डा जी ये कीट है जो हरे रंग का होता है, इसको फुदका भी कहते हैं।
1: अच्छा।
0: फुदका कीट जो है एक दूसरे को इफेक्ट करके उसको पत्तियां उसे खा जाता है और पत्तियां केवल खा जाएगा और कुछ में डंठल रह जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी है कि खेत की सफाई, मेड़ों की सफाई, जैसे घास फूस अवश्य निकाल दें, उसी में छिपे रहते हैं और उसका प्रभाव नहीं कर सकते।
1: मैंने कि फसल के जो उन किनारे पर घास फूस है या बीच में भी है तो वो के लोग निकाले कहां से कि वो ज्यादा के आमंत्रित करते हो उससे ज्यादा फैलत है ये।
0: यस,
1: और एक वही गन्ना में कंडुआ रोग भी देखे के मिला था, एक बारे में तेने बताया कि ई का
0: कंडुआ रोग
1: जी,
0: ये गन्ना का बढ़ाव जब होता है तो इसके सीका कहते हैं, देहात में तो इसको सीका कहते हैं, इसी ऊपरी टाप जो निकलती है कोड़े के रूप में निकलता है, गन्ना पतला हो जाता है कोड़े और उस पर काला रंग का धब्बा नुमा पूरा कोड़ा के रूप में हो जाता है, उसके करने से काफी गन्ना नुकसान हो जाता है।
1: अच्छा।
0: वो

0: मैच्योर जब हो जाता है, जब परिपक्व हो जाता है, तो इसको स्पोर्स जो है बाहर छिटक जाते हैं, दूसरे गन्ने को प्रभावित करता है। इसलिए
1: तेकर कैसे लोग नियंत्रण
0: करें? कड़ुआ लगा हुआ है पेड़ पर, विशेष लगता है
1: जी,
0: लगा है तो इसको पूरा जड़ से इसको उखाड़ के नष्ट कर देना चाहिए, जिसका दूसरे पर प्रभाव न पड़े, दूसरे फसलों पर, दूसरे पौधे पर न पड़े, दूसरे का प्रभाव रुक जाए।
1: हम एक और चीज आपसे जानल चाहब कि का एमे कोनो जैविक विधि भी है का, ऐसे भी लोग अपन फसल के अपने गन्ना का सुरक्षा कर सके ना, या एमे जैविक विधि से कुछ खाद का भी प्रबंधन कर सके ना, जो से हमने की गन्ना के फायदा मिले?
0: जैविक विधि से के द्वारा किसान को काफी लाभ मिल सकता, उसका मुख्य कारण यह है कि इसमें लागत कमाएगी और इसका खाद के साथ मिश्रण जैविक विधि का के द्वारा प्रयोग होता है तो काफी उसका लाभ मिलेगा और किसान का पैसा बचेगा।
1: ग्रासी सूट का है?
0: ग्रासी सूट एक पौधा है जो प्रभावित रहता है।
1: अच्छा।
0: वो पत्तियों पर जो है उसकी हरा हो जाता है और सफेद के रूप में उसकी पत्तियां हो जाती हैं और बढ़ाव उसका रुक जाता है।
1: अच्छा।
0: और झाड़ी नुमा देखने में दूर से झाड़ी नुमा दिखलाई पड़ेगा, बढ़ाव रुक जाएगा, इससे गन्ने की क्षति होती है।
1: अच्छा, एक और चीज आपसे जानना चाहब कि कभी कभी गन्ना का विकास नहीं होता, वो मतलब कि जितना उसको मोटाई होके के चाहिए, जितना बढ़ाई होके के चाहिए, वो ना होता, तो उनमें किसान भैया लोग क्या सतर्कता अपनाए या क्या सावधानी रखें कि वो वाला कह लो वैसा रोग में ना लगे और बढ़ाव पर्याप्त मात्रा में उनके मिले?
0: मुख्य है रोग अगर उसमें लगता है तो उसका नियंत्रण बताया जा चुका है, लंबे समय की होती है। अब सवाल यह है कि जब तक आप नत्रजन नहीं देंगे, आप सुपर फास्फेट पोटास नहीं देंगे और पर्याप्त मात्रा में इसके अनुकूल नहीं देंगे, जैसे यूरिया के रूप में प्रति हेक्टर जो है 6 बोरी यूरिया कम से कम आपके पेड़ी गन्ने में जरूर देना चाहिए, और जो भी आपके बरसात से पूर्व जितने नत्रजन है, चाहे फास्फोरस है पोटास है, इसको संपूर्ण देने से ही लाभ मिलेगा, अथवा न देने पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, न गन्ना बढ़ेगा। जब बढ़ेगा नहीं और वजन नहीं होगा तब तक किसान को लाभ नहीं मिलेगा, रस कम निकलेगा, गुड़ भी नहीं पाएंगे और जो भी मिलों में सप्लाई करेंगे उसका भी लाभ इनको नहीं मिलेगा।
1: महेंद्र जी, आप तो गन्ना विकास निरीक्षक कभी रह चुका हूँ, हमारी किसान भैया उनके थोड़ा ये भी बताएं कि आप तो का सुझाव देहल चाहते हैं या कैसे वो लोग अपने खेती में ज्यादा उत्पादन ले सके, एक पेन आपका का सुझाव है ये हम जानना चाहते हैं।
0: सबसे अच्छी बात है जब भी गन्ना किसान जो बोते हैं, बाव गन्ना बोते हैं, जैसे बसंत कालीन है, शरद कालीन है, इसके अंदर वो मिक्स क्राप जरूर, जैसे रबी फसल के समय जैसे सरसों की खेती करें बीच बीच में,
1: मैंने फसल चक्र भी अपनावत रहे बीच बीच में
0: रहते रहे और उसका भी लाभ मिलेगा, ताकि लागत मूल्य उनसे कवर कर लिया जाए। तो ये बहुत जरूरी किसान को है कि मिक्स क्रापिंग, मिश्रित खेती गन्ने के साथ साथ और बाव गन्ने में अवश्य किया जाए।
1: हाँ, ये पहले एक और बात हम आपसे जानना चाहब कि जो आप बाव के संगे मिश्रित खेती करते हैं, तो इनमें कौन कौन सा लोग खेती करें और का वो खेती से बहुत से किसान भाई लोग उनके ये दुविधा रहते हैं कि वो अगर उनमें बाव में कोनो और भी हम मिश्रित खेती करते हैं तो का सारा उर्वरक या कह जाओ कि जो खाद्य पदार्थ है वो दूसर फसल ना ले ले और उससे हमारा गन्ना तो ना कमजोर हो जाए, ये पहले तो नहीं बताए?
0: ऐसा है जो भी फसलें हैं गन्ने तैयारी से या कटाई से पूर्व, इन फसलों में जैसे आलू है बीच बीच में मिले ले पहले ही निकल जाएगा, उसके बाद ही आप गन्ना काटेंगे तो दोनों का लाभ मिलेगा, गन्ना भी हो जाएगा और फेड़ी का उसके संबंधी जो है वो फसल मिल जाएगी आपको, सरसों है, धनिया है, मतलब जो भी रबी की फसलें हैं वो, और इस समय की फसलें जो आप मूंग बो सकते हैं, गर्मी में बो सकते हैं, मूंग का भी उत्पादन कर सकते हैं। तो इस तरह से दोहरी फसल लेने से इसका लागत मूल्य मिल जाएगा, अच्छा होगा, एक दूसरे से प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि रोग भी दूसरा होगा, जैसे आलू का रोग अलग है उसका अलग है, तो इसका भी प्रभाव रुक जाए।
1: महेंद्र कुमार सिंह जी, आप हम लोगों के कार्यक्रम में नहीं और इतना बढ़िया जानकारी देनी, एकरा बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मोहन भैया,
3: हाँ बुझावन भैया,
2: भैया गन्ने की फसल में
0: आवश्यक कृषि कार्य,
2: हाँ
0: पर कितना निमन बतकही भई ले महेंद्र कुमार सिंह और सतीश कुमार यादव को। और जानत हुआ
2: का
0: डॉक्टर भैया, एक चीज और कहलन हाँ
2: का
0: कि इमन जौन खेती जौन गन्ना का कैल जाला, उमन कार्बनिक खाद का अगर प्रयोग होई तो फसल बड़ी अच्छी हुई भैया, तेकर ध्यान भी देवे के बा। और हमारे किसान भाई सुन ले हुई हैं
2: भैया जेल।

0: लोग गन्ना लगोले हुआ ना, सब लोग देखा है बतकई के सुनले हुई हैं, आओ के अमल में भी लई हैं, देखा ऐसे गन्ना जो ना कि उनकर अधिक पैदावार दही।
1: अच्छा एक चीज़ और है वो मोहन भैया, हमारे जो किसान भाई लोग बड़े ना, खूब मन से सुने ना, और फिर ओकरे बाद खूब मन से गुने ना, और फिर ओकर अमल भी करे ना।
0: हाँ तो देखा जाओ ना कि अब हमन किसान भाई लोग के कुछ अब बाजार भाव ही बता देवल जाए।
1: बिल्कुल भैया बताए दा कुछ।
0: तो देखा आज का जौन अपन स्थानीय पहाड़िया मंडी है, ओकर देखा बाजार भाव रल सफ़ेद आलू जौन है ना कि 700 रुपया प्रति कुंटल, आ लाल आलू जौन है कि 900 रुपया प्रति कुंटल रल, आ प्याज जौन हुआ 4,000 रुपया प्रति कुंटल रले, आ परवल जौन हुआ कि 2,400 रुपया प्रति कुंटल रल, आ मक्का 800 रुपया प्रति कुंटल, आ मरचा जौन है 1,800 रुपया प्रति कुंटल दिखा रहा है। आज कुछ तो हूँ बता दा।
1: नहीं जरूर हम कुछ बताए देते भैया। सूरन जो रल भैया 2,800 रुपया प्रति कुंटल, अदरक 4,000 रुपया प्रति कुंटल, कोहड़ा भैया 2,000 रुपया प्रति कुंटल, धनिया 3,000 रुपया प्रति कुंटल, लौकी 1,800 रुपया प्रति कुंटल, खीरा भैया 1,800 रुपया प्रति कुंटल, टमाटर 2,400 रुपया प्रति कुंटल, और भैया बैगन जो रल भैया वो 1,400 रुपया प्रति कुंटल आज का बाजार भाव रल भैया।
0: हाँ तो देखा बाजार भाव के भी जानकारी हो गई जो ना। अब देखा ये कहम ना कि किसान भाई लोग सोचते हुए कि लोग जो ना कि बातचीत करत हुआ कुछ मन मनसाइन ना कराओत हुआ, तो लेकिन मन मनसाइन कराई, लेकिन ये संदेश भी सुन ला।
1: बिल्कुल सुनवा दो भैया।
2: दीदी सरला प्रेग्नेंट है।
3: क्या बात कर रही है?
2: डिलीवरी के लिए आने वाली है।
3: रखेगी कहाँ?
2: सुरेश सोच रहे हैं कि नया घर ले ले, 2 रूम वाला।
3: अच्छा कब शिफ्ट हो रही है?
2: नहीं दीदी वो लोन वन का चक्कर है, कहते हैं कि लोन तो मिल जाएगी पर ब्याज की रकम कैसे भरेंगे।
3: सुरेश को बोल के घर ले ले, ब्याज की चिंता करेगी सरकार।
4: अब किसी भी बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिए गए घर के लोन के ब्याज दर पर रियायती सब्सिडी देगी भारत सरकार, ताकि घर होगा बड़ा और ईएमआई छोटी। इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और अब मध्यम आय वर्ग के लोग भी उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, सबका सपना घर हो अपना। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से संपर्क करें या डायल करें 1800-111-3377 या 6163।
0: संदेश तो देखा हो गया बुझाओन भैया।
1: हाँ मोहन भैया संदेश तो हो गया।
0: अब देखा बिना देरी के लिए किसान भाई लोग के हमन सुनवा दे जा जो ना सुभाष चंद्र यादव और साथी लोगों का गौनई तो हूँ सुना, किसान भाई लोग भी सुना।
1: बिल्कुल सुनवाए दे भैया।

0: मोहन भैया,
1: हाँ बुझावन
0: देखा
1: भैया।
0: भैया, आज के गीत गौनाई में सुभाष चंद्र यादव और साथी का रक्षाबंधन गीत कितना बढ़िया रहा। आज जानत हुआ
1: हाँ का
0: काल रक्षाबंधनों बाय।
1: हाँ तो देखा रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर देखा कितना बढ़िया गौनाई हो गई जो ना।
0: आ किसान बाड़ी कार्यक्रम में जब तक ढोल मजीरा भैया बज जाला ना, तब
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: बड़ा आनंद आवेला।
1: आ देखा ये कहब कि देखा जो ना अगला अपन किसानवाड़ी कार्यक्रम है ना वो देखा 29 अगस्त 2026 के शनिवार के जो ना कि सुनवाओ जे किसान भाई लोग के
0: 6:30
1: 30 मिनट पर। हाँ आ देखा उनमें का सुनोई बा।
0: भैया, उमन रही पशुओं में सर्रा बीमारी, कारण लक्षण और बचाव। ये
1: हाँ
0: मन बातचीत करी भैया डॉक्टर मनीष कुमार और सतीश कुमार।
1: हाँ तो ये दोनों लोग का बातचीत हुआ पशुअन में सर्रा बीमारी कारण लक्षण और बचाव ये विषय पर जो ना बातचीत हुई जो ना अपने किसानवाड़ी कार्यक्रम में शनिवार के। तब किसान भाई लोग एक जरूर सुनिए आ देखा एक बात का हम ना कि
0: हाँ
1: बुझावन
0: मोहन भैया,
1: भैया कि देखा बरखा बुनी का दिन चलत है आ जैसे हमन समय से आए ले जाना वैसे
0: उसे
1: हमन के समय से जाए के भी
0: जित भी
1: चाहिए।
0: चाहिए
1: आ ई कहब कि अब छाता होता उठावा तब बोला पंचो जय किसान
0: जय
1: जय जवान
0: जवान जय किसान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया गया। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। संस्कृत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी की संस्कृत वार्ता वैदिक साहित्य पर्यावरणीय चेतना।
2: वैदिक साहित्य पर्यावरणीय चेतना। वेदोखिलो धर्म मूलम वेदः समस्तस्य चेतन अचेतनस्य प्राणी मात्रस्य मूल ज्ञान राशि अस्ति तथा संपूर्ण धर्माणां मूलम।

0: लम कतिपयेषु दिनेषु शुष्कं भवति यतो हि तस्य कूपस्य क्षमतानुसारं वयं क्रमेण जलस्य उपयोगं कुर्मः तस्य कूपस्य जलं च कतिपयेषु क्षणेषु स्वयमेव आपूर्तिं कर्तुं शक्नोति अस्यैव उपनिषदनम् गीतायामपि वर्तते देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत प्रकृति श्लोकात् ज्ञायते यत् प्रत्येकं जीवने सह प्रकृतिः सहचरा भवति सर्वेषां गुणदोषाणां परस्परं सम्बन्धः परस्परं आदान प्रदान रूपेण परस्परं सहकार्यं कृत्वा वयं प्रकृत्या उत्तम मार्गं प्राप्नुमः वैदिक साहित्यस्य स्पष्टः सन्देशः अस्ति यत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता यज्ञ जीवनं यापयन्ति अस्मिन् लौकिक सुखम् आध्यात्मिकः आनन्दश्च भवति वैदिक ऋषिभिः प्राकृतिक घटकेषु दिव्य तत्त्वस्य अवधारणा विकसिता नद्या स्वस्य कृते न अपि तु अस्माकं कृते अतीव तासां पूजां महत्वपूर्णा अस्ति अस्य देवतत्त्वस्य भावना विकासयित्वा अस्माभिः अस्माकं गूढ दूषितं भावनां परिवर्तयितव्यम् एतेन एव प्रकृतौ सन्तुलनं स्थापयितुं शक्यते प्रकृतेः सन्तुलनं स्थापनीयम् इति एतां भावनां मनसि कृत्वा वर्णितेषु वेदेषु अनेक प्रकाराः यज्ञव्यवस्थाः वर्णिताः सन्ति इत्थं समग्रस्यापि पर्यावरणस्य संरक्षणं वैदिकेन उपायेन भवितुम् अर्हति नान्यथा अतो वयं सर्वे वेदानुगुणं जीवने आचरणं कुर्मः जयतु संस्कृतं जयतु भारत
1: संस्कृत कार्यक्रम में अभी आपने प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी की संस्कृत वार्ता सुनी वैदिक साहित्य पर्यावरणीय चेतना संस्कृत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया गया थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं
2: मुझे याद कर कभी श्रद्धा से झुक जाए अगर तुम्हारा सर तो मान लेना तुम्हारे भीतर ही है मेरा होना कभी मेरी राह पर चलते हुए चोट खाओ रुक जाओ फिर भी चलो तो मान लेना मैं हूं मैं था मैं रहूंगा आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक शुक्रवार गांधी चर्चा कार्यक्रम में सुबह 6:25 पर सुनिए बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ

0: आकाशवाणी वाराणसी मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर प्रोग्राम फरमाइश्री गीत एक्सप्रेस AIRVNS@gmail.com। जी हाँ श्रोताओं, अब आप मेल के जरिए भी अपनी फरमाइश के फिल्मी गाने सुन सकते हैं। प्रोग्राम फरमाइश्री गीत एक्सप्रेस में आकाशवाणी वाराणसी से हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, यानी इस मेल पर आपको अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचानी है। AIRVNSFGEXP@gmail.com। तो अब खतों, फोन इन, व्हाट्सएप और SMS के बाद अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचाइए मेल के जरिए भी, और सुनिए फरमाइशी गीत एक्सप्रेस प्रोग्राम। तो अब हम हैं आपके साथ हर घड़ी, हर पल और हर प्लेटफॉर्म पर। आकाशवाणी वाराणसी मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर प्रोग्राम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुने खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। श्री उदयभान चमार पुत्र मन्नूराम ने शिष्टाखुर्द थाना मड़िहान जिला मिर्जापुर से हमें सूचना दी है कि उनकी पत्नी श्रीमती ममता दिनांक 18 जुलाई 2026 दिन 3 बजे से कहीं गुमशुदा है। श्रीमती ममता के बारे में

जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 25 वर्ष, कद 5 फीट, इनका चेहरा गोल है, रंग सांवला है और इकहरा मजबूत जिस्म है। इनकी आंखों और बालों का रंग काला है और इन्होंने काले रंग की साड़ी पहनी है। ये अपने दो बच्चों को घर में छोड़ के गई हैं और एक लड़का अपने साथ लेकर गई हैं। श्रीमती ममता, पत्नी श्री उदयबान चमार, पुत्र श्री मन्नूराम के बारे में जानकारी मिलने पर कृपया थाना मढ़ियान या पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से संपर्क करें। कोई भी महिला का नाम श्रीमती ममता है। श्री अनिल कुमार गौड़ ने ग्राम जिगनौड़ी पोस्ट मेवली थाना कोतवाली देहात जनपद मिर्जापुर से हमें सूचना दी है कि उनकी पुत्री कुमारी नैन्सी गौड़ दिनांक 6 जुलाई 2026 को शाम को मेला देखने गई थी, तभी से गायब है। कुमारी नैन्सी गौड़ पुत्री श्री अनिल कुमार गौड़ के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार से हैं। उम्र 20 वर्ष, कद 4 फीट 5 इंच, इनका चेहरा गोल है, रंग गोरा है और इनका डील डॉल सामान्य है। इन्होंने चश्मा लगाया है और लेगिंग्स और छींटदार सफेद कुर्ती पहनी है। इन्होंने पैरों में चप्पल नहीं पहनी है। अगर आपको कुमारी नैन्सी गौड़ पुत्री श्री अनिल कुमार गौड़ के बारे में सूचना मिले तो कृपया पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर या थाना कोतवाली देहात जनपद मिर्जापुर से संपर्क करें। कोई भी बालिका का नाम कुमारी नैन्सी गौड़ है और ये दिनांक 6 जुलाई 2026 शाम से गुमशुदा है। अभी आप खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं सुन रहे थे। हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:18 हो चुके हैं। 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा

0: UPI ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% UPI पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: UPI के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 150 केंद्रों सहित देश के 1500 संस्थानों के युवाओं से किया खेलो इंडिया संवाद, कहा सरकार आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 107 स्टार्टअप्स और 9 इंक्यूबेटर्स को सौंपी प्रोत्साहन राशि, कहा प्रदेश के पास है दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली ऊर्जावान युवा वर्कफोर्स। नेपाल की आपदा में फंसे राज्य के नागरिकों को निकालने के लिए राहत और बचाव का कार्य तेज, SDRF और PAC की टीमें मौके पर पहुंची। और कानपुर में प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में पायलट सहित दो की मौत।

0: नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेल व विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल ढांचा विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
1: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
0: ये कार्यक्रम देश भर में 1500 से अधिक स्थानों पर राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत ने आयोजित किया था। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ के 9 अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों के अलावा प्रदेश के सभी 75 जिलों में 150 से अधिक केंद्रों पर इसका आयोजन किया गया। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के बाद उपस्थित युवाओं से संवाद किया और उन्हें खेलों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का ये प्रयास रहा है कि खेल संस्कृति को बढ़ावा मिले।
2: बीते 12 वर्षों में सरकार का निरंतर यही प्रयास रहा है कि खेल संस्कृति को बढ़ावा मिले और अधिक से अधिक लोग इस देश के अंदर खेल सकें, विशेष तौर से युवा जिसकी सबसे बड़ी आबादी आज हमारे देश में है। और 2047 का विकसित भारत बनाने का सपना हम उसी युवा सामर्थ्य के बल पर देख रहे हैं।
0: आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए खेलों को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना आवश्यक है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नए उद्बोधन में कहा कि खेलो इंडिया भी लाल किले की प्राचीर से उन्होंने कहा था, और अब खेल का विजन उन्होंने इस बार 15 अगस्त को बताया है और 2036 में एक प्रबल दावेदारी मेजबानी के लिए ओलंपिक के लिए की जाएगी और उसके लिए 36,000 करोड़ का स्पोर्ट्स का बजट रखा है।
0: उधर बरेली के रुहेलखंड विश्वविद्यालय में युवा संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि वर्ष 2047 के विकसित भारत में युवा ही अहम भूमिका निभाएंगे।
4: देश के युवा आज ये तय करेंगे कि विकसित भारत का संकल्प जो 2047 का है ये युवाओं के कंधे पर ज्यादा है, युवाओं की बड़ी भूमिका रहने वाली है।
0: सिद्धार्थनगर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का ये प्रयास देश के युवाओं में खेलों के प्रति नई ऊर्जा और विश्वास पैदा करने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली ऊर्जावान युवा वर्कफोर्स यूपी में है, इन्हें प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना सरकार का काम है। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 107 स्टार्टअप्स को 3,42,00,000 रुपए से अधिक और 9 इंक्यूबेटर्स को 1,79,00,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करने के उपरांत युवा उद्यमियों और उद्योग प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर तेजी से उभरने वाली अर्थव्यवस्था वाला राज्य है।
5: हमने अपने प्रदेश के अंदर इन 9 वर्षों में यूपी की इकोनॉमी को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, वीमेन वर्क फोर्स को उनकी भागीदारी को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, बड़े उद्योगों को जिनकी संख्या मात्र 12,000 थी आज हम उसको लगभग 3 गुना करने में सफलता हमने प्राप्त की है। ये है नया यूपी जो अब पीछे हटने वाला नहीं, तेजी के साथ देश की सबसे तेजी के साथ उभर

0: प्रति भी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह कल से 30 अगस्त तक 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ ही कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि 29 अगस्त को रक्षा मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और 30 अगस्त को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुनेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे या सहायता चाहने वालों के लिए हेल्पलाइन 1070 शुरू की है। प्रभावित परिवार इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं। नेपाल में फंसे प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सरकार ने राहत बचाव टीमों को सक्रिय किया है। बचाव अभियान के लिए SDRF की एक प्लाटून भेजी गई है। इसके अलावा PSC की 26वीं बटालियन के 22 जवानों को भी नेपाल भेजा गया है। राहत आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम से सीमावर्ती जिलों के हालात पर नजर रखी जा रही है। राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और उन्हें तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय और नेपाली दूतावासों से भी संपर्क किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तैयार रहने और गंडक तथा नारायणी नदियों में जल स्तर की लगातार निगरानी करने का निर्देश दिया है। उधर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF ने कहा कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि दोनों राज्यों में NDRF की 20 टीमें तैनात की गई हैं, जिनमें से 9 बिहार में और 11 उत्तर प्रदेश में हैं।
2: यूपी में कुशीनगर एरिया अफेक्ट होता है गोरखपुर के पास, तो एक टीम वहां पर डाइवर्ट कर दी गई थी। एक जो CWC का भी इनपुट था कि उसका इम्पैक्ट वाल्मीकि नगर में बैरेज है गंडक रिवर पे, उसका जो पानी का डिस्चार्ज का फ्लो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फील्ड में अभी तक फ्लड का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज NDRF की जो रिक्वायर्ड तैनाती है वो कर दी है दोनों राज्यों में, और अभी तक हम इस स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं।
1: कानपुर में आज गंगा नदी के किनारे एक प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक प्रशिक्षक और एक ट्रेनी पायलट की मौत हो गई। 2 इंजन से युक्त 4 सीटों वाला ये विमान गर्ग एविएशन का था, जो कानपुर के सिविल हवाई अड्डे से एक फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल संचालित करता है। पुलिस आयुक्त कानपुर नगर रघुवीर लाल ने बताया कि एयरक्राफ्ट क्रैश के बाद पुलिस द्वारा घटनास्थल को सुरक्षित कर आवश्यक कार्रवाई की गई है। घटना की सूचना DGCA को दे दी गई है। तकनीकी और अन्य विस्तृत जांच DGCA की टीम द्वारा की जाएगी। प्रदेश भर में कल रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। पर्व को लेकर बाजारों में रौनक है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन पर राज्य में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सौगात दी है। महिला यात्री आज से 29 अगस्त की मध्यरात्रि तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और नगरीय बसों में एक सहयात्री के साथ मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 150 केंद्रों सहित देश के 1500 संस्थानों के युवाओं से किया खेलो इंडिया संवाद। कहा, सरकार आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 107 स्टार्टअप्स और 9 इंक्यूबेटर्स को सौंपी प्रोत्साहन राशि। कहा, प्रदेश के पास है दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली ऊर्जावान युवा वर्कफोर्स। नेपाल की आपदा में फंसे राज्य के नागरिकों को निकालने के लिए राहत और बचाव का कार्य तेज। SDRF और PSC की टीमें मौके पर पहुंची और कानपुर में प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में पायलट सहित 2 की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:32 हुए हैं। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है रसरंग।

यह आवाज है येसुदास और हेमंती शुक्ला की। फिल्म का नाम चश्मे बद्दूर, गीतकार हैं इंदु जैन और संगीत दिया है राजकमल ने।

यह आवाज है बाबुल सुप्रियो और अलका याज्ञिक की। फिल्म का नाम अंदाज, गीतकार समीर, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म चश्मे बद्दूर से, आवाज़ अली जाफर और श्रेया घोषाल की, गीतकार हैं नीलेश मिश्रा और संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

अली जफर और श्रेया घोषाल के गाये फिल्म चश्मे बद्दूर के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार हैं प्रियंका सहवाल। आइए इनसे पहले सुने तुलसीदास का ये भजन।

आकाशवाणी वाराणसी से अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं प्रियंका सहवाल। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुने सूरदास की ये भक्ति रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार थीं प्रियंका सहवाल। सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया गया। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों बाद यानी 8:15 से आप सुनेंगे रसमाधुरी।

मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम रसमाधुरी।

यह आवाज़ थी लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था अमर प्रेम। गीतकार थे आनंद बख्शी। संगीत दिया था राहुल देव बर्मन ने। लता मंगेशकर की आवाज़ है। फिल्म का नाम है जमीन आसमान। गीतकार हैं अनजान। संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने फिल्म ज़मीन आसमान का ये गीत सुना। गीतकार थे अनजान, संगीतकार आर डी बर्मन। आइए अब सुनते हैं फिल्म अमर अकबर रैंथोनी का ये गीत। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। गीतकार हैं अनजान, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

यह आवाज़ है विनोद राठौड़ और मोनू मुखर्जी की। फिल्म का नाम थ्री बैचलर्स। गीतकार हैं प्रवीण भारद्वाज और संगीत दिया है डब्बू मलिक ने।

ये आवाज़ है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम रॉकी, गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

अभी आप सुन रहे थे रसमाधुरी कार्यक्रम मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़। ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। समाचार संध्या थोड़ी देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय, मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की। और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ, भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह, इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5

0: टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से 9111230887818 और 9111230887819 पर संपर्क किया जा सकता है। व्हाट्सएप कॉल और संदेश के लिए 9199681918 नंबर जारी किया गया है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए 9779851386807 9779701075000 और 9779801032611 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। नेपाल में छोछेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार झील में अगले 3 दिन में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की।
2: बिहार जल संसाधन विभाग के अनुसार गंडक बैराज पर जलस्तर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि नेपाल के देवघाट क्षेत्र में बारिश के कारण नदी के जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि
3: नेपाल में एक तरह से आपदा आया, ये चिंता का विषय है, सबको चिंता भी करनी पड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार बिहार की स्थिति को भी देख रहे हैं। अब धीरे धीरे चीजें समान हो रही है।
2: किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बिहार में NDRF की 9 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि अतिरिक्त बचाव दल की 4 टीमें तैयार रखी गई हैं। इधर पड़ोसी देश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने समस्तीपुर रेल मंडल में अलर्ट जारी किया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल के सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेफ के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
5: Discussions are expected.
6: दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। इसमें व्यापार और निवेश, महत्वपूर्ण खनिज, स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क शामिल है। ये बातचीत भारत और उज्बेकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करेगी।
1: ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादो जपारोफ के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।

0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत विनिर्माण, नवाचार और निर्यात के लिए वैश्विक मंच के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कनाडा के निवेशकों से भारत की बढ़ती क्षमता का लाभ उठाकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की जरूरतें पूरी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सुधारों के जरिए हो रहे बदलाव और मजबूत आर्थिक वृद्धि से भारत कनाडा के बीच अधिक मजबूत और निवेश आधारित आर्थिक साझेदारी के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार का वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य है।
1: आज का यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटीज इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे।
0: रक्षा मंत्री ने टैंक मरम्मत परियोजना को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और मानव कल्याण की प्रेरणा देते हैं। अहमदाबाद में आज गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा, बहुविषयक अध्ययन और कौशल आधारित विकास को प्राथमिकता दी गई है, जो महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप है।
2: पूज्य बापू का विचार था कि स्वाधीनता तब तक अधूरी रहेगी जब तक हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा श्रम और हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय न हो, अपना न हो। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति से हम बंधे हुए नहीं हैं तो स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं। और मन में स्वराज की ये परिकल्पना को अनेक प्रयोगों से जमीन पर उतारने का काम किया।
0: श्री शाह ने वर्ष 2047 तक सभी क्षेत्रों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर बल दिया। अहमदाबाद में फार्मा इनोवा अवार्ड्स 2026 में श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
3: रजनी भाई ने शुरुआत की और आज ये परंपरा ढेर सारे लोगों में रिसर्च के फील्ड में काम करने के लिए न केवल अनुकूलता बनी, आर्थिक मदद भी हुई। एक प्रकार से ये अवार्ड उनको एक्नोलेज करता है सोसाइटी में और इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश होने में। ये बहुत बड़ी बात है जो रजनी भाई ने उस जमाने में सोची।
0: गृह मंत्री ने अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल और ओलंपिक खेलों पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है।
5: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने खेलों को विकसित भारत का हिस्सा बनाने के लिए सभी से सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। खेल दिवस के अवसर पर आज IFLU विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने की पहल से देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अधिक पदक जीत रहा है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर

0: नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। श्रीमती निधि खरे ने कहा कि सरकार हर वर्ष ये सुनिश्चित करती है कि कीमतों में बढ़ोतरी होने पर रियायती दर पर प्याज उपलब्ध हो।
1: हर वर्ष हम लोग कोशिश करते हैं कि प्याज में अगर कोई कीमतों की बढ़ोतरी होती है तो उसमें रिटेल इंटरवेंशन के माध्यम से सब्सिडाइज दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। प्याज की जो प्रोडक्शन है या अवेलेबिलिटी है उसमें किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। एक्सपोर्ट को भी देखें तो वो पिछले वर्ष के मुकाबले भी सामान्य है।
0: मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज मैच के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने 5वां स्थान हासिल कर लिया है। आज खेले गए मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में भारत के लिए इश्का ने 1 और नवनीत कौर ने 2 गोल किए। जर्मनी के लिए एकमात्र गोल लिन क्रिंग्स ने किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय। मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की। और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ। भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. India steps up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to flash flood tragedy. 290 Indians among nearly 1300 missing people. Death toll rises to 359. Heavy rain likely over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and northeastern states till Saturday. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan from Saturday. Defence Minister Rajnath Singh lays foundation stone for T-series tank overhauling project at Jabalpur in Madhya Pradesh, terms it another milestone in nation's journey towards self-reliance. Government begins targeted release of onions from buffer stock to ensure adequate availability and moderate seasonal price pressures in coming months. And in men's cricket, second test between India and host Sri Lanka ends in a draw. Visitors clinch the series 1-0. And now the news in detail. India has stepped up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to the flash flood tragedy. Death toll in the yesterday's massive flash floods in Nepal has reached 359 as authorities race against time to find thousands of missing people, including 290 Indians. Authorities in Tibet and Nepal have reported over 1,300 people missing as of today. Out of these, many are foreigners. Both authorities reported that people from more than 30 countries are missing. The External Affairs Ministry has said that 84 Indian

0: At Vidyapeeth in Ahmedabad today, Mr. Shah called upon the youth to actively participate in the national reconstruction by 2047. The government has commenced calibrated and targeted release of onions from the buffer stock to ensure adequate availability and moderate seasonal price pressures in the coming months. Secretary, Department of Consumer Affairs Nidhi Khare today flagged off onion vans for the retail distribution from Krishi Bhavan, New Delhi, for the consumers of the National Capital Region. Onions from the government's price stabilization buffer are being sold at a subsidized rate of 35 rupees per kilogram through NCCF, NAFED and Kendriya Bhandar outlets, as well as mobile vans across Delhi. On the eve of Raksha Bandhan, President Draupadi Murmu has extended greetings to people. The President said that the festival of Raksha Bandhan has been an integral part of country's culture and tradition since ancient times. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. on Sunday. On to sports. In men's cricket, second and final test between India and host Sri Lanka ended in a draw in Colombo. Sri Lanka reached 429 for 9 in their second innings, taking a lead of 216 runs on the fifth and final day before both captains agreed to call off the match. Despite the draw, the Shubman Gill-led side clinched the two-match series 1-0. Batting first in the second test, India had declared at 503 for 9 before bowling Sri Lanka out for 290 to secure a 213-run first innings lead. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India steps up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to flash flood tragedy. 290 Indians among nearly 1,300 missing people. Death toll rises to 359. Heavy rain likely over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and northeastern states till Saturday. Prime Minister Narendra Modi to embark on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan from Saturday. Defence Minister Rajnath Singh lays foundation stone for T-Series tank overhauling project at Jabalpur in Madhya Pradesh, terms it another milestone in nation's journey towards self-reliance. Government begins targeted release of onions from buffer stock to ensure adequate availability and moderate seasonal price pressures in coming months. And in men's cricket, second test between India and host Sri Lanka ends in a draw. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। भारत ने नेपाल में सैलाब के अलमनाक हादसे के सबब वहां फंसे भारतीय बाशिंदों का पता लगाने और उन्हें महफूज मकाम तक पहुंचाने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। तकरीबन 1,300 लापता अफराद में 290 भारतीय हैं। मरने वालों की तादाद बढ़कर 359 हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने मोदी हफ्ते के रोज से उज़्बेकिस्तान और जमहूरिया किर्गिज के चार रोजा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में टी सीरीज के टैंक ओवर हॉलिंग प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। उन्होंने इसे खुद किफालत की जानिब मुल्क के सफर में एक और संग मील करार दिया। हुकूमत ने प्याज के वाफिर जखीरे से निशानजद जखीरा जारी करना शुरू कर दिया है ताकि आने वाले महीनों में इसकी खातिरखा दस्तियाबी और त्योहारों के दौरान कीमत के दबाव को मुतदिल रखने को यकीनी बनाया जा सके। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और शिमाल मशरकी रियासतों में हफ्ते के रोज तक तेज बारिश की पेशगोई की गई है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और मेजबान श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट ड्रॉ पर खत्म हुआ। मेहमान भारत ने 1-0 से सीरीज जीत ली। अब खबरें तफसील से। भारत ने नेपाल में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब के बाइस फंसे हुए भारतीय शहरियों की तलाश और बचाव के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। कल नेपाल में अचानक आने वाले शदीद सैलाब से हलाकतों की मजमूई तादाद 359 हो गई है, जबकि हुक्काम 1,300 से ज्यादा लापता अफराद को तलाश करने के लिए हमा वक्त जिद्दोजहद कर रहे हैं, जिनमें 290 भारतीय शहरी भी शामिल हैं। आज नई दिल्ली में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि जब नेपाल में सैलाब का ये सानहा पेश आया तब वहां 290 भारतीय शहरी मौजूद थे। इन भारतीय शहरियों से अभी तक राबता कायम नहीं हो सका है। इनमें वो 63 भारतीय शहरी भी शामिल हैं जो त्रिशूली वन पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। जनाब जायसवाल ने कहा कि काठमांडू में वाकई भारतीय सफारतखाना प्रोजेक्ट के हुक्काम से मालूमात हासिल

0: करने के लिए राबते में हैं, क्योंकि मुतासरा इलाकों में मुवासलाती राबते मुनक़ता हो गए हैं। वजारत खारजा ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गए तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले 21 भारतीय शहरियों को नेपाल में बचा लिया गया है। जनाब जायसवाल ने कहा कि भारतीय हुक्काम नेपाली हुक्काम के साथ मिलकर फंसे हुए भारतीय शहरियों से राबता कायम करने और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल में जारी बचाव और इमदादी कार्रवाइयों के लिए 47 टन से ज्यादा हंगामी इमदादी सामान भेजा है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: जनाब जायसवाल ने कहा कि वजारत खारजा में 24 घंटे काम करने वाला एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। उन्होंने बताया कि काठमांडू और बीजिंग में वाकई भारतीय सफारतखानों ने भी 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइंस कायम की हैं। चीन के इलाके में फंसे भारतीय शहरियों के बारे में उन्होंने कहा कि बीजिंग में भारतीय सफारतखाना उनके महफूज इनखिला के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। तकरीबन 200 भारतीय शहरियों ने इनखिला के लिए मदद तलब की है। वजारत खारजा ने लोगों को तआवुन मुहैया करने की गरज से नई दिल्ली में 24 घंटे चलने वाला एक कंट्रोल रूम कायम किया है। इस कंट्रोल रूम से इन नंबरों पर राबता किया जा सकता है। +9111230887 18 +9111230887 19 व्हाट्सएप कॉल और मैसेजेस के लिए इस नंबर पर राबता किया जा सकता है +9199682919 88। इस आईडी पर ईमेल भी किया जा सकता है situationroom@meea.gov.in। काठमांडू में भारतीय सफारतखाने के इमरजेंसी राबता नंबर हैं +9779851316807 +9779709107500 और 9779810362611। बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर गंडक बैराज का फजाई सर्वे किया और नेपाल में आए जबरदस्त सैलाब के तनाजुर में सूरत हाल का जायजा लिया। पेश एक रिपोर्ट।
2: बिहार में किसी किस्म की इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि 4 इजाफी बचाव टीमों को तैयार रहने को कहा गया है। वजीर आला सम्राट चौधरी ने कहा कि रियासत में सूरत हाल बतदरीज मामूल पर लौट रही है। जनाब चौधरी ने बघा, वाल्मीकि नगर, बेतिया और मोतिहारी समेत सरहदी इलाकों में आज इमरजेंसी तैयारियों का जायजा भी लिया।
3: नेपाल में एक तरह से आपदा आया, ये चिंता का विषय है, सबको चिंता भी करनी पड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार बिहार की स्थिति को भी देख रहे हैं। अब धीरे धीरे चीजें समान हो रही है, बारिश हुआ है, उसका कुछ पानी अधिक आ रहा है, लगभग 1 लाख क्यूसेक के आसपास आज पानी डिस्चार्ज हो रहा है। अब धीरे धीरे यहाँ से लेकर पटना तक की स्थिति समान है।
2: पड़ोसी मुल्क में सैलाब की सूरत हाल के तनाजुर में मशरकी वस्ती रेलवे ने समस्तीपुर रेलवे डिवीजन में अलर्ट भी जारी किया है। पटना से सविता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद इमरान।
0: नेपाल में सैलाब और कुदरती आफत के तनाजुर में उत्तर प्रदेश हुकूमत ने राहत और बचाव टीमों को जरूरी वसायल के साथ सरगर्म कर दिया है, ताकि वो नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के बाशिंदों को बहिफाजत वहां से निकाल सकें और उन्हें फौरी तआवुन फराहम कर सकें। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
4: उत्तर प्रदेश में रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर का कंट्रोल रूम नेपाल की सरहद पर वाकई जिलों में सूरत हाल पर मुस्तकिल नजर रखे हुए है। रियासती हुकूमत ने नेपाल में राहत और बचाव कार्रवाई के लिए SDRF की एक प्लाटून तैनात कर दी है। यह प्लाटून 32 अहलकारों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा PAC की 26वीं बटालियन के 22 अहलकारों को भी नेपाल भेजा गया है। हुकूमत ने जरूरत के मुताबिक इजाफी फोर्सेज और वसायल मुहैया कराने की गरज से तैयारियां कर ली हैं, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मुतासरा अफराद को राहत फराहम करने में कोई कमी न रह जाए। नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के बाशिंदों के अहलखाना मालूमात या किसी किस्म के ताउन के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 पर राब्ता कर सकते हैं। लखनऊ से ओम अवस्थी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल हफीज।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम ने मोदी

0: हफ्ते के रोज से जमहूरिया उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के चार रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सीवी जॉर्ज ने कहा कि वजीर आजम अपने दौरे के पहले मरहले में उज्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्जियोयेव की दावत पर ताशकंद के दो रोजा सरकारी दौरे पर जाएंगे। जनाब मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए सदर मिर्जियोयेव के साथ वफ सतह की बातचीत करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों रहनुमा तिजारत और सरमायाकारी, दिफा, डिजिटल कनेक्टिविटी, तवानाई, तालीम और अवाम से अवाम के राबते के शोबों में बाहमी ताउन का भी जायजा लेंगे और आगे की राह तय करेंगे। वजीर आजम मोदी ताशकंद से किर्गिस्तान के शहर बिश्केक जाएंगे, जहां वो जमहूरिया किर्गिस्तान के सदर की दावत पर इस माह की 31 तारीख को शंघाई ताउन तंजीम की 26वीं सरबरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि हुकूमत 21वीं सदी में भारत के लिए खेलों के एक जदीद निज़ाम की तश्कील के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि खेलों की यूनिवर्सिटियों से लेकर जदीद तरीन तरबियती मराकज़ तक मुल्क भर में एक ऐसा निज़ाम तैयार किया जा रहा है जहां बासलाहियत अफराद को हर मरहले पर तआवुन मिलेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से आज खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि खेल सिर्फ तमगे जीतने तक महदूद नहीं है, बल्कि ये तरक्की याफ्ता भारत की तामीर में भारत के खेलों से मुतालिक हौसलों और नौजवानों की तवानाई को यकजा करना है।
1: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
0: उन्होंने कहा कि हर जिले में ये सलाहियत पाई जाती है कि वो खेलों के आलमी मंजरनामे पर अपनी छाप छोड़ सके। वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने लाल किले की फसील से बासलाहियत अफराद की तलाश के लिए एक बड़ी मुहिम का ऐलान किया था, ताकि 5 से 15 साल तक की उम्र के बच्चों की खेलों के ताल्लुक से निशानदेही की जा सके। वजीर आजम ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि आज खेल भारत में एक बेहतरीन करियर और पेशे के तौर पर उभरे हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने कहा कि वजीर आजम मोदी की क्यादत में खेल एक कौमी तरजीह के तौर पर और नौजवानों को बाख्तियार बनाने के एक अहम आले के तौर पर उभरे हैं। वजीर आजम मोदी इतवार को दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 137वां नशिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तला नशियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरे के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। उमूर दाखला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज जोर देकर कहा कि महात्मा गांधी का फलसफा वक्त की गर्ज से बेन्याज मानवियत का हामिल और इंसानी बहबूद के लिए वक्फ रहेगा। अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की 72वीं तकरीब तकसीम असनाद में तलबा से खिताब करते हुए जनाब शाह ने नौजवानों से जोर देकर कहा कि वो 2047 तक कौमी तामीर नो में सरगर्म हिस्सा लें।
2: पूज्य बापू का विचार था कि स्वाधीनता तब तक अधूरी रहेगी जब तक हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा श्रम और हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय न हो, अपना न हो। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति से हम बंधे हुए नहीं है तो स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं। और मन में स्वराज की परिकल्पना को अनेक प्रयोगों से जमीन पर उतारने का काम किया।
0: इस इदारे की तारीखी अहमियत को उजागर करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि गुजरात विद्यापीठ भारतीय निज़ाम इल्म की एक बेहतरीन मिसाल की हैसियत रखता है। कौमी तालीमी पॉलिसी की बुनियादी अकदार का जिक्र करते हुए जनाब शाह ने कहा कि एनईपी ने महात्मा गांधी के तस्वूर के मुताबिक मादरी जबान में तालीम कसीर शोबाजाती आमोजिश और महारतों पर मबनी नशोनुमा को तरजीह दी गई है। तकरीब में ग्रेजुएशन करने वाले 900 तलबा को डिग्रियों से नवाजा गया, जबकि 11 गैर मामूली तलबा को सोने के तमगे दिए गए। गुजरात के गवर्नर और गुजरात विद्यापीठ के चांसलर आचार्य देवव्रत, असातिज़ा और मंदूबीन ने इस तकरीब में शिरकत की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुल्क दिफा के शोबे में खुद कफालत की

यह आवाज है अनुराधा पौड़वाल और बाबला मेहता की। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन।

0: तो ये थी आज की इस महफिल की आखिरी पेशकश। आप सुन रहे थे खैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन आकाशवाणी वाराणसी से। मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
1: मुझे याद कर कभी श्रद्धा से झुक जाए अगर तुम्हारा सर, तो मान लेना तुम्हारे भीतर ही है मेरा होना। कभी मेरी राह पर चलते हुए चोट खाओ, रुक जाओ, फिर भी चलो, तो मान लेना मैं हूं, मैं था, मैं रहूंगा।

0: हमने तो शराफत से अपनी आजादी ली, ऐसा सारी दुनिया कहती है। तब मैं कहूँगा कि जो शराफत से चीज मिली है उस चीज को रखने के लिए भी हमारी शरीफ होना चाहिए।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक शुक्रवार गांधी चर्चा कार्यक्रम में सुबह 6:25 पर सुनिए बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ।

प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा। यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।

मीडियम वेव 241.05 4 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम

अभी आपने मुकेश की आवाज़ में फिल्म हिमालय की गोद में का ही गीत सुना। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी थी आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही मेहराज जहां, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पी रानी और आकाश कुमार ने, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कलां गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय ने, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू और उनके ढेर सारे दोस्तों ने।

और रोशनी केशरी ने, राजा बाजार बिहिया आरा से सुरेश केशरी, पूनम केशरी, प्रतिज्ञा केशरी, प्रतीक केशरी और ओमानंद केशरी ने, अनारकली बाजार जलगांव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बीबी गाव्या, भाई सच्चा पाठक, लपरी ग्राम मुडेला जिला जौनपुर से कुमारी चंदा, कुमारी चांदनी, आकाश, कन्हैया लाल और रीता देवी ने।

इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, श्रीमती सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर और सुरेश ठाकुर ने, बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेतान ने, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से, इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना, मराठा भाऊ, मराठा गणेश दादा, मराठा कार्तिक भाऊ, मराठा परी, संजना मराठा, स्वाति चौधरी, प्रयाग चौधरी, ललित नारायण खर्चे, लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललित नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, मालती, स्वाति और प्रयाग चौधरी ने।

इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, श्रीमती बबीता कांगड़ा, निखिल कांगड़ा, बबीता बोत, अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, एसआर कांगड़ा ने। दतरंगी से भागवत वर्मा, देवरीसी के आर साहू, लेवई से गुलाब दास और राजा दास, सादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान, चांडूर बिस्वा तालुका नांदुरा जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र से नरेंद्र भाऊ खडसे, रक्षाताई खडसे, ललिता संजना खडसे, गणेश और कार्तिक खडसे, मालती चौधरी, स्वाति और प्रयाग चौधरी, करेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता,

ये गीत हमने लिया है फिल्म क्रांति से, आवाज लता मंगेशकर और साथियों की। गीतकार हैं संतोष आनंद और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आशा भोसले की आवाज़ में आइए अब सुनते हैं फिल्म तीसरी कसम से ये गीत। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी थी जातुका किशनपुरा से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से हीना कौसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम, नाज परवीन ने, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्नव आनंद, सत्यमानंद ने, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा ने, कच्ची सराय दालमंडी वाराणसी से मोहम्मद नसीम, मोहम्मद सैफी, मोहम्मद हसन, तबस्सुम बानो, नाजिया रहनुमा, चौरहट नई बस्ती पड़ाव से रोशन अली, सैराज आलम, मोहम्मद समद, रोजी और अलीशा ने, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुल निशा शाहबाज खान, बेबी नुसरा खान, सलीम अहमद और शकील अहमद ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों पश्चात यानी रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित भीमसेन जोशी का गाया राग मियां मल्हार। आपके साथ तबला संगति नाना मुड़े की है और हारमोनियम पर आपका साथ दिया है पुरुषोत्तम वलवलकर ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने पंडित भीमसेन जोशी का गाया राग मियाँ की मल्हार सुना। आपके साथ तबला संगति नाना मोड़े की थी। हारमोनियम पर आपका साथ दिया पुरुषोत्तम वलवलकर ने। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा है कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन

0: किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से +9111230888718 और +9111230888719 पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए +9779851316807 और +9779816317 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल की सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।